के बाजार से भगवा चुनरी ले आना, जाग से फिर संसार दुकानी बन ले बस जाना। यदि फिर भी तू फिरे दिल को था, तो रक्षा

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा।

0: तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणे रेडियो आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एंगर के वो छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान के चलते थे, और इरिटेशन तब हो रही थी जब हमारे अनुसार टाइम पर काम नहीं हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन तब जब लोग हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा सा रुककर हमने देखा, एक दिन का अनुभव हमारा ये कहता है कि यस आई कुड रियलाइज इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, रोकी जा सकती है। अब थोड़ा और गहरे में जाते हैं, थोड़े वो स्ट्रांग वर्जन्स गुस्से के जिसमें आती है हमें रिजेंटमेंट या फिर कहें हेट्रेड। क्यों होती है रिजेंटमेंट और हेट्रेड, जो तब हमारे हाथ से बाहर होती सिचुएशन होती है, लेकिन इसे भी ला सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा काम करना है अपना ध्यान रखना। अब इस पर कैसे काम करें, बात करने के लिए हमारे साथ है रामा कुमारी सत्यशिवानी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरह के हमारे पास लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, हर बार की बातचीत है समवेयर, इतनी छोटी छोटी बातें जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, साथ पकड़ के, जो आप हर बार कहते हैं कि पकड़ के चल रहे होते हैं, तो वो बोझ अनजाने में ही ढोते जा रहे हैं। अब अगर उनको छोड़ना, एटलीस्ट यू नो इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड एनी एवरी टाइम, बट आई नो इट कैन गो, यू नो दैट बिलीव एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स मी फील वेरी लाइट।
1: इट्स लाइक बीमारी, इलनेस है। एक है बीमारी जो हमने स्वीकार कर ली थी कि पूरा जीवन ही हमारे साथ रहेगी, और एक है कि अब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं पता होता है कि ये ठीक हो सकती है। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक है कि सारी जीवन इस बीमारी को झेलना है, और एक है ये तो छोटी सी चीज है, ये ठीक हो जाए,
0: मुझे दवाई मिल गई है, यू नो।
1: हमने इरिटेशन को देखा, और फिर इरिटेशन के लेवल पर अगर नहीं उसको रोका तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती जाती है। एंड हम बहुत बार ये अपनी वोकैबुलरी में भी कह देते हैं, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। इट कुड बी ट्राइंग टू चेंज पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे अपने आप को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि लोग और सिचुएशंस अपने अनुसार चलेंगे। मेरा रोल है कि मैं उनको राय दूं, गाइड दूं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोक दूं। इस नहीं अगर मेरे अनुसार हुआ तो आई एम नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कई बार जो हमारा औरों के प्रति गुस्सा होता है वो इतना ज्यादा हम अपने अंदर उसको भर लेते हैं कि फिर हमें वो गुस्से के अलावा और कोई एनर्जी हमसे क्रिएट ही नहीं होती। एंड दिस इज मोस्टली यू नो बिकॉज वी हैव द फीलिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे जीवन को ही पूरा जैसे ऊपर नीचे कर दिया। सो देन आई होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट पीपल, दैट स्पेसिफिक पर्सन एटलीस्ट। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने उसके बारे में एक वो पकड़ लिया है अपने अंदर, एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। या रिजेंटमेंट, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है मुझे जो मैं अब जीवन भर उस बात को भूलने नहीं वाली हूं। या तो मुझे कह दी है या फिर मेरे बारे में पीछे कह दी है जो फिर मैं उसको नहीं भूलने वाली हूं।
0: और मैं ये कहती हूं कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती, यू नो। कितनी बार वो रिजेंटमेंट जो है वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है, वो घाव रिश्ता ही रहे तो अच्छा है हमें कहते हैं।
1: हाँ, लेकिन घाव अगर वहीं रहा और हर बार याद आता रहा तो वो घाव की हालत क्या हो जाएगी? नुकसान किसका हो रहा है? हर समय हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नुकसान किसका हो रहा है ये पकड़ के रखने से। हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम जब पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान होता, और अगर मुझे छोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। वी नॉट डूइंग अ फेवर टू एनी वन। सम पीपल से लेकिन उन्होंने गलत इतना किया कि क्यों उनको फिर हम भूल जाए उस बात को अपने लिए। इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जो, और ये कोई ऐसे नहीं कि गैरों के साथ हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके साथ यू आर लिविंग इन द हाउस एवरी डे, डे इन एंड डे आउट। लेकिन इकट्ठे रहते हुए अगर ये इस तरह की चीजें अपने अंदर अक्यूमुलेट करके हम रखते, सो इट इज अ बिग क्वेश्चन कि घर का पूरा एनवायरमेंट कैसा है और हम सब की जो उस घर में रह रहे हैं मेंटल स्थिति कैसी है।
0: क्योंकि ये एंगर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मान लेता हूं मैं, you know?
1: हाँ, बिकॉज आई फील लेट डाउन, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, लेकिन जो हुआ वो नो वन इज सेइंग कि इट वॉज राइट।

0: पड़ा किसी ने इस तरह का पाप किया है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मतलब वो अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देते कि इसके बाद जीवन में खुश रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो वी एब्सोल्यूटली अंडरस्टैंड कि जो हुआ दैट वॉज नॉट राइट फॉर यू, लेकिन अब आगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू कैरी दैट बिटरनेस एंड दैट पेन। अब इसमें ये होता कि पहले तो ये जो विक्टिम वाली फीलिंग है कि मैं ही, यू नो, अपने आप से नफरत कई बार हमें हो जाती कि मैं ही गंदी हूं, क्या मैं ही गलत हूं, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया कैसे, किसी ने गलत इतना किया, तो अपनी सेल्फ एस्टीम पहले क्रैश हो जाती। तो वो पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, समवन एल्स हैज मेड सम वेरी बिग मिस्टेक, इट वॉज नथिंग टू डू विद मी बींग अ बैड पर्सन। यू नो, हम अपनी इमेज यहां क्रिएट कर लेते हैं, आई एम नॉट ए नाइस पर्सन, अपने आप के लिए नफरत क्रिएट करते हैं, और दूसरों के लिए तो जो जिम्मेवार थे वो तो करते ही हैं, और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते जाते। इतनी बड़ी बात के बाद भी एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट। उनको नहीं फॉरगिव कर सकते हम, क्योंकि वो उनकी अपनी यात्रा है, लेकिन हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। उस बात को मुझे फिनिश करना ही पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि हमने एक बार आज बोला एंड इट्स ओवर, आई हैव फॉरगॉटन, इट विल टेक टाइम। लेकिन जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटा दी कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, किसी और ने किया, लेकिन अब मैं और गलत अपने साथ नहीं होने दूंगी, यू नो, एक पर्टिकुलर बात के लिए अब मैं अपने ऊपर कितनी, किसी और ने मेरे ऊपर घाव लगाए, लेकिन जो रोज का घाव मैं अपने ऊपर लगा रही हूं
1: उसको रीलिव कर करके
0: आई एक्चुअली गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, क्योंकि जब तक वो यहां पर है वो मेरा टेप रिवाइंड होता है।
1: एंड देन वी लैश आउट, यू नो, वी लैश आउट, हर एक उस व्यक्ति को लैश आउट करेंगे जो हमारे साथ सिंपथाइज करेगा, यू नो, बिकॉज समवेयर वो नफरत और रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो वो जो मैंने क्रिएट किया, शिवानी, अमेजिंग थिंग इज दैट इफ इवन वंस आई एम एबल टू रजिस्टर दिस, कि ये जो अब पेन है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ,
0: मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, हमें लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये पेन मैं क्रिएट कर रही हूँ, एंड पूरी पावर सारी मेरे पास है, इसको कब फिनिश करना है, एंड ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। यू नो, समटाइम्स वी फील कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया वो सामने वाले को, फॉरगिव मतलब अंदर से, तो हम गलत कर रहे हैं, ऐसे इंसान को हमें फॉरगिव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं फॉरगिव कर रहे हैं, हम अपने को फॉरगिव कर रहे हैं, ये याद रखना है। डू नॉट, यू नो, वो एक घाव है जो बना हुआ है, उस घाव की हीलिंग भी कर सकते या फिर उस घाव को रोज रोज रोज और गहरा कर सकते हैं। अपने आप से प्यार करना शुरू करो, हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब नफरत क्रिएट करके हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, दूसरों को हम नहीं रोक पाए जिन्होंने गलत किया, खुद को तो रोक सकते हैं,
1: हम खुद के साथ एक्चुअली गलत करते हैं,
0: हम अपने से नफरत करके अपने को बहुत बड़े बड़े घाव दे रहे हैं, ये उन घाव से भी बड़ा है जो किसी और ने दिया होगा,
1: और दूसरों से नफरत करके भी हम यही कर रहे हैं बेसिकली,
0: अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने से प्यार करो, अपने को क्षमा करो और अपने पर रहम करो। वी डोंट नीड सिंपथी फ्रॉम एवरीवन एल्स, कंपैशन, लेकिन वो भी अपने आप से, खुद के लिए, और उसके लिए हमें इसको अब खत्म करना पड़ेगा। मेक इट स्मॉल, है बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने मन की शक्ति को उसको लेकर उसको छोटा करो, क्योंकि तभी आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस। यू नो, हम ही अपने आप को कहते मैंने इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, अपने आप को कहो मैं भूल गई, आई एम ओवर एंड आउट विद इट नाउ, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ।
1: वेरी ट्रू। यू नो, पहले मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती थी ये बात कि अपने लिए करना होता है, यू नो, यू शुड फॉरगिव फॉर योर सेल्फ, कि आपको उनको माफ करना है, उनको लेट गो करना है अपने लिए, अपने लिए इन द सेंस कि इट विल मेक यू फील गुड, या आप बड़े महान बन जाओगे। तो मुझे बहुत गुस्सा चल रहा था कि मुझे महान नहीं बनना, लेकिन आई सडनली रियलाइज कि इट इज नॉट दैट, जितना जो कुछ भी हो रहा है, मैं चाहे मैं छोटी सी चीज के लिए पेन क्रिएट कर रही हूं, छोटी सी चीज के लिए गुस्सा क्रिएट कर रही हूं, इरिटेशन, रिजेंटमेंट, उसने किसी ने कुछ भी किया, कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है, वो उनका अपना है, चाहे वो मेरे लिए बहुत, यू नो, जिंदगी में नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रही हूं। इट्स सच एन अमेजिंग रियलाइजेशन, वी नीड टू रियलाइज, समडे वी नीड टू रियलाइज कि हमें अपने

को कितना प्यार करना है। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। आई थिंक आज समवेयर एक बहुत बड़ा वो एक मिथ ब्रेक हुआ है कि किसी के भी प्रति गुस्सा या एंगर बेसिकली अपने प्रति रख रहे हैं हम। अगर मन में कोई सवाल कोई बात उठती है आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, या तो हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, इसे जरूर इम्प्लीमेंट करें। बहुत पुरानी बातें भूलेंगे, बहुत कुछ जो पकड़ के बोझ में जी रहे हैं वो छूट जाएगा, एक नई जिंदगी आपके साथ होगी। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM।
1: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर आपको याद हो, पिछली बार हमने बात की थी एक ऐसे एस्पेक्ट की हमारी जिंदगी की जिसे हम सच मान के चलते हैं कि यही सहज है, और वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। आज हम में से 80% लोग तनाव से घिरे हैं, तनाव ग्रस्त हैं, और हम ये मान लेते हैं कि उससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, सिर्फ हम उसे थोड़ी देर के लिए रिलीव हो सकते हैं, और हमने वो तरीके भी देखे थे। लेकिन एक बात सामने आती है कि तनाव को हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं और एक तनाव रहित जिंदगी को पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वो कैसे किया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, एक बात तो हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं भी ये समझती हूँ कि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो लगता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि हर बार बात वही आ जाती है कि ये परमात्मा के महावाक्य हैं, उनका ज्ञान है जो हमें मिल रहा है। हमने जब स्ट्रेस की बात की थी तो कई मिथ्स, कई बिलीफ्स के साथ हम जी रहे थे, तो उसमें से एक बिलीफ अभी भी हम जो बहुत से लोग सोचते हैं कि वो है, वो ये कि स्ट्रेस को जांचने के लिए क्या हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, कैसे पता चले कि मैं स्ट्रेस में हूं, या जब उसका मैनिफेस्टेशन या तो ब्लड प्रेशर में होगा तभी मुझे जाना चाहिए। डू वी रियली नीड अ डॉक्टर?
1: जहां तक डॉक्टर के पास जाने की बात आती है, इट्स मोर फॉर द फिजिकल सिम्टम्स, कि अगर तनाव ने हमारे शरीर में किसी बीमारी का रूप ले लिया

0: देन डेफिनेटली मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. लेकिन डॉक्टर से भी जब हम इलाज करवा रहे हैं उस बीमारी के लिए, तो भी सिर्फ उस बीमारी का इलाज न करवाएं. अगर हम रियली उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हम उसके अंडरलाइन फैक्टर को देख लें कि इस बीमारी का मूल कारण भी कहीं ना कहीं मेरी मनोस्थिति है. क्योंकि आज डॉक्टर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, सो द रूट लाइज इन द माइंड, इट्स इन अनहेल्दी माइंड. लेकिन एक डॉक्टर के पास आज उतना समय नहीं है जो वो आपके माइंड के बारे में भी आपसे पूछे कि आपकी यू नो मनोस्थिति कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, आपको टेंशन तो नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे, हाउ एम आई फीलिंग टूडे. ये तो मुझे रुक कर अपने आप से पूछना चाहिए. क्या हम सारा दिन में अपने आप से कुछ एक मिनट निकाल कर पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टूडे, यू नो, टॉक टू द माइंड कि आज आपका क्या हाल है, आपकी जो हर एक थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, फील द पल्स ऑफ योर फीलिंग. हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ एक पैरामीटर्स को चेक करके हमारा डायग्नोज निकालता है कि यहाँ बीमारी हो सकती है. तो हमें भी अपने यहाँ के जो पैरामीटर्स हैं, मेरी थॉट्स कैसी चलती हैं आजकल, कहीं मुझे कोई अटैचमेंट तो नहीं ब्लॉक कर रही है, क्या सारा दिन में मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ तो नहीं रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान कर देती है, मैं दूसरों के प्रति आजकल कैसा सोचती हूँ. इट्स वेरी इजी टू इवेल्युएट दैट फॉर माई सेल्फ. लेकिन अगर हम रुक के नहीं करेंगे देन आई विल नॉट नो वेयर आई एम हेडिंग. तो एवरी डे इफ आई डू दैट ओनली फॉर 5 मिनट्स मुझे अपनी बीमारी का इलाज पड़ जाएगा.
1: एक और जैसे हमने एंगर के बारे में बात किया था, हर्ट के बारे में बात किया था, स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ अदर्स. मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, टीचर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतना इतना करूंगा, या मेरा पीयर्स जो है उनको देखती हूँ मैं तो मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ.
0: या सिचुएशंस ऐसे हैं, डेडलाइंस ऐसे हैं, टारगेट्स ऐसे हैं, हार्डली एनीबडी अंडरस्टैंड्स कि मेरे तनाव का कारण मेरे अपने अंदर है, मेरे तनाव का कारण बाहर है. हमने पहले भी देखा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला ही था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो रेजिलियंस अर्थात इनर पावर. तो तनाव इज इक्वल टू परिस्थिति, चाहे वो लोग हो सिचुएशन हो, डिवाइडेड बाय आंतरिक शक्ति. तो अभी तक हमने जो आंतरिक शक्ति वाला डिनोमिनेटर था
1: वो डिप्लीटेड था,
0: उसको तो निग्लेक्ट ही कर दिया था, उसको इग्नोर ही कर दिया. तो हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर. तो जितना जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा. अब प्रेशर तो बढ़ने वाले हैं, यू कांट डिनाई दैट कि डेडलाइंस और तंग नहीं होंगी, लोग अनरीजनेबल नहीं होंगे, या बॉस डांटेगा नहीं, या वाइफ झगड़ा नहीं करेगी. डोंट एक्सपेक्ट दोज थिंग्स नॉट टू हैपन. तो प्रेशर जो कि न्यूमरेटर है वो तो बढ़ने ही वाला है. अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया तो न्यूमरेटर बढ़ता गया, तो स्ट्रेस फैक्टर
1: वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया ना,
0: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया. तो प्रेशर यस, सिचुएशन एक ट्रिगर है. जब तक सिचुएशन नहीं आएगी तब तक तो स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा. लेकिन स्ट्रेस जो प्रेशर का फैक्टर है वो 10% शायद रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी 90% मेरे हाथ में है. क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो मेरे हाथ में नहीं. I cannot control the situation. I cannot change the boss. I cannot change my wife. Though we keep changing all these things now, but we don't really change. We will just look for new people. Lekin naye logon ke saath fir naye pressures. So we really can't change the person. So main numerator ko control nahi kar sakti. Lekin mere haath mein denominator hai. Antrik shakti, inner power, and wo totally mere control mein. So why not I increase?
1: In fact, why should I think we are not even aware of it.
0: Yeah.
1: You know, वो जो आंतरिक शक्ति है, जो resilience होना चाहिए, जो है हमारे पास already, हमें उसके बारे में तो एहसास ही नहीं.
0: एहसास ही नहीं. आप किसी भी परिस्थिति में देख लो कि दो या तीन लोग एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में है, तो उनके लिए न्यूमरेटर कॉमन है लेकिन उनका स्ट्रेस फैक्टर सेम नहीं होगा. ऑफिस में अगर हम कहते हैं कि बॉस बहुत गुस्से वाला है, तो वो आज सपोज ऑफिस के सभी लोगों को बुला के डांट देता है, लेकिन जब वो सभी को डांटता है तो हरेक का डांट सुनने के बाद का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होगा. व्हाई? अगर स्टिम्युलस एक ही है तो रिस्पॉन्स भी
1: एक ही होगा.

0: एक ही होना चाहिए. स्टिमुलस बाहर से आता है, रिस्पॉन्स मेरे अंदर से आता है, लेकिन दोनों के बीच में है फ्रीडम टू चूज माई रिस्पॉन्स कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है. हमने वो फ्रीडम टू चूज माई रिस्पॉन्स को निकाल दिया. हमने कहा ये स्टिमुलस तो ये रिस्पॉन्स.
1: बिकॉज आई थिंक हमारे पास वो ऑप्शन हमें याद ही नहीं रह गई, हमें पता ही नहीं है कि हम और भी तरीकों से रिएक्ट कर सकते हैं.
0: तो हमने ये कहा कि उन्होंने गुस्सा किया तो मुझे बुरा लगना ही नहीं,
1: परेशान होना ही था,
0: मुझे बुरा लगना ही था. अब 10 लोगों को उन्होंने डांटा, सभी को उतना ही तो बुरा नहीं लगा. तो अगर आपको वो बुरा जो लगने की परसेंटेज थी वो 10 मिनट रही, यू फेल्ट बैड, यू वर अ लिटिल अपसेट, बट फॉर 10 मिनट्स. बट आई वॉज अपसेट फॉर 1 आवर. बॉस तो एक ही था. तो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप 10 मिनट में ठीक हो गए और मुझे 1 घंटा लगा और शायद किसी और को 10 दिन लग जाए. तो व्हाट डू यू हैव? यू हैव दैट पावर इनसाइड टू अकोमोडेट, टू अंडरस्टैंड एंड फिनिश. दैट इज इनर पावर.
1: इनफैक्ट दिस इज एन एग्जाम्पल कि हम कर सकते हैं, पॉसिबल है. दिस एक्चुअली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. कि
0: ये वो राजयोग से क्या होता है, हम डिनोमिनेटर को
1: इंक्रीज कर
0: बढ़ाना शुरू करते हैं, न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं कर सकते. दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल. एंड वर्तमान समय जैसे कलयुग के समय में हम चल रहे हैं तो न्यूमरेटर जो है वो तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उतनी ही तीव्र गति से हमें डिनोमिनेटर को भी
1: इंक्रीज
0: लाना पड़ेगा. अगर डिनोमिनेटर बढ़ता गया फास्ट तो स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा. सो आई जस्ट नीड टू फोकस राइट नाउ. माय फोकस इज ऑन द सिचुएशन. परिस्थिति परिस्थिति परिस्थिति को कैसे ठीक करना है, लोगों को कैसे ठीक करना है. फॉरगेट द सिचुएशन. पूरा फोकस अपना कर दे डिनोमिनेटर पे कि आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है. हमारा फोकस परिस्थिति के ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है जिससे हमारी आंतरिक शक्ति एक्चुअली उतनी कम होती जाती है और इसीलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है. फिर कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि जैसी सिचुएशन वैसा मुझे तनाव. तो फिर ये तो कहीं चॉइस रही नहीं कि तनाव क्रिएट करना ये कहीं मेरे हाथ में था. आई थॉट इट इज ऑलवेज आउटसाइड एंड दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन. जब तक मेरे टेंशन का रीजन बाहर है I cannot lead a tension-free life. And if I think the cause of my tension is outside, then I am justified in believing that I cannot be free of stress. And इसीलिए majority people today, आज industry में stress management के programs होते हैं. हमारे पास बहुत सारी books आज market में हैं जो stress management पर बात करते हैं. Unfortunately, most of them have to say कि a little bit of stress is normal. तो क्या होता है, हर एक के अंदर वापस, क्योंकि वो ऑलरेडी बिलीफ तो है कि स्ट्रेस तो नेचुरल है, और जब कोई इस तरह का हमें कह देता कि ये तो नेचुरल है तो हम उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते कि ये तो नेचुरल है, और वो नेचुरल करते करते करते हमारा स्ट्रेस लेवल
1: बिल्कुल भाई थोड़ा जो है वो हमेशा हर एक के लिए अलग अलग होगा. आपके लिए एक अलग क्वांटिटी होगी उस थोड़े की कि थोड़ा स्ट्रेस होना. मेरे लिए चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रेस हो जाए मैं उसे मान लूंगी यही थोड़ा है.
0: लेकिन एक होता है कि बीमारी थोड़ी है और एक है बीमारी नहीं है. तो ब्रह्मा कुमारीज में वी नेवर टॉक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज हम समझते स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हर एक ऑलरेडी कर रहा. हम कहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, तनाव मुक्त जीवन, तनाव प्रबंधन नहीं, वो तो आप ऑलरेडी करते हैं. और बीमार रहना और बीमारी को मैनेज करना ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी कर रहे हैं. बीमारी को जड़ से खत्म कर देना, देन इट इज अ गुड क्वालिटी लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे तनाव का कारण मेरे अपने पास है. और कई बार क्योंकि ये भी समझते कि अगर आप स्ट्रेस फ्री हो गए तो आप फिर बहुत
1: लो हो
0: जाएंगे, कम्प्लेसेंट हो जाएंगे, आप तो कुछ करेंगे ही नहीं, आपके जीवन में कोई एम्बिशन ही नहीं रह जाएगा, आप तो बस आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा. क्योंकि अगेन बिकॉज वी यूज्ड स्ट्रेस एज अ मोटिवेटर, तो हमने सोचा स्ट्रेस हमें आगे बढ़ाता है, स्ट्रेस हमें पुश देता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर वो एड्रेनालिन सिक्रेट करता है, और वो जब एड्रेनालिन सिक्रेट होता है तो हम ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं. और इसीलिए हम समझते थे कि स्ट्रेस होने से काम इफेक्टिव हो जाता है. डेफिनेटली जब स्ट्रेस होता है तो थोड़े समय के लिए

0: Who am I? Was my name, my profession, my designation, my nationality, my caste, my family name, all those things, and my body. And main sari cheezon se bahut attached the. Ab dheere dheere mujhe samajh mein aaya ki ye sab kuch to mera hai. Ye main nahi hu, ye mera hai. Yahan tak ki sharir ke liye bhi hum kehte hain ki ye mera sharir hai. To main kaun hu? Aaj din tak savere jab khade hokar sheeshe mein dekha to is sharir ko dekha to samjha yahi main hu. Jaise hi is sharir ko main samjha तो ये भी बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ कि आज ये यंग है, कल ये ओल्ड हो जाएगा और परसों फिनिश हो जाएगा. और ये जब बिलीफ सिस्टम आया तो फियर ऑटोमेटिकली आ गया कि ये तो थोड़े दिन में पुराना होने वाला है, ये तो एक दिन फिनिश भी हो जाएगा. यू सी इफ पीपल स्टार्ट नोटिसिंग दे हैव व्हाइट हेयर और दे हैव रिंकल्स ऑन देयर फेस या उनकी स्किन थोड़ी सी यू नो वो ग्लो जा रही है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, क्रिएट्स लॉट ऑफ फियर. क्योंकि हमने समझना शुरू किया कि यही मैं हूं. तो अगर यही मैं हूं तो ये मुझे क्या हो रहा है? और जहां ये फियर आया तो फियर ऑफ डेथ पे. एंड फियर ऑफ डेथ इज द डीपेस्ट रूटेड फियर. और जहां फियर ऑफ डेथ है तो वहां हैप्पीनेस. स्ट्रेस इज फियर एंड ये फियर हम लाइफ लॉन्ग अपने साथ कैरी करते तो हैप्पीनेस और पीस ये तो पॉसिबल ही नहीं है. जहां वो बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया कि ये मेरा है, ये मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम एनर्जी, आई एम पावर. And if I'm energy, then I cannot get destroyed. ये एक बहुत बड़ा shift आया जिसकी वजह से fear खत्म हो गया. क्योंकि जहां मैं perishable हूं, destructible हूं, तो मैं finish हो जाऊंगी. लेकिन जहां मैं energy हूं ये समझ में आया तो energy can neither be created nor be destroyed. तो who dies? मृत्यु किसकी होगी? इस शरीर की? मेरी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, एंटिटी हूँ. अब ये भी शुरू में जब हम सुनते हैं तो ये बिलीफ है. पहले बिलीफ था मैं शरीर, अब परमात्मा ने जब ये ज्ञान दिया तो एक बिलीफ बना कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ. अब मुझे इस बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी एक बिलीफ ही हो जाएगा. मैं नाम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ. It's one of the labels that I have. But I will have to experience कि मैं ये नहीं, मैं eternal, अजर, अमर, अविनाशी, मैं वो शक्ति, वो आत्मा हूँ. और जहां वो आत्मा का अनुभव होना शुरू हो गया तब भय finished. Because then I don't fear the loss of anything.
1: Because there's no loss.
0: There is
1: it continues. Life continues. Actually.
0: Life continues. जब समझ में आया कि मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है, जब शरीर समझा अपने आप को, तो जब से पैदा हुए जब तक ये शरीर खत्म होता है ये इतना ही जीवन है मेरा. इतने में ही मुझे सब कुछ accumulate करना है, लेकिन इतने में ही कितना कुछ मेरे से चला भी जाता है. तो सारे जीवन उस भय में चलती है कि कहीं ये ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मकान ना चले, कितना डर. तो जहां डर है वहां टेंशन है. वेर एवर देर इज अ फियर ऑफ लॉस ऑफ एनीथिंग देर विल बी टेंशन. इवन इफ इट इज फियर ऑफ लॉस ऑफ अ पर्सन कि कहीं मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना हो जाए, वो भी फियर है, तो वो टेंशन.
1: और कहीं ना कहीं वो फियर ये भी है कि जब ये लॉस होगा तो जो सिचुएशन होगी उसे फेस कैसे करूंगा. वो फियर कि उसको फेस करने की क्षमता नहीं है मुझ में,
0: क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूं उन पे. क्यों? क्योंकि मुझे उनसे खुशी मिलती है. ये बहुत डीप रूटेड है ना. जैसे मुझे टेंशन आपसे मिलती है, गुस्सा मुझे आपके कारण मिलता है, तो खुशी भी
1: आप ही से मिलती है.
0: तो अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरी खुशी चली जाएगी. सी मेरे आंतरिक फीलिंग्स की सारी जिम्मेवारी मैंने बाहर ठहराई हुई है, तो मेरी खुशी के जो कारण है वो भी सारे बाहर है. हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ फैमिली, लव इज बिकॉज ऑफ पीपल, हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ पोजेशन,

0: happiness is because of position, because of status. तो अगर मेरी happiness इन सब पे dependent है, तो इनमें से अगर कुछ भी लिया, तो मेरी happiness चली जाएगी. तो I don't want to lose my happiness. तो मैं डरती रहती हूँ कि कहीं इनमें से कोई चला ना जाए. और डर मतलब stress. तो सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन जो परमात्मा ने आकर हमें अपने बारे में ही याद दिलाया कि आप ही भूल गए हो कि आप कौन हो, आप ये सब नहीं हो, आप ये सब को यूज करने वाले, इस सब को चलाने वाले, आप एक ब्यूटीफुल कॉन्शंट एनर्जी हो. यू आर अ प्योर बीइंग एंड योर एनर्जी विच नेवर एवर गेट्स डिस्ट्रॉयड. और इसको जब हम सिर्फ समझ नहीं लेते, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है. और जिस आत्मा के अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाए, उसको फिर
1: बाकी सारे फियर
0: और कोई डर नहीं होता. और फिर उसको ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए. क्योंकि डर नहीं है ना, डर नहीं है तो टेंशन किस बात के. डर वॉज पैकेज्ड विद टेंशन. तो मैं आत्मा शक्ति हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ. हर रोज कुछ क्षणों के लिए अपने आप से समय निकालकर अपने आप से ये बात करें और अपने आप को याद दिलाएं. क्योंकि भले ये सत्यता है लेकिन हम भूल चुके हैं. तो सत्यता को ही मुझे फिर से अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा. तो हर रोज थोड़ा समय निकालकर, वी कैन डू इट राइट नाउ, थोड़ा समय निकालकर अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूं. आस्क माई सेल्फ कि ये शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं शरीर को यूज करती हूँ, इस शरीर के द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, देखती हूँ, लेकिन करने वाला कौन? ये करने वाला मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ. आई एम पावर. इट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग हेयर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. I am energy. I choose कि मुझे क्या सोचना है, क्या फील करना है, क्या महसूस करना है. मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ. तो डर किसी बात का नहीं, क्योंकि मैं अमर हूँ तो मेरी मृत्यु
1: नहीं
0: हो नहीं सकती. I am eternal. तो ये अगर हम हर रोज बार बार साइलेंस में अपने साथ समय निकालकर ये बात अपने आप को बार बार दिलाएंगे याद, तो थोड़े दिन के बाद हमें एक्चुअली उसका अनुभव
1: हो जाएगा. डेफिनेटली शिवानी, दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि अनुभव होने के बाद ही, जब सिचुएशन, एक बार जब अपने आप को पहचान लिया तो फिर जब सिचुएशंस आएंगी जहां तनाव हम क्रिएट करते हैं, उन्हें भी जो आंतरिक शक्ति वाली बात है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसे हम हैंडल करते हैं.
0: क्योंकि वो आप सुबह जो प्रैक्टिस करेंगे, फिर सारा दिन में जब आप कांटेक्ट में आएंगे सिचुएशंस और लोगों के, आप बार बार अपने आप को ये याद दिलाएंगे, मैं आत्मा हूँ, इसको मैं यूज कर रही हूँ. मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है. ये मैं नहीं हूँ, ये डेजिग्नेशन ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है. तो जितना बार बार ये रिमेम्बरेंस, वी कैन डू इट प्रोबेबली 100 टाइम्स इन अ डे. क्योंकि जितनी ज्यादा बार हम अपने आप को ये याद दिलाएंगे, वो स्मृति पक्की होती जाएगी. तो बार बार मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है, तो उससे मेरी डिटैचमेंट अपने आप होती जाएगी और उसको खोने का डर वो खत्म.
1: चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो इवन आपका लव्ड वन हो, जिसे सपोजिटली हम बहुत ये कहते हैं कि उनके बिना, उनके ऊपर हैप्पीनेस डिपेंड कर रही है मेरी. सिस्टर शिवानी, तनाव मुक्त पूरी तरह से हो सकते हैं हम, स्ट्रेस फ्री लाइफ को हम बिल्कुल अपना सकते हैं. और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपने कहा कि खुद को पहचानना, खुद की पहचान. खुद की पहचान करके किस तरह से, जब सिचुएशन सामने आती है जहां स्ट्रेस है, वो हमें हेल्प करेगा. हम उन सिचुएशंस के बारे में भी जानेंगे अपने आने वाली कड़ियों में. लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999-3-44-555, 9999-3-44-666, 9873-666-555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com.
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको

0: जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो, एंड असर्टिव जब हम होते हैं हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

पर नाच कृष्ण कन्हैया धोती में के संग राज बचावत नाच चावत दादा कैया कैया कैया खेलत गेंद गिरी यमुना बुझ नित्य कियो सहनाद न कैया गोप के इंद चढ़ो बुझ ऊपर गोप करत सब हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंत बजावत देन चलैया जगते मोहन मन में माए नित्य सर्क राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन.
2: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स. जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं. आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा. वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट. पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है. नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है. कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
4: दोस्तों, अगर किसी भारतीय युवा से, युवा छोड़िए किसी को भी, अगर आप पूछें कि इंडिया किन चीजों के लिए जाना जाता है, व्हाट इज स्पेशल इन इंडिया, लोग या तो बॉलीवुड का नाम सबसे पहले लेते हैं या क्रिकेट का नाम लेते हैं. और जब क्रिकेट की बात होती है तो अक्सर हमारे कानों में वो आवाज गूंजने लगता है, सचिन सचिन, या धोनी की बात हो जाती है या कोहली की बात हो जाती है. लेकिन आज हम हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के एपिसोड में एक ऐसे किरदार से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट के द्वारा भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया है. लेकिन ये एक बहुत खास मेहमान है. हम आज मिलने जा रहे हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भारत के ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान श्री शेखर नायक जी के साथ. आइए शुरू करते हैं उनसे बातचीत का दौरा. शेखर नायक जी को भारत सरकार ने वर्ष 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है. इनका जीवन अपने आप में इतना उदाहरणीय है कि इसको सुनते सुनते आपको लगेगा कि इसके ऊपर तक फिल्म बनना चाहिए. लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज उन्होंने हमें समय दिया है. आइए शुरुआत करते हैं बातचीत के सिलसिले को. सबसे पहले तो हम करते हैं उनका स्वागत. वेलकम करते हैं शेखर जी आपका हम हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और स्वागत भी है आपका.
5: धन्यवाद सर. धन्यवाद. मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है कि आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा बात को आप पूरा दुनिया को सुनाने के लिए जा रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद
4: जी. एक तो आप स्पोर्ट्समैन है, आपके जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है. सबके जीवन में है लेकिन आपके जीवन में खास तौर पे है. लेकिन उसमें से भी आपने समय हमें और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, उसके लिए तो आपको बहुत तहे दिल से पहले पहले धन्यवाद है.
5: धन्यवाद जी.
4: शेखर जी, आपने भारत के नाम को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, चाहे वो खेल जगत में क्रिकेट के माध्यम से हो, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन के रूप में भी आपने भारत के नाम को बहुत उजागर किया है. लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के पहले आपका सफर कैसा था, आपका जीवन कैसा था, ये हम सुनना चाहेंगे. आपकी कहानी, आपकी जुबानी.
5: धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. मुझे आज जो मेरा लाइफ के बारे में बताने का एक मौका मिला है आप सभी लोगों से. सर, मेरा जन्म हुआ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में, आपका नाम है शिवमोगा. मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ. सो शिवमोगा इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो यहाँ पे मैंने पैदा हुआ. बाई बर्थ मैंने टोटली भी नहीं नजर आता था मुझे. बाद में 16 लोग से भी ज्यादा मेरा फैमिली में जो ये प्रॉब्लम था, ब्रेन जिसका प्रॉब्लम था, मेरा मम्मी को भी नहीं दिखाई देता था और मेरा मुझसे लोगों को भी नहीं दिखाई देता था और उनके बेटे लोगों को भी, बेटी बेटा लोगों को भी नहीं दिखाई. सो हेरिडिटी आई कैन से.

तो ये मेरा नानी की तरफ से, मेरा मम्मी का तरफ से, नानी का तरफ से ये हेरिडिटरी आया था। तो मैंने मैंने फुल्ली ब्लाइंड था 8 साल तक। तो और जब 8 साल के अंदर मैंने जो मुश्किलें उठाई तो उसको तो मैं वो सोच भी नहीं सकता अभी, इतना मुझे लाइफ में रिस्क हुआ और कुछ भी समझ में नहीं आता था। टोटली ब्लैंक, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। मीन्स अभी हम लोग आंख से देख के सीखने का जिंदगी में 80% रहता है चीज, और दूसरे अंगों से सीखने का चीज 20% रहता है। तो विदाउट आईज यू कांट डू एनीथिंग, सो आंख है तो ही सब कुछ है। तो तब मैंने जब 4-5 साल का था, तो तब हमारा गांव में जब बारिश गिरता था, मैंने सोचता था कि कोई मेरे ऊपर बारिश पानी घर के ऊपर चढ़ के मेरे ऊपर कोई पानी डालता। और कभी कभी जो पक्षियां और चिड़िया जो आवाज करते थे, मैंने सोचता था कि मेरे जैसे कोई दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करने के लिए आ रहा है। बाद में गांव में कुत्ता वगैरह सब जैसे साउंड करता था, मैं उसको बिल्कुल टोटली कंफ्यूज होता था। और हमेशा मेरा मम्मी डैडी को मैं पूछता था कि ये क्या है, ये क्या चीज है, ऐसा तो आवाज निकल रही है, मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैंने हमेशा मेरा मम्मी डैडी का जो मुंह उनका फेस टच करके, अच्छा आपको भी मुझे फर्क नहीं है, ऐसा ही है सब कुछ, मैं टच करके देख के मैं सीखता था। तो मेरा जैसे मैंने बोला, मेरा मम्मी भी ब्लाइंड थी, तो हमारा पास कोई खेत वाड़ी कुछ नहीं था। डैडी ने दूसरों का खेत में जाके लेबर का वर्क काम करके उन्होंने तो दिन का गुजारा निकालने के लिए वहां से कमाते थे, और दिन का पैसा वो लोग डैडी ने लेके आके, इसे तो भी ऐसे ही रोज जिंदगी चल रहा था। और आते आते दिन ये भी बड़ा हो रहा था। तो हमारा गांव में बहुत सारे मेरे लड़के लोग थे, तो लड़के लोग उनको सब दिखता है, इसीलिए वो लोग सब जाके स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और जो पेड़ के ऊपर चढ़ के वो लोग जैसे दूसरा गेम खेलते थे। और मेरा गांव के बाजू में ही एक नदी है, नदी का नाम है तुंगा। तो तुंगा नदी में वो लोग पत्थर के ऊपर जाके से में कूदते थे, जंप करते थे। तो इसके लिए सब मुझे वो लोग खेलने के लिए नहीं लेते थे, क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूँ और उनके साथ मैं नहीं खेल सकता हूँ। तो मम्मी को हमेशा के लिए ये एक बात बहुत बहुत हर्ट होता था, और वो हमेशा मुझे बोलती थी कि आप जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ये जो लोग तुझे खेलने के लिए नहीं ले रहे ना, तू एक ऐसा दिन क्रिएट करना है कि वो लोग आके तुझे शेखर मैं भी आपके साथ खेलूं क्या करके पूछना है। तो आज तक ऐसा आप ग्रो करना है, आप हमेशा यू हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव टू बिकम समथिंग। बाद में आपका जो ब्लाइंडनेस है, आप उसी को बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम समझ के आप एक कमरे में मत रहो। आप मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर सभी लोगों के जैसा ही हूँ करके आप अगर जिंदगी गुजारोगे तो एक दिन आप महान व्यक्ति बनोगे। तो ऐसा मुझे मेरा माँ ने हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, और मैं भी बहुत खुश था। और मेरे डैडी ने भी मुझे, मैं अकेला बेटा हूँ, नो सिबलिंग्स फॉर मी, नो भाई बहन कोई नहीं, मैं अकेला। तो मेरा डैडी ने भी मैं अकेला बेटा हूँ करके मुझे बहुत बहुत प्यार देते थे। और एक दिन क्या हो गया, गांव का बाजू में एक 1.5-2 किलोमीटर दूर में डैडी ने वो शुगर केन गन्ना को कट करने का काम के लिए गए थे, और मेरा मम्मी भी उनको हेल्प करते थे। एक्चुअली गांव में होता है ना, एक कोई एक दिन मेला निकलता है तो उस दिन उनको पेमेंट होता है, तो लोग सब जाके सब्जी वगैरह सब खरीद के और गांव को पहुंचते हैं। तो ऐसा होने वाला था उस दिन मंगलवार था, और हमारा गांव से 2-3 किलोमीटर दूर वो मेला होने वाला था। हम हाट बोलते है ना, तो बाजार होते है ना, तो वहां पे जाके सब सब्जी वगैरह ग्रोसरीज वगैरह खरीद के आना करके सोचा था। तब मेरा मम्मी और मेरा नानी तो दोनों वो नदी पार करके आ रहे थे। मैंने बहुत उधर हल्ला मचा दिया कि मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगा, मैं पूरा बाजार घूम के आऊंगा, मुझे इधर खेत में रह रहे के बस हो गया है। तो डैडी और दूसरे लोगों ने मना किया कि आप मत जाओ, उनको वो बैग्स वगैरह सब उठा के लेके आना आप, और आपको भी पकड़ के लेके आना, मुश्किल होगा करके बताया। तो भी मैं नहीं माना, मैं बच्चा हूं ना, तो मम्मी के साथ में रहना बहुत पसंद लगता था, वो भी नानी के साथ में रहना बहुत
तो मैंने बहुत जिद किया और उनके साथ निकल पड़ा। ऐसे ही जाते जाते समय नदी पार करते समय मैंने मेरा पैर किड होके मैंने एक 25 से 30 फीट नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरा मम्मी और नानी ने जोर से चिल्लाने लगे कि शेखर नीचे गिर गया नदी में, कोई आओ बचाओ, कोई आओ बचाओ करके। तो बस वहीं पे थे मेरा डैडी और मासा लोग, मामा लोग, तो वो लोग सब आके मुझे उधर नीचे उतर के सब उठाया, उठा के लेके आके घर पे सुलाया। तो घर पे सुलाने के बाद मेरा राइट आई का जब देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी मार्क है 1994 का, ये तो 2024 है, एग्जैक्टली 30 इयर्स बैक दिस मार्क हैज हैपेंड। तो तब मुझे लेके आए और घर पे सुलाया, और उनके पास उनको हमारा फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उन लोगों को 16 लोगों को आंख नहीं दिखता, हॉस्पिटल जाना है, ट्रीटमेंट लेना है, नहीं उनको पता था। वो लोग स्कूल को नहीं गए थे, थोड़ा सा भी वो लोग सोचा भी नहीं लगता है, सही सही जिंदगी गुजार रहे थे। तो उस दिन मुझे वो खून रुकाने के लिए, इट वॉज माई राइट आई वॉज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, कभी ब्लीडिंग हो रहा था, तो उन्होंने वो ब्लीडिंग रुकने के लिए जैसे टर्मरिक हल्दी का पाउडर, और कॉफी का पाउडर हल्के मेरा मम्मी का साड़ी फाड़ के मुझे बैंडेज करके बना के इसे ही सुलाया, और बहुत बहुत खून बह रहा था। मेरा मासी लोग अभी भी मुझे बोलता है कि तू यहीं पे गिरा था, तुझे बहुत खून आया था करके। तो अभी मैं गांव जाता हूँ तो उसको याद करके बहुत मुझे नाराज होता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो आप बुरा सोचो कि बुरा होने के लिए हुआ है, कुछ लोगों का जिंदगी में कुछ बुरा हुआ तो उन्हें सोचना है कि वो अच्छा होने के लिए है। सो ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव से रहना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। हम लोग जिंदगी में कितना कितना मुश्किलें उठाएंगे वो सब हम लोग पार करके जाएंगे बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन और हिम्मत, नहीं हारना। अगर हमें हिम्मत है तो हम कुछ भी बन सकते हैं। तो गॉड ब्लेस आई कैन से, मैं उस दिन गिर गया और अगले दिन ही हमारा गांव को कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जैसे छोटे मोटे गांव में आई चेकअप कैंप के लिए करने के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आते हैं, तो भगवान ही भेजा लगता है उनको, शिव जी ने ही भेजा लगता है हमारा गांव पे, वहां पे बच्चा पड़ा है, जाके उनको ट्रीटमेंट करो करके शायद। मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। तो अगले दिन वो लोग आए और उनसे जाके कोई एक आदमी बोला कि सर वहाँ पर एक लड़का पड़ा है, उसका राइट है कि उस पर बहुत बहुत खून बह रहा है, उसको थोड़ा फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिए ना करके। तो तुरंत डॉक्टर ने दौड़ के मेरा घर पे आए, तो उन्होंने मेरा खून वगैरह सब साफ करके, डिटाइल टिंचर जो बोलते हैं उसको क्लीन करके, उन्होंने बोला अभी इसको ठीक हो जाएगा, मैंने बैंडेज किया। तो बाद में डॉक्टर अचानक मेरा मम्मी लोग की उनको नहीं बताया कि इसको नहीं दिखता है, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्यों, मैं शेखर को देख रहा हूँ तो शेखर मेरे तरफ और नजर नहीं दे पा रहा है, वो तो उस तरफ इस तरफ दिख रहा है, क्यों इसको नहीं दिखता है, क्या करके पूछा। तो मेरा मम्मी ने बोला कि नहीं सर इनको नहीं दिखता है, तो इसलिए ये गिर गया। तो हमारा फैमिली में 16-17 लोग ब्लाइंड है, तो डॉक्टर ने तुरंत बोला कि ठीक है शेखर को ऑपरेशन करने से थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन आपको बैंगलोर आना पड़ेगा। बैंगलोर तो मेरा गांव से करीबन 350 से 400 किलोमीटर है। तो 1994 में, और मेरा मम्मी भी ब्लाइंड है और मेरा डैडी भी अनएजुकेटेड है, वो लोग उधर से बैंगलोर को आना, बैंगलोर में हॉस्पिटल ढूंढना, अब तो वगैरह सब फोन वगैरह है सब कुछ कैसा तो भी हो जाएगा। अब तो लैंडलाइन भी नहीं था, लैंडलाइन भी बहुत कम थे, अगर एक गाँव में एक कभी एक भी फोन नहीं था लगता है मेरा ख्याल से। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बैंगलोर आओ, तो मेरा मम्मी डैडी के पास बिल्कुल पैसा नहीं था कि मुझे बैंगलोर लेके आए और ऑपरेशन कराए। तो उसमें से हमारा गांव के कुछ लोग मेरा मम्मी को कुछ 210 रुपए या 220 रुपए दिया करके मेरा, तो पैसा लेके मम्मी ने मुझे बैंगलोर लेके आए। तो बैंगलोर लेके आने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ, तब मुझे थोड़ा बहुत नजर आया। तो बैंगलोर से और मेरा गाँव शिवमोगा आने के बाद मेरा डैडी ने मुझे सभी जगह पे लेके आके, आप यहाँ पे गिरा था, ये नदी है, यहाँ पे खेलता था आप, और तुझे यहाँ पे मुर्गी काट लिया था, आपको यहाँ पे कुत्ता काट लिया था, सब कुछ मुझे बताया। तो तब उसके मुझे गाँव में सब देखने के बाद, अच्छा ये लोग चिड़िया जो आवाज करती है वो ऐसे रहती है क्या, वो अच्छा कुत्ता ऐसा रहता है क्या। बाद में मेरा डैडी का फेस और मम्मी का फेस ऐसा है क्या, मुझे बहुत

0: एक
1: सवाल मेरे को यहाँ पर पूछना है कि जो ऑपरेशन था वो सरकारी अस्पताल में हुआ ऑपरेशन और वो सक्सेसफुल रहा?
0: हाँ सर, ये तो सरकारी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ
1: जी।
0: तो ऑपरेशन तब 90s में एक्चुअली जो अभी जो ऑपरेशन करके लेंस डालते हैं तो वो 90s में जस्ट लेंस वगैरह सब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था तो प्रॉपर क्वालिटी लेंस वगैरह नहीं थे तो मुझे 1994 में ऑपरेशन करके वो लोग दोनों आंख में लेंस डाला लेकिन मैं मेरा राइट आई से खाली 30% तक देख सकता हूँ और लेफ्ट आई जीरो है इसमें मैं इससे कुछ नहीं देख सकता हूँ
1: तो ये जो 30% देखने की क्षमता है वो आज है या उस समय भी 30% ही थी?
0: हाँ सर, उस समय से भी ऑपरेशन होने के बाद में से ही मुझे 30% का एक विजन आया।
1: तो उस 30% में आपने क्या क्या देखा सबसे पहले? सबसे पहले आपने क्या देखा
0: सर? सबसे पहले ये तो बहुत बहुत एक मेरा लाइफ का मोमेंट है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया हॉस्पिटल में करने के बाद उन्होंने शेखर में आपका बैंडेज निकालना चाहता हूँ तो आप उन्होंने पूछा कि आप क्या चीज देखोगे तो मुझे पता नहीं सर मैं ऐसा क्यों बोला। सर मुझे पहला मम्मी का फेस देखना है, मेरा मम्मी का मुंह देखना है। तो बाद में उन्होंने मेरा मम्मी को भी ऑपरेशन हुआ है तो उनको भी व्हील चेयर में लेके आए और मुझे भी व्हील चेयर में लेके आए तो मेरा धीरे धीरे बैंडेज निकलते।
1: तो आपकी मम्मी को भी थोड़ा सा दिखता था?
0: हाँ, उनको भी थोड़ा बहुत 5-10% उसको नजर आया। हाँ
1: जी।
0: तो बाद में मेरा जो बैंडेज निकालते मेरा मम्मी का मैं फेस देखा ना, ओ माई गॉड अनबिलीवेबल सर। मैं उसको अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे भूख से जो मर रहा हो उसको एक घूट पानी मिल गया तो उसको सोचेगा कि मैं बच गया। तो मेरा मम्मी के फेस देखने के बाद उसे मुझे ऐसा लगा कि मुझे धरती पे लेके आने वाली माँ यही है मेरी माँ। उसका फेस इतना तेजस था ना सर, उनका फेस हर फेस वॉज शाइनिंग लाइक एनीथिंग सर, सूरज जैसा उसका वो एक्सप्लेनेशन में आई डोंट नो सर हाउ टू एक्सप्लेन हर फेस।
1: नहीं, आपके शब्दों में तो जो आपकी भावनाएं हैं वो मेरे तक तो क्या हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंच रहा है और आज वो भी याद कर रहे होंगे कि उनकी मम्मी को वो याद कर रहे होंगे जब आपकी आवाज सुन रहे। मैं भी मेरी मम्मी को याद कर रहा हूँ कि आपने इतना एक पावरफुल मेमोरी हम सबको वापस दिलाया कि माँ का फेस जो होता है वो बिल्कुल एक सूर्य की तरह होता है, जो एक जीवन जो कि अंधेरे में होता है उसमें रोशनी लाने वाला शक्ल होता है। वाकई में बहुत सुंदर। और उसके बाद फिर क्या हुआ?
0: सर इसके बाद जब मैंने मम्मी को हग किया, मम्मी को पप्पी किया, माय गॉड, बाद में उधर से गांव आने के बाद वही मेरा डैडी ने सब कुछ बताया मुझे कि पेड़ है, आपको हवा आता था ना तो हवा ऐसा आता है तो धूप आता था ना तो तब सोचता था कि मेरे सामने कोई आग लगाया, वो आग नहीं है, सूरज है। तो सबने मुझे सब कुछ मुझे मेरा डैडी ने सिखाए। और ऑपरेशन होके 2-3 महीना हुआ था, 3 महीने होते जा रहा था तो अनफॉर्चुनेटली मेरा डैडी को फादर को तबीयत खराब हो गया और सडन डेथ हो गया
1: जी।
0: तो सडन डेथ होने के बाद उनका सब अंतिम संस्कार सब किए, तब में मेरा मम्मी टोटली शी वाज टोटली कोलैप्स्ड क्योंकि वो भी उसको भी दिखाई नहीं देता, वो काम नहीं कर सकती, कमा नहीं सकती और उसका जिंदगी, मैंने मम्मी ने सोचा कि जिंदगी चला गया और मेरा और मेरा बेटा हम लोग अभी हम बिना खाना बिना पानी से मर जाएंगे। तो ऐसा सोच,
1: लेकिन एक चीज इसमें यहाँ पर मैं आपको रोक कर ये जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी जब उन्होंने आपकी माताजी से विवाह किया तब उनको पहले से पता था कि आपकी माताजी दृष्टि बाधित हैं?
0: हाँ सर और ये तो एक्चुअली मेरा फादर ने ही इज ए नॉर्मल पर्सन क्योंकि उन्होंने दूसरा फैमिली से आके मेरा मम्मी को शादी किया सर। मेरा डैडी का भी बड़ा स्टोरी है सर, उनका मम्मी डैडी ने गाँव का पटेल जो पटेल लोग रहते ना पटेल लोग
1: जी,
0: तो उनसे कुछ उधार में पैसा लिया था, वो पैसा नहीं चुका पाए इसलिए मेरा डैडी को वो लोग किराए पे रख दिया था सर, जो इतना पैसा खत्म होने तक इसको आप 3-4 साल इनके फ्री में काम करवा लीजिए। तो ऐसा रख दिया था। तो तब मेरा मासी है ना, मेरा मम्मी का दीदी,

0: उन्होंने वही गांव से आके मेरा मासी को शादी किए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा मासी का बहन यानी कि मेरा माँ को वो लोग जाके एक लड़का को लेके आएंगे, वो उससे शादी करते हैं। तो रात जाके वो पटेल का घर से डैडी को लेके भगा के लेके आके अगले दिन ही वो लोग मम्मी से शादी करवा दिया। और वो शादी होने के दिन ही वो लोग वो गांव का पटेल लोग आ गए हमारा गांव को कि ये लोग हमसे कर्जा लेना है, कर्जा देना है, कर्जा देगा तो हम इसको छोड़ेंगे, नहीं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को लेके जाके हम लोग लड़ाई कराने के लिए छोड़ेंगे। तो गांव वालों ने सब झगड़ा करके उनको मार पीट के भगा दिया। तो तब से ये मेरे डैडी ने जो मेरा नानी नाना का गाँव यानी कि मेरा मम्मी का गाँव में ही शादी करके उधर ही बना के उधर ही।
1: आपके पिताजी ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया। एक तो क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा लगता है जो किसी भी प्रकार की विकलांगता का शिकार है, लोग उनसे किनारा करने का प्रयास करते हैं, लोग उनसे दूर जाने का कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी है, इनको कैसे संभालेंगे। लेकिन उस समय जब तकनीक या टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, उस समय में भी एक कम उम्र के युवा पुरुष ने सोचा कि कोई बात नहीं, यही मेरे जीवन का आधार है और इनके साथ ही मैं एक सुंदर जीवन की कल्पना कर सकता हूँ। आपके पिता के लिए वाकई में हमारे दिल से बहुत सम्मान निकलता है और उन्होंने बहुत अच्छा एक सुपुत्र दिया भारत को, जो कि भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो आप हमारे श्रोताओं को अपने पिताजी का नाम भी बता दें तो बहुत अच्छा होगा।
0: सर मेरा मम्मी का माँ का नाम जमुना भाई है, जमुना भाई, और मेरा डैडी का नाम एक्चुअली मेरा डैडी का नाम लक्ष्मण है। तो जब लोग गाँव में लोगों को बुलाने के लिए नहीं आता था ना, तो वो लोग लक्ष्मण की जगह पे लक्ष्मा करके बुला दिया,
1: लक्ष्मण जी।
0: हाँ लक्ष्मा, तो मैं तो लक्ष्मा को ही मैंने अभी शेखर नायक लक्ष्मा करके ही मैंने तो नाम से ही फॉलो करके आ रहा हूँ सर। सर उस दिन मेरा डैडी ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जैसे आपने बताया वो एक ब्लाइंड से शादी करके कैसा जिंदगी गुजारेंगे वो कुछ भी नहीं सोचा मेरा डैडी ने, और आके तुरंत शादी करके वो लोग एक अच्छा जिंदगी चालू किया। उसके बाद उनका जो गुजरने के बाद मम्मी को तो भी बहुत नाराज हुआ होगा। बाद में मेरा मासी मासा लोग, मामी मामा लोग और नानी नाना लोग मेरा मम्मी को कभी कभी खाना देते थे, एक दिन में एक बार या दो बार, तो मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि मुझे भी देखना है, उनके पास कपड़ा नहीं है और तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल को जाना है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं एक्चुअली जब मैं संपूर्ण जो फुल टोटली ब्लाइंड था, तो तब मेरा मम्मी ने मुझे नॉर्मल स्कूल में लेके जाके बिठाती थी और शाम को वापस लेके आती, तो ऐसा करती थी मेरा मम्मी ने। तो तब मेरा डैडी का गुजरने के बाद और मेरे मम्मी ने स्कूल लेके गई ना, तो उधर एक गीता टीचर करके थी, गीता टीचर ने बताया कि अभी देखो तुम्हारा जिंदगी थोड़ा मुश्किल होगा, और क्योंकि आपको आप भी तो जाते जाके खेत में काम नहीं कर सकते और कमा नहीं सकते, तो इसलिए एक इसी गांव में एक जो विकलांग का ब्लाइंड स्कूल है अनाथ आश्रम जैसा है, तो वहां पे जाके इनको ज्वाइन कीजिए, तो तब वहां पे इनको सब सुविधाएं मिलेगी। तो तुरंत मेरा मम्मी ने, सर मैं बहुत प्राउड से बोलता हूँ, मेरा मम्मी ने तुरंत डिसाइड किया कि मैं शेखर को लेके जाके तो हॉस्टल में ज्वाइन करूंगी और उसका अच्छा देखभाल हो। सर मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा मम्मी ने मुझे हॉस्टल ज्वाइन करवाया क्योंकि मुझे पूरा IAS बनाने के लिए नहीं तो IPS बनाने के लिए नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए नहीं, मुझे मेरा मम्मी ने एक ही चीज के लिए हॉस्टल में डाला कि वहाँ पे फ्री खाना और रहने के लिए और कपड़ा मिलेगा। सो दिस वॉज द हर मेन इंटेंशन, सो दैट आई गेट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल। तो हॉस्टल ज्वाइन किया मैंने, वहाँ पे जाके देखा तो मेरे जैसे लोग 100 के ऊपर है, तो वो तो ब्लाइंड स्कूल था ना, मैंने सोचा था कि मुझे और मुझे मेरा मम्मी को और मेरा खानदान को नहीं दिखता। तो वहाँ पे जाने की जाके देखने के बाद वहाँ से तो 100 से भी ज्यादा ब्लाइंड लड़के लोग है और इंडिपेंडेंटली दे आर वॉकिंग, दे आर प्लेइंग और खाना खाते हैं, सबसे मिलते हैं, सब कुछ सब काम खुद कर लेते हैं, सो ऐसा सब चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मेरा तो बड़ा प्रॉब्लम करके मैं सोचा था, इधर देखा तो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले लोग हैं। मैंने वहां पे भी मेरा मैं हिम्मत नहीं हारा और बाद में मोटिवेटेड माई सेल्फ, तो मैंने उनके साथ रहना स्टार्ट किया। सर मैंने जब 9 साल का लड़का था तो मैंने तब फर्स्ट स्टैंडर्ड को ज्वाइन किया, क्योंकि 86 में मैंने पैदा हुआ, 95 में

स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल में ब्रेल वगैरह सब सीखना पड़ता है, आपको पता है शायद भाई। और जो हमारे यहाँ पे जो जो जो श्रोत्र लोग जो सुन रहे हैं उनको भी सबको पता है कि ब्रेल आजकल तो सभी जगह पे, ट्रेन में, लिफ्ट में, सभी जगह पे ब्रेल छाया हुआ है, और विजुअली इम्पेक्ट को एक हेल्प होना है करके। तो तब मैंने ब्रेल सीखना चालू किया, और 96-97 तक मैं ऐसे ही फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में आया। और 97 में जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में आया तब जो स्कूल में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने सोचा उनके साथ मैं भी थोड़ा खेल लूं, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, उसका नाम क्रिकेट है करके ही मुझे नहीं पता था। तो एक बार एक हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का मैच था, तो वहां पे मिडिल स्कूल का टीम ने मुझे वो लोग लीला की, क्योंकि वहां पे खाली 8-9 लोग थे, तो उनको 11 प्लेयर चाहिए था, तो प्लेयर नहीं था करके मुझे लिया। मैंने उसको लड़का को बताया कि अरे यार मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो उन्होंने ये उसने एक ही चीज बताया मुझे कि अरे यार वो बॉल फेंकेगा ना उसको मारना है और दौड़ना है बस, और कुछ नहीं। तो मैंने अच्छा बस मार के दौड़ना है क्या करके गया, तो बाद में वो लोग वो 10 ओवर का मैच था, तो वो लोग 2-3 ओवर खेलने का मैंने ऑब्जर्व किया, बाद में उधर देखा तो 4-5 विकेट गिर गए। तो लड़का वो कैप्टन बोला कि शेखर तू जाके मारना अभी, तो मैं गया। वो हाई स्कूल के साथ मैच था, वो लोग बहुत अच्छे खेल रहे थे, फील्डिंग वगैरह सब। हमने 10 ओवर में कम से कम 60-70 रन बना लिए, तो उसमें से मेरा कुछ 28-30 रन बना लिया मैं खुद ने, और आउट भी नहीं हुआ। और फाइनली मैंने अच्छा बॉलिंग भी देखा, वो लोग बॉलिंग देख रहे थे ना उसको भी देखा, और ऐसे ही बॉलिंग करके मैं भी 2-3 विकेट ले लिया, और हाई स्कूल को मिडिल स्कूल टीम ने हरा दिया। तो वही टर्निंग पॉइंट था सर मेरा। तो अगले दिन जो क्लास का प्रेयर होता है, क्लास प्रेयर होने के बाद हमारा पीटी टीचर को कोई लड़के लोग जाके सर शेखर कल बहुत मारा सर, हम लोग हाई स्कूल के साथ जीत गए करके बताया। तो सर ने तुरंत मेरा क्लास के भाग के आए, और कोई टीचर पढ़ा रहे थे उनको बोल के मैं 2 मिनट शेखर के साथ बाहर लेके जाके बात करता हूँ, कर सकता हूँ क्या करके पूछ के। तो लोग फिर हमारा पी सर उनका नाम है सुरेश, सुरेश सर ने मुझे बाहर लेके आके बोला मैं सुन रहा हूँ कि आप अच्छा खेला कल, आपको कौन सिखाया, कैसा दिखा, कैसा लगा सब कुछ। सर मुझे कोई नहीं सिखाया सर, मैं वो लोग खेल रहे थे ना उसको देख के खेला सर, मैं हम लोग जीत गए सर कल बोला। तो सर ने क्रिकेट खेलना पसंद है करके बोला, तो मुझे इतना पसंद नहीं है सर क्योंकि उसमें बहुत बॉडी पेन होता है, दौड़ना पड़ता है ना, मुझे पसंद नहीं है करके बोला मैं, तो इसलिए नहीं कोई बात नहीं आज शाम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे करके। उसी दिन शाम से सर मुझे अच्छा ट्रेनिंग देना चालू किए, प्रैक्टिस कर रहे थे। और 1997 में बैंगलोर में एक टूर्नामेंट है करके स्कूल को एक लेटर आया, तो लेटर वो लेटर आया कब, 10 दिन था, तो 10 दिन पहले लेटर आया। अब तो आजकल तो मेल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह मैसेज जल्दी मिल जाएगा, तो तब वो लोग बैंगलोर से शायद एक 3-4 दिन पहले वो लोग लेटर पोस्ट किए होगा, हमको पहुंचने में 10 दिन 2-3 दिन होगा, 10-12 दिन का टाइम था। और उसमें से हमारा कोच सर ने हमको सब रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब सिखाया, और मुझे कीपर होके आप अच्छा बॉल पकड़ता है कीपर बनो करके मुझे कीपर बनाया। तो हम लोग पहली बार बेंगलुरु में आए, बेंगलुरु में मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट था, तो शिमोगा टू बेंगलुरु हम लोग आए, और पहला मैच ही हम लोग हार गए, बेंगलुरु के साथ नहीं था, बेंगलुरु का टीम बहुत पावरफुल बहुत स्ट्रांग था, और हमको भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं पहला मैच में 12 रन बनाया, तो वो तो मुझे बहुत एक खुशी का बात है। तो वो टूर्नामेंट के बाद जो समर वेकेशन आया, मैंने गांव को गया, गांव जाने के बाद मम्मी को बोला, एक्चुअली मम्मी का तबियत बिगड़ना चालू हो गया था तब तक, ऑफ नो फूड शेल्टर, उसका हॉस्पिटलिटी कोई उसका टेक केयर करने वाले नहीं थे ना, तो उसका तबियत बिगड़ना चालू हुआ था, खाना ठीक से नहीं मिलता था। तो मैंने गांव गया, गांव जाने के बाद मेरा मम्मी को बताया कि मम्मी खेलना चालू किया है, और मेरा स्कूल टीम में मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। तो मम्मी ने एक ही चीज बताया सर मुझे कि आप इसी में कुछ बन के दिखाना है, आप क्रिकेट में ही कुछ बन के दिखाना है। जैसे मेरा मम्मी ने एक्चुअली मुझे जब मैं संपूर्ण अंध था, ब्लाइंड था, तब मुझे बताया था कि आप ये लोग आपको आके शेखर, आप शेखर ऐसा दिन क्रिएट करना है कि ये लोग आके आपको खेलने के लिए आप परमिशन लेना है, वहां तक आप पहुंचना करके मम्मी ने मुझे बचपन में मैं बोला, क्योंकि वो लोग मुझे खेलने के लिए नहीं लेते था ना, तो ऐसा मोटिवेट करती थी मुझे। तो उस दिन मुझे पता चला, मैं मम्मी ऐसा बोलने के बाद मेरा मन नहीं आ गया कि खाली मेरा गांव के लोग नहीं पूरा

0: वाले टाइम पे वही बच्चे आपके साथ खेलने के लिए तरसेंगे या वो सोचेंगे कि कैसे हम खेलें। इन शब्दों में ही आपकी माता जी ने, आपकी माँ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनी, मैं कहूंगा एक माध्यम बनी, कि परमात्मा ने आपकी माता जी को चुन करके उनके शब्दों से आपके भाग्य का निर्माण कर दिया। अगर आप सोचे कि कैसे खेलना है, क्योंकि जनरली खेल को तो लोग एसोसिएट ही नहीं कर पाते कि भाई कोई व्यक्ति जो देख ही नहीं सकता वो कैसे खेलेगा, लेकिन आज वही व्यक्ति पूरे देश भर में न केवल अपना लेकिन अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर रहा है। तो ये तो आपके माँ के आशीर्वाद का ही कमाल है, और आपकी माता जी का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, वो तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ आपके साये की तरह हो जाएगा।
1: सही बात बोला सर आपने, सही बात बोला सर। उनका जो एक एक बात बोला हुआ मैं अभी भी मेरा दिल में छुपा के रखा हूँ सर, उसको मैं हर रोज याद करता हूँ, और रोज मैं आगे बढ़ने का और दूसरों को इंस्पिरेशन करने का, उनका इंस्पिरेशन से मैं दूसरों को इंस्पिरेशन करने का मैं हर रोज एक एक स्टेप्स बनाता जब मनाते चढ़ते चढ़ते जा रहा हूँ सर। तो तब उनका गुजरने के बाद मैंने जो ब्लाइंड स्कूल में था वहाँ पे समर ओकेशन वगैरह सब नेक्स्ट आते थे, तो तब सभी लोग लड़की लड़का लोगों का डैडी मम्मी माँ बाप सब आते थे और उनको गांव लेके जाते थे, 2 महीने वो लोग खूब प्रोजेक्ट करके आते थे, और मुझे लेके जाने के लिए कभी भी नहीं आता था सर, भी नहीं आता था, मैं हॉस्टल पे ही रहता था। तो मुझे उधर भी एक माँ मिल गई, उधर एक टीचर थी अंबिका मिस करके, उन्होंने भी वो भी शादी नहीं किया सर, उन्होंने भी दीक्षा लिया था, तो उन्होंने मेरा मुझे माता का जगह दे दिया सर। जब मैं 2 महीने पूरा हमारा स्कूल में और एक आश्रम है सर, इट इज बिलोंग्स टू रामकृष्ण मठ, हाँ सर रामकृष्ण मठ। तो रामकृष्ण मठ में जैसे आपको सब पता है जैसे आश्रम में गाय वगैरह और जैसे छोटा मोटा खेत वगैरह, हमारा स्कूल को 15 एकड़ का था, वो स्कूल हम स्कूल के लिए बाहर से कुछ भी नहीं खरीदते थे, वहीं पे सब्जी वगैरह उगाते थे, गाय 60-70 गाय थे, वो गोबर गैस से हम लोग स्कूल में खाना बनाते थे, और जैसे फूल पौधे वो सब कुछ स्कूल पे ही था सर, कुछ बाहर से कुछ नहीं खरीदते थे, वो स्कूल पब्लिक डोनेशन से चलता था। जब 2 महीना में रोज
0: मैंने आपके बायोडाटा में यही पढ़ा कि अगर क्रिकेट में आप कुछ नहीं करते तो आप किसान बनते, और मुझे ये चीज का बड़ा रोचक लगता कि नेचर के साथ या किसानी के साथ आपने खुद को कैसे जोड़ लिया, तो अभी समझ में आता है कि क्यों आपको कृषि या किसान बनने का इतना मन था। सो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और मैं समझता हूँ वो लोग जो जानते हैं कि कैसे भोजन को उगाया जाता है वो कभी भूखे नहीं रह सकते, और आज के जमाने में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कैसे भोजन उगाया जाता है, ताकि वो अच्छा भोजन खाए, केमिकल और रसायनों से मुक्त भोजन कर सके, उनको पता हो कि मेरा भोजन कहाँ से आ रहा है। तो ये कृषि जो है एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही आवश्यक जीवन कला है, ये हर एक को सीखना चाहिए। और वाकई में आपका जो स्कूल था या जो आपका हॉस्टल था वो बहुत ही दूर का सोचता था, उसने हर एक को ये सिखाया है स्वावलंबी कैसे बने। मैं समझता हूँ आज के जमाने में अगर सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अगर इस परंपरा को शुरू किया जाए तो हर व्यक्ति समझ पाएगा एक कृषक के जीवन में कितना मुश्किल होता है, किसी चीज को उगाना, उगाने के बाद दूसरे तक पहुंचाना, लेकिन उसको उगाने में कितना श्रम, परिश्रम, कितना मेहनत होता है, ये जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक वो भोजन का कदर नहीं कर सकता। आपके हॉस्टल ने तो आपने वो चीज कूट कूट के भरा है।
1: आजकल के लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं, उनको ठीक से नहीं सोचते कि ये खाना जो हम लोग अभी खा रहे हैं इसके पीछे कितना लोगों का श्रम है, कितना लोगों का एक दान है। सब हमेशा सोच के हम लोग जिंदगी गुजारना है सर। तो मुझे बचपन से ही वही सिखाया गया, और वहाँ पे मैंने जो 2 महीना स्कूल में काम करता था, तो उसके बाद अंबिका मिस ने मुझे कोई कपड़ा कपड़ा वगैरह, मेरा शर्ट पैंट टॉवल पेस्ट सोप वगैरह कोई भी नहीं लेके देते थे ना, तो अंबिका मिस उनका सैलरी का पैसा में मुझे टॉवल सोप और कपड़े पैसे यानी कि हमको पैसा का जरूरत ही नहीं था, ऐसे मुझे कुछ कोई भी एक चीज का कमजोरी नहीं होना चाहिए ऐसे, और वहाँ पे सोने के लिए जैसे मस्किटो का नेट वगैरह सब मुझे दिलाया गया। बाद में मैं जब हमारा स्कूल का

0: और रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब बहुत कठिन था सर। हम लोग 5 बजे उठना है, 5 से 6 स्नान करना है, 6 से 7 योगा प्रेयर है, 7 से 7:30 योगा है, बाद में स्टडी टाइमिंग, ब्रेकफास्ट में क्लासेस, आफ्टरनून डांस क्लासेस, इवनिंग भरतनाट्यम क्लासेस, तो बाद में तबला, तो सब बाद में और प्रेयर, स्टडी, लंच और 9 बजे सो जाओ। तो पूरा दिन हमको इतना बिजी रखते थे कि हम लोगों को कोई दूसरा चीज सोचने का नहीं, खाली हम लोगों को आध्यात्मिक तरफ से हम लोगों को सोचना है और उस तरफ बढ़ना है। तो ऐसा हम लोगों को सिखाया जाता था। तो उसी एक स्टेप मेरा लाइफ में डिसिप्लिन, कोई अगर इंसान एक आगे बढ़ना है और उसको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट इन ईच एंड एवरी लाइफ। तो डिसिप्लिन नहीं, आप पहले से ही आपके साथ नहीं लेके आएंगे तो जिंदगी बिगड़ जाएगा। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जो सब चीजें है आपको बहुत बड़ा एक आदमी बनाएगा। तो मैंने पहले से ही बहुत डिसिप्लिन से आया और मेरा जिंदगी मैंने बांध ली। तो जैसे स्कूल में मुझे सिखाया गया, जो कोई एक अकाउंटेंट का, यानी कि अकाउंटेंट का काम हो, खेत का काम हो, पढ़ने का, मुझे एक्चुअली सर पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे वो एक क्रिकेट खेलना, हमने कभी कभी क्लास में नहीं रहता तो और टीचर थोड़ा 10 मिनट लेट आएगी तो मैं बाकी जाके क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में चला जाता, और क्लास में वो लोग अटेंडेंस डालते समय शेकर करके बुलाएगा तो मैं यस मैम करके नहीं बोलता था ना, तो तुरंत वो समझते थे कि शेकर ग्राउंड पर भाग गया। तो वो लोग मुझे आके कान पकड़ के खींच के लेके आके पढ़ना इम्पोर्टेंट है, खेलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है करके बताते थे। तो ऐसे भी मुझे अम्मी सर ने बताया, तब मैं 6th स्टैंडर्ड था लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि शेखर अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप एक अच्छा आदमी बनोगे। तो यही एक जिंदगी का सीक्रेट है, वट एवर द नॉलेज यू विल गेट इन योर लाइफ, दैट काइंड ऑफ प्रोग्रेस यू विल हैव, करके मुझे बताते थे। तो क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट, म्यूजिक, वो ये तो जो सही एक्टिविटीज है, जैसे सब्जी जैसे है, अगर आप जिंदगी में बन के दिखाना है तो, और चावल सब्जी रोटी खाना है तो यही आपको, ये है एजुकेशन है, चावल रोटी सब्जी, इसको खाएगा तो आपका पेट भरेगा। थोड़ी वो साइड डिशेस लाइक सब्जी, खाली सब्जी नहीं तो अचार, ये सब अचार से आप पेट भर सकते हैं क्या? क्रिकेट अचार जैसा है, क्रिकेट में लक नहीं है, क्रिकेट में ग्रोथ नहीं है, आपको सब्जी चावल खाएंगे तो आप अच्छा आदमी बनोगे, तंदुरुस्त रहोगे। तो सर उसी दिन मैं डिसाइड कर लिया कि इसने साइड डिश को जैसे अचार वगैरह और दूसरे चीजें रहते हैं ना, पापड़ की पेड़ वगैरह, तो क्यों ना मैं वो अचार या पापड़ को मैं मेन कोर्स में लेके आके मेरा जिंदगी उसमें नहीं लेके जाऊं। तो मैंने वो साइड डिशेस को मेन कोर्स में लेके आके, जैसे क्रिकेट को मेरा लाइफ का मेन कोर्स में लेके आके, मैंने एक अच्छा क्रिकेट खेलना चालू किया और क्रिकेट मुझे बहुत प्रेरित किया और मैंने भी क्रिकेट को बहुत प्यार किया और क्रिकेट मुझे यहाँ तक हाथ पकड़ के लेके आया। तो
1: और यहाँ तक आपको हाथ पकड़ के लेकर के आया, आगे भी लेकर के जाएगा और आपके द्वारा कितनों का कल्याण कराने वाला है ये तो हम जानते ही हैं। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान अपने आप में ये बता देता है कि आपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा पूरे देश को एक ऐसा रुतबा दिया है जो कि अतुलनीय है। इसलिए आपका तो जीवन अपने आप में बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगा, फिल्म की तरह है जिसको जितना देखे उतना देखने का मन करता है। लेकिन आप शुरू करते कुछ सवालों से, जैसे आपके अंबिका मैम ने कहा कि जो क्रिकेट है या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या खेल कूद है, ये साइड डिश है और जो पढ़ाई लिखाई है वो मेन है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि विद्या जो है वो बहुत आवश्यक होता है। किसी भी फील्ड में अगर व्यक्ति थोड़ा पढ़ लिख ले तो वो आगे बढ़ने में उसको मदद जरूर करता है। लेकिन आज आप इस चीज को कितना मानते हैं, क्योंकि आज तो साइड डिश ने ही आपको मेन कोर्स बना दिया है।
0: सर आजकल के लड़का लोगों का मैं थोड़ा माइंड सेट बताता हूँ। आजकल कैसा हो गया कि मोबाइल, जैसे इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब आके सुबह उठेंगे, माँ मम्मी डैडी ने उनको डांट डांट के उठाएंगी और मार के बाथरूम में भेजेंगी, पेशअप आएंगे और

0: जबरदस्ती से खाना खिलाएंगे और जबरदस्ती से उनको धकेल के स्कूल का बस में चढ़ाएंगे, वो लोग उधर जाके थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, दोपहर को खाना खाएंगे और थोड़ा दोपहर मस्ती करके, और वैन उतरते ही मैं थक गया करके घर आएंगे और मोबाइल टीवी लैपटॉप भी किया तो थोड़ा बहुत इंटरनेट वेस्ट करेंगे। तो सभी लोग वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, इसे सीखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 70% लोग जैसे दूसरे दूसरे वीडियोस, कॉमेडीज, रील्स वगैरह सब देख के उसको मजे करके बाद में कुछ खा के थोड़ा देर पढ़ेंगे, पढ़ने के टाइम पे भी वो ये मोबाइल चेक करेंगे, वो ये करेंगे, अपने खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो आजकल का जिंदगी ऐसा हो गया सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। एक्चुअली सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब हम लोग मेहनत करके पहाड़ चढ़ेंगे तो 40 साल तक हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे तो चढ़ने के बाद क्या मिलता है सर? टॉप ऑफ द हिल यू विल गो, आफ्टर द रॉड यू विल फाइंड, वहां पे बस आपको बैठना है। आप खाली खुद बैठेंगे तो आप जर करके नीचे आप चुपचाप आते रहेंगे
1: जी।
0: यहाँ पे लोग कैसा उन लोग का लाइफ को फंसा लिया है पता ना, पहले ही वो लोग जर करके नीचे चले जाएंगे 40 साल के पहले और ऊपर चढ़ने के लिए, तब तक एज हो जाएगा, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं होगा।
2: मतलब जो जीवन का जो ऐसा समय है जब पुरुषार्थ किया जा सकता है, मेहनत किया जा सकता है और एक मुकाम को हासिल किया जा सकता है, उस समय अगर हमने खुद को वो राह नहीं दिया तो फिर ऑलरेडी हमारा जीवन का जो राह है वो नीचे की ओर जा रहा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया।
0: नीचे चले जाएगा बाद में, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं होगा। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज का जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, जो लोग अचीव किया है या नहीं अचीव किया है, जिंदगी तो आज आया है, ये तो नश्वर है, पता नहीं कल क्या होगा। तो हमेशा हम लोग ये सोचना है पॉजिटिवली कि हम लोग आज जितना मेहनत करेंगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और अपना फैमिली चलाने के लिए, पैसा बचाने के लिए और ऑफिस में काम करने के लिए, हम लोग कितना डेडिकेशन, कितना हार्ड वर्क से हम लोग एक यूनिटी से काम करते जाएंगे, उतना हम लोग पहाड़ चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना है। आपका रिटायरमेंट 50 साल के बाद आप ऊपर पहुंचोगे, तब आपका जिंदगी धीरे से आराम से आप नीचे आते रहेंगे, झूला खेलते रहेंगे। तो पहले ही आप लोग मजे करने लग गए तो पहले ही जो टाइम पे जो चीजें करना है वही चीज करना है
2: जी। जो समय अनुरूप जो कर्म है, जो समय अनुरूप जो कर्म है, वो समय के अनुसार किया जाए तो समय का बहुत मदद मिलेगा।
0: या वो आने से पहले, वो हमको सुख संतोष आने से पहले हम उसका एंजॉयमेंट कर लिया तो वो आने का समय पे वो दुख लेके आएगा। तो हमको
2: ये जो आपने बात कही कि समय की अनुकूलता के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य को बांधा जाए तो जीवन न केवल सरल हो जाता है लेकिन बहुत स्वादिष्ट भी हो जाता है, सुख मिलता है उसमें। दोस्तों, शेखर जी से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इनकी कहानी में वो जज्बात है जो कि हमें हमारे जीवन पे गौर करने पे मजबूर कर देता है। कैसे एक ऐसा जीवन जिसकी शुरुआत ही थोड़े अंधकार में हुई हो, जहाँ थोड़ी सी रोशनी जब आ जाती है तो क्या कुछ नहीं करने का मन करता है, लेकिन जब एकाग्रचित होकर के व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो वो अपने निश्चित किए हुए ध्येय पर खरा उतरता है। शेखर नायक जी की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन और यशस्वी भारत को। जय हिंद, जय भारत।
3: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
4: तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा यार आला।
3: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
5: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा।
3: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अबोप फिरकतं। त्याचसोबत
6: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
3: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
4: पहला नशा, पहला खुमार।
3: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: दादी भोळी माझी आई.
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार प्रिय श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन. मित्रों, हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज का विषय है भय, चिंता और शांति गीता के दृष्टिकोण से. हम सब कभी न कभी डरते हैं. भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, रिश्तों के टूटने का डर. चिंता तो मानो हमारे मन की स्थायी मेहमान बन गई है. ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में शांति संभव है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़ा अर्जुन भी भय और चिंता से घिरा था. अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर उसका मन कांप रहा था. धनुष हाथ से गिर पड़ा. वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो.

रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, यानी अर्जुन की स्थिति भी आज के आधुनिक मनुष्य जैसी ही थी। भगवद गीता हमें सबसे पहले यह समझाती है कि भय का मूल कारण है आसक्ति और अज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है, अर्थात परिवर्तन जीवन का नियम है। लेकिन हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए डरते हैं। गीता का पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है परिणाम। मैं सफल होऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यह बात सुनने में आसान लगती है, पर जीवन में उतारना कठिन है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक किसान ने बीज बोए, रोज खेत जाकर देखता अंकुर निकला या नहीं, कभी बारिश की चिंता, कभी धूप की चिंता। एक दिन उसने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, भाई मैं इतना परेशान रहता हूं फिर भी फसल की कोई गारंटी नहीं है। बुजुर्ग किसान बोला, बेटे तू बीज बो, पानी दे, मेहनत कर, फसल भगवान की जिम्मेदारी है। यही गीता का संदेश है, मेहनत तुम्हारी, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अब प्रश्न आता है, शांति कैसे मिले। गीता कहती है, शांति बाहर नहीं भीतर है। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तब चिंता जन्म लेती है। श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग कर अहंकार और ममता से मुक्त होकर जीवन जीता है वही शांति पाता है। आज हम कहते हैं बस यह मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन मिलता कुछ और है। फिर एक नई चिंता, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। गीता हमें सिखाती है, कम इच्छाएं अधिक संतोष। श्री कृष्ण अर्जुन से रणभूमि में कहते हैं, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है वैसे ही मन के लिए ध्यान, जप, प्रार्थना और सकारात्मक सोच जरूरी है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति नौकरी खो बैठा, पहले दिन घबराया, दूसरे दिन उदास रहा, तीसरे दिन उसने खुद से कहा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ूंगा। उसने रोज नियमित समय पर प्रार्थना शुरू की और साथ ही साथ अपने कौशल पर भी काम किया। कुछ महीनों में उसे नई नौकरी मिली जो कि पहले से भी बेहतर थी। वह कहता है, नौकरी नहीं, गीता ने मुझे शांति दी। तो फिर गीता का दृष्टिकोण क्या है? गीता का दृष्टिकोण है, भय का कारण आसक्ति और अनिश्चितता है। समाधान कैसे मिले? कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो। शांति का मार्ग क्या है? शांति का मार्ग है संयम, संतोष और अभ्यास। मित्रों, चिंता भविष्य की कल्पना है और भय अतीत की परछाई, लेकिन जीवन तो वर्तमान में जिया जाता है। गीता हमें वर्तमान में टिकना सिखाती है। अंत में मैं एक पंक्ति के साथ विदा लेना चाहूंगा, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को भी जीत लिया। मित्रों, इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं। आप सुन रहे थे ज्ञान चिंतन। आज का विषय था भय, चिंता, शांति, गीता के दृष्टिकोण से। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। बने रहिए हमारे साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। नमस्कार, खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: एक लाइन पढ़ रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही है. विद इन योर सेल्फ इज अ स्टिलनेस, अ सैंक्चुरी टू विच यू कैन रिट्रीट एट एनी टाइम एंड बी योर सेल्फ. क्या ये योर सेल्फ आत्मा है? हाँ, तो उसके अंदर सैंक्चुरी अगर होती, रिट्रीट में कर सकता हूँ तो कभी का कर लिया होता.
2: हम बाहर रिट्रीट्स पे जाते हैं. आप देखो, पूरे साल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस फेस करते करते उतार चढ़ाव बाहर, उतार चढ़ाव अंदर, और सब कुछ होते हुए फिर हम कुछ महीनों के बाद कहते हैं आई जस्ट नीड टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस फॉर 5 days. मुझे इन सब चीजों से अपने आप को थोड़ा सा किनारा करके, अपने आप को रिचार्ज करके, मुझे सब चीजों से थोड़ा दूर एक रिट्रीट के लिए जाना है 4-5 दिनों के लिए. ऐसा करते हैं हम, और हर एक अलग अलग जगह पे जाता है उसके लिए. लेकिन हम जाते हैं एंड वो 5 दिन में हम क्या करते हैं? हम बाह्य सब चीजों से विड्रॉ करके, अपनी जिम्मेवारियों से, अपने जीवन के चैलेंजेस से विड्रॉ करके, हम अपने आप के साथ 5 दिन स्पेंड करते हैं. राइट? हम 5 दिन 10 दिन की मेडिटेशन रिट्रीट पे जाते हैं. उसमें हम अपने थॉट्स को देखते, फीलिंग्स को देखते, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिएट किया उसको चेक करते, किस चीज को चेंज करना, किस चीज को क्लीन करना है वो देखते हैं, हायर सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं. वो सब हम करते हैं उस 5-10 दिन की रिट्रीट के अंदर. वो सब करके हम बहुत एनर्जाइज्ड, रिचार्ज्ड फील करते हैं, और ये सब करके हम फिर वापस आते हैं दुनिया के अंदर, जो आपने कहा, उस जिम्मेवारियों की दुनिया के अंदर, उस चैलेंजेस की दुनिया के अंदर. राइट?
1: वर्ल्ड में
2: कुछ दिनों तक उस रिट्रीट का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है. है ना, कि हम थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, रिएक्ट ज्यादा नहीं करते, जिसको हम कहेंगे हम थोड़ा सा शांत वाली स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम अभी अभी वो चीज का अनुभव करके, वो स्थिति क्रिएट करके अब परिस्थिति में आए हैं. ठीक? तो कुछ दिनों के लिए हमारा व्यवहार थोड़ा सा बदला हुआ रहता है.

0: होती है, अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। अब यही सीन को जागृत अवस्था में देखते हैं, व्हेन वी आर अवेक। राइट नाउ बट व्हेन वी आर डूइंग, सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, चैलेंज नहीं है, हम सिर्फ सुबह उठे हैं ये करने के लिए, ठीक है। नॉट इन द मिडल ऑफ ए सिचुएशन, हम सुबह उठकर हम अगर अपने लिए एक टाइम फिक्स करें कि रोज 15 मिनट सुबह मुझे अपने लिए वो रिट्रीट का टाइम निकालना है, ठीक है। अब हम बैठे, साइलेंट हो गए, मतलब सारी बाकी टेक्नोलॉजी और चीजों से तो पहले अपने आप को दूर कर लिया, लोगों से भी अपने आप को दूर कर लिया। अब साक्षी होकर अपने इमोशंस को देखते हैं, जो हम सारा दिन में भी देखते हैं, ये जो मुझे फील हो रहा है इसके पीछे की क्या डिजायर है, इसके पीछे का क्या बिलीव सिस्टम है, इसके पीछे की कौन सी अटैचमेंट है, इससे इसके पीछे की मेरी कौन सी रॉन्ग थिंकिंग है जो मुझे मेरे अंदर ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है। यही तो रिट्रीट है, ये रिट्रीट है। और ये सब चीज से धीरे धीरे जब हम साइलेंट हो रहे होंगे तो फिर हम वो प्योर पावरफुल थॉट जो मेडिटेशन में क्रिएट करते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, माई ओरिजिनलिटी इज आई एम अ प्योर पावरफुल पीसफुल सोल। तो हमने अपने आप को अपने ही इमोशन से भी, अपने ही अंदर के टर्मोइल से भी थोड़ा सा अपने आप को डिटैच किया। ये डिटैच करके हम अपनी सिचुएशन को और अपने ही इमोशन को एक बेटर पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। जब हम डिटैच करे बिना देखते हैं तो हम अपने ईगो के थ्रू ही सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये एंड सीइंग एवरीथिंग थ्रू माय ईगो, सब कुछ। जब हम 5 मिनट भी ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं, तो हम ईगो से नहीं, इन सारी चीजों से भी डिटैच होकर अपने ही इमोशंस को भी देखते हैं। जब हम उसको देखते हैं तो धीरे धीरे फिर हम अपने आप से पूछते हैं, बट फाइनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मुझे इनेटली क्या चाहिए जीवन में, यहाँ व्हाट इज माय प्रायोरिटी,
1: क्या चाहिए प्रायोरिटी लाइफ में,
0: वो हमें पूछना होगा ना उस टाइम अपने आप को, उस साइलेंस
1: चाहिए ना, सुख शांति हैप्पीनेस,
0: ये सबको भी छोड़ो, मुझे क्या चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए। अगर मैं डिटैच नहीं होती और उस समय मैं अपने आप से पूछूं मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ मुझे चाहिए कि ये मुझे समझे, मुझे चाहिए कि ये मेरा कहना माने, मुझे चाहिए कि जो मैंने इतनी मेहनत की है उसकी अप्रिसिएशन मुझे मिले, मुझे चाहिए कि अप्रिसिएशन नहीं मिले कम से कम क्रिटिसिज्म तो नहीं मिले, ये मेरी चाहिए की लिस्ट थी। लेकिन जब ये इमोशन से भी 2 मिनट के लिए पीछे हटते हैं एंड फिर अपने आप से पूछते हैं, लेकिन फाइनली मुझे क्या चाहिए, वो डू आई वॉन्ट,
1: कई बार मन कहता है गुस्से में आके मुझे कुछ नहीं चाहिए, लीव मी अलोन,
0: विच मीन्स दैट टाइम आई एम डिस्टर्ब्ड बाय माय ओन थॉट्स, मुझे मेरा मन ही सबसे ज्यादा तंग कर रहा है,
1: लीव मी अलोन, आई वॉन्ट टू बी क्वाइट, आई वॉन्ट टू लॉक द रूम, ऑल ऑफ यू गेट आउट,
0: ऑल ऑफ यू, लेकिन
1: माई सेल्फ ऑल्सो, भाई बहन भी, रिश्तेदार भी, सब,
0: यस, तो उनसे तो हो सकते हैं ना, लेकिन इससे करना पड़ता है प्यार से, ये इसको डांट के तो ये छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरों को डांटेंगे अगर, सपोज हम किसी में गुस्सा आके कहें रूम से बाहर जाओ, वो चला जाएगा फटाफट रूम से बाहर, कहेंगे मुझे छोड़ दो आधा घंटा, कोई मेरे से बात मत करना, सब लोग चले जाएंगे बाहर, आधा घंटा कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मन के साथ ये वाला तरीका काम नहीं करता ना, अपने मन को हम इस तरह से नहीं कह सकते कीप क्वाइट फॉर हाफ एन आवर, मुझे बात नहीं करनी, वो नहीं मानने वाला है, वो और जोर से बात करेगा,
1: मैं उसी डिस्टर्ब सिचुएशन में गुस्से में और रोना चाहता हूँ।
0: तो अगर हम अभी और डिस्टर्ब्ड और उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं तो हमारी ताकत कम हो रही है ना अभी, और विच मीन्स आई वॉन्ट टू लिव इन दैट पेन मोर,
1: यस,
0: राइट,
1: ओके, सो देन मेरे को होने दो, दर्द होने दो, शक्ति कम होने दो,
0: लेकिन फाइनली कभी तो ठीक करना ही पड़ेगा उसको,
1: अपने आप होगा,
0: अपने आप नहीं होगा, एक दो दिन क्यों चाहिए, और एक दो दिन बाद भी वो अपने आप ठीक नहीं होता है, ठीक करने के लिए उस थिंकिंग के ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा। अपने आप जो एक दो दिन में होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो बोलना रोना थोड़ा सा बंद कर देगा।
1: क्या वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर रहा है आपसे, आपके लेक्चर से?
0: कौन विड्रॉ नहीं कर रहा?
1: मन मेरा,
0: मन मेरा विड्रॉ

0: रहा है ना, वो अपने ऊपर इस टाइम वर्क नहीं करना चाहता, ये कर रहा है, वो कहना मैं मेहनत करने का मन नहीं है. इट्स लाइक आई एम वीक फिजिकली, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलना चाहिए. कोई मुझे आके कहता है प्यार से वॉक करो, बोलो मुझे मन नहीं है वॉक करने का, बीमार तो बीमार, कोई बात नहीं. हम ऐसा करते हैं ना कई बार, दुखता है तो दुखता है, जाने दो, मेरा मन नहीं है करने का. अभी सामने वाला बहुत समझाएगा, बहुत कुछ कहेगा, मतलब मेरे को छोड़ दो, कमजोर तो कमजोर, देखा जाएगा बाद में क्या होता है. मैंने नहीं अभी वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी, लेकिन वो करने से हम भले कर सकते हैं, वो कुछ साल भी कर सकते हैं, कुछ दिन, कुछ घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली तो हमें अगर उस वीकनेस से निकल के आना है तो हमें वॉक तो करनी ही पड़ेगी. नहीं तो वीक एंड वीक एंड वीक, जो आपने कहा छोड़ दो अपने आप हो जाएगा, ये छोड़ दो अपने आप तो होगा नहीं.
1: एक ना एक दिन समझ जाता है ना,
0: एक ना एक दिन क्या समझ जाता है, एक दिन एक दिन समझ नहीं जाता, एक ना एक दिन उसको मेमोरी में चुप करा के रख देता है और उस हर्ट को वहां रजिस्टर करके रोक देता है. समझ नहीं जाता, समझने के लिए तो उसको समझाना पड़ेगा,
1: तो उसके ऊपर दूसरे थॉट, नई नई चीजें आती
0: जाती, नई चीजें आती जाती, और लेकिन फाइनली वो फिर उठेगा. और अंदर तो चोट है ही, उसके ऊपर और कोई बात, और कोई बात, फिर जितनी बातें और आएंगी, क्योंकि चोट के ऊपर आई हुई बात है, दर्द ज्यादा होगा ना. इट्स लाइक एक्सरसाइज नहीं की, फिर कुछ गिरे, फिर कुछ हुए, फिर कुछ बीमारी हुई, तो इफेक्ट तो ज्यादा होता जाएगा ना. एंड फिर कुछ भी बात आई तो वो वाली चोट फिर उठ जाएगी,
1: इम्यूनिटी की जैसी कमी हो जाती है, लो हो जाती है.
0: तो टालने से हीलिंग नहीं होगी. बहुत बार दुनिया में कहते हैं टाइम विल हील, टाइम विल नॉट
1: हील. टालने से हीलिंग नहीं होगी, ये भी उस वक्त मन को कौन समझाए जब इतना डिस्टर्ब है मन. तो
0: टालने से हीलिंग नहीं होगी, उसको बोलना पड़ेगा. फाइनली जब वो रो ले जितना उसने रोना था, सपोज उस टाइम नहीं भी मन कर रहा, वो रो रो के जब थक जाए, अब मतलब अब तो बैठो, अब तो कर ले, हो गया तुम्हारा रोना जितना रोना था, तुमने बोल लिया अपने आप को जितना बोलना था, जितना गलत
1: सोचा टाइम लगता है,
0: लेकिन फिर भी बैठना तो पड़ेगा ही, अपने आप नहीं हो जाएगा. दिस इज द थिंग, फिर भी उसको रिजोल्व करने के लिए उसके साथ बैठना तो पड़ेगा ही. एक दो दिन, तीन दिन में वो अपने आप जाएगा नहीं. इट्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड इनसाइड. अगर हम उसकी हीलिंग को पोस्टपोन करते हैं, या हम पोस्टपोन भी नहीं करते, हम कहते हैं अपने आप हील हो जाएगा, पेन द वाउंड इज ओनली गेटिंग अक्यूमुलेटेड. अगर उस तरह से उसको सिर्फ दबा देंगे, और फिर ऐसी एक बात नहीं ना, कई बातें आती हैं, तो बहुत सारी बातें अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, और वो घाव कई बार क्रॉनिक बन जाएगा. इसलिए अगर हम ये रोज करें, मेडिटेशन में बैठे, रोज बैठे, मन परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, उदास है, रो रहा है, नेवर माइंड, फिर भी बैठे. जैसे कभी मन नहीं है, थकावट है, फिर भी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका उनको बेनिफिट होता है.
1: कई बार मुझे बुखार बुखार जैसा लगता है बॉडी, एक बार मन नहीं कर रहा है तो मैं धूप में जाके गोल्फ खेलता हूँ, दबा के खूब पसीना आता है, खूब बॉडी हिलती है, एकदम फ्रेश होके वापस आ जाता है.
0: राइट. अब कोई कहेगा, नहीं नहीं, कोई कहेगा बुखार है, थकावट है तो खेलना नहीं चाहिए, और आपने कहा थकावट लग रही है, एक ऑप्शन है
1: उसका, फीवरिश लग रहा है.
0: हाँ, लेकिन उसी में जाके खेल लिए तो वो सारे टॉक्सिन्स निकल गए ना, मीन्स अंदर का कचरा सारा निकल गया, वो खेलने से निकला, क्लेंजिंग ना, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग. अब यही अगर हम कहें मेरा मन उदास है, मेरे से होती भी नहीं मेडिटेशन, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कोई चीज को रिजोल्व नहीं करना है, जो है रहने दो अभी यहाँ पर, इट्स एनी वे इट्स नॉट गेटिंग सॉल्व्ड, ये दर्द तो जस्टिफाइड है मेरा, तो वो टॉक्सिन फिर अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ टॉक्सिन्स देन इनसाइड. और यही अगर हमने कहा नहीं मुझे फिर भी बैठना है, मुझे फिर भी अपने ये 15 मिनट निकाल के बैठना है, धीरे धीरे धीरे वो मन करने लगेगा जो हम उसको करने के लिए कह रहे हैं. पहले दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा, लेकिन फाइनली करेगा.
1: छोटे से बच्चे से 2 साल के बेटे को मैंने उसको बोला, बच्चे को, कि भाई अभी रो के मांगना छोड़ दो, अब हंस के मांगो, प्यार से मांगो, रोते क्यों ये चीज. मैंने बोला अच्छा थोड़ी लगता है, फिर उसको एक्टिंग करके दिखाई तुम ऐसे लगते हो. तो मैंने अब आपका रोना हो गया, वो बोलता है मुझे अभी और रोना है, मुझे रोने दो.
0: भाई हमारा मन जैसा है ना, मुझे और रोना है.
1: मैं ग्रैंड चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, 3 महीने पुरानी बात.

0: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
1: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा
1: बाप।

0: बापू ए बापू,
1: अरे की है बरखुरदार।
2: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
0: की है बोल भी।

0: प्यार।
1: हाय
0: की कहे की कहे, प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
2: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।
2: बा

0: आता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुने।
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ,

0: लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लाऊंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ये कल मुही को छोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात।
0: ले ले,
1: बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ो।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारे सारी उम्र के कमाए गए डॉलर है। हाय भैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडिओ पुणेरी आवाज.
2: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
4: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे. तो आज हम चर्चा करते हैं दान की ईश्वरीय विधि. दान का अर्थ क्या होता है इस पर आज हम चर्चा करते हैं. दान अर्थात क्या होता है? देना. इससे सारी सृष्टि चल रही है. अगर सृष्टि का नियम देने की जगह लेना अगर कर दिया जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए. परमात्मा पिता ज्ञान गुण और शक्तियों के सागर हैं, परंतु जब वे इनका दान विश्व को देते हैं तभी वे रघुपाल पालनहार और भगवान कहलाते हैं. उन्हें ही क्या कहते हैं? भगवान नाम से हम गाए जाते हैं. वो देने का अर्थ है सफल करना. देने का अर्थ क्या होता है? सफल करना. कोई भी वस्तु शक्ति सफल करने पर ही प्रतिफल देती है. हाँ, किसान एक दाना बीज बोकर सफल करता है तो बदले में कई दाने पाता है. जो भी सफल न की जाए वह विफल ही सड़ जाती है. यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति सोचकर काम न करे कि इससे उसके पास ताकत जमा होकर हाँ वह हाथी जैसा बलशाली हो जाएगा तो यह भ्रम है. वास्तविकता यह है कि उसका शरीर और ही निष्क्रिय एवं आलसी हो जाएगा. यदि कोई बुद्धि को चिंतन और सीखने में प्रयोग न करे तो यह कुंद हो जाएगी. संबंधों को परस्पर प्रेम व्यवहार से सफल न किया जाए तो उनमें मनमुटाव और निरस्ता पैदा हो जाएगी. धन को भी उपयोग प्रयोग और सहयोग करके सफल न किया जाए तो वह भी क्या होता है? अभिशप्त हो जाता है. वह संपन्नता की अनुभूति की जगह लोभ और तृष्णा का बोझ बन जाता है. उपयोग में निज काम में आता है, प्रयोग में कार्यों को सिद्ध करता है और सहयोग में क्या होता है? जगहित द्वारा पुण्य जमा करने का साधन बन जाता है. नहीं तो लोभी के प्राण उसके धन में बस जाते हैं. वही लोभ उससे अन्याय और शोषण कराता है. हाँ, किसी जमाने में लोभ के कारण लोग क्या करते थे? ना धन कहीं काट कर छुपा देते थे. पुराने लोगों की ऐसी क्या होती थी? मान्यताएं रहती थी कि ऐसे गाड़े हुए धन पर नाग बैठे रहते हैं तो उस धन को पाने वाले व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देते. अब समझा जा सकता है कि गड़े हुए धन के ऊपर जमीन के अंदर, अगर जमीन के अंदर तो कोई नाग नहीं रह सकते. उसे लोभी की लोभ वृत्ति ही नकारात्मक ऊर्जा के रूप में नाग की तरह धन में बसी रहती थी. तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ. तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को.

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। तो बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार बुराई के खाते में आ जाता है। विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं अपना समय, संपत्ति और शक्ति सूझबूझ से शुभ कार्यों में सफल करता है। सरकार भी आज क्या जोर देती है कि अनावश्यक इच्छावृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। अपराधी तत्व द्वारा बलपूर्वक बच्चों या कमजोर लोगों द्वारा इच्छावृत्ति कराना, सक्षम होते हुए भी कुछ न करने की प्रवृत्ति के कारण निम्न बुद्धि वाले लोगों द्वारा अपने ही बच्चों को इच्छावृत्ति में लगा देने की प्रवृत्तियां आज क्या हो रही है समाज में बहुत बढ़ चुकी है। अच्छी भावना रखने के बाद भी बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार होने की जगह बुराई के खाते में ही चला जाता है। हालांकि कई बार समाज सेवी संगठन ऐसे पिछड़े और बेसहारा लोगों को शिक्षित करने, उन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं भी कर रही है, जिससे स्थितियों में काफी सुधार भी हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे प्रयास क्या करते हैं, उनके जो ऐसे प्रयास होते हैं बुद्धिजीवी लोगों के, ये सराहनीय भी है। लेकिन ऐसा तब संभव है जब सभी अपनी इच्छा से और सोच समझकर कार्य करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। एक सफल करने की भी विधि होती है। हाँ, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि है। समय की मांग देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा पिता हमें क्या करते हैं, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि सिखाते हैं, जिससे परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आते हैं। और जीवन ही क्या होता है, जीवन ही पुण्यशील बन जाता है, आत्मा महान सौभाग्यशाली बन जाती है। हाँ, आत्मा क्या होते है, सौभाग्यशाली बन जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 10,000 लोगों को भोजन कराता है। इसके लिए उसने काफी परिश्रम किया और लोगों की दुआएं भी ली। कोई भी व्यक्ति खुशी से भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाता। दुर्भाग्यवश उसे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। आत्मा अपने बुरे संस्कार और कर्मों के कारण अपनी पुण्य और शक्तियों की पूंजी गवाकर भाग्यहीन और लाचार होकर दूसरों पर निर्भर हो जाती है। परमात्मा हमें ऐसी सेवा करना सिखाते हैं जिससे मनुष्य का दुर्भाग्य, पूरे संस्कार व बुरे कर्म समाप्त हो जाए। वे गुणों की धारणा कराकर जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। व्यसन, जुए, दुष्चरित्र आदि बुराइयों से में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, परमात्मा का सत्य परिचय पाकर परमात्मा से संबंध जोड़कर अपनी सारी बुराइयों को त्यागने में सक्षम हो जाता है, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर लेता है। उसके साथ उसका परिवार भी है। जीवन बदलने के बाद अब वो क्या होता है, मोहताज होकर उसे दो रोटियां नहीं जुटानी, बल्कि वह मेहनत से अपना और सारे परिवार का पेट भरता है। ऐसा जो होता है, ऐसी सेवा का पुण्य कितने भूखे लोगों को भोजन कराने के बराबर हो गया। पूरे परिवार को ही भूखे रहने और मांगने की दुर्गति से बचा लिया। साथ ही उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से, और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए आज का हमारा विषय है दान की ईश्वरीय विधि। कम समय में बिना स्थूल धन खर्च किए भी ज्ञान धन का दान देकर सहज ही कितना पुण्य अर्जित किया जा सकता है, इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। हाँ, जो

जो भी पुण्य कर्म और सामाजिक सेवाएं आप कर रहे हैं उनके साथ साथ परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमद् प्रमाण आध्यात्मिक सेवा से भी अपना जीवन सफल करें। बस याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम योग की अनमोल जो ये घड़ियां हैं अब अपनी पूर्णता के चरण तक आ पहुंची है और समय बहुत थोड़ा है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, डेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0204 की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार विभा जी हमारे साथ हैं। आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सनी, आपको और हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कलेक्शंस लेके आते हैं 50s एंड 60s के, तो हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि पुराने इतने प्यारे गाने कितने सुंदर है। तो आइए कहते हैं, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है।
2: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: जी जी,
2: और ये दोस्ती के ऊपर ही मैं ये पहला गाना लेके आई हूँ। ये इसमें है लव स्टोरी है, ट्रायंगल है, और बहुत ही प्यारा गाना है। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, जो प्यार करने वालों के बीच में एक दोस्त आ जाता है और कैसे वो कुर्बानी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं इसके और फिल्माया गया, बड़ा सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। इसमें वहीदा रहमान जी की एक्टिंग बड़ी सुंदर है और दिलीप कुमार की एक्टिंग तो चार चांद लगा रही है। बहुत ही प्यारा गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया। ये आदमी इस एल्बम से है जो 1968 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, प्राण ने काम किया था। और मनोज कुमार, दिलीप कुमार की जो है एक दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी बताई है इसमें। और यहाँ पर एक जुनूनी युवक की कहानी इसमें बताया गया है और बीच में एक दुर्घटना हो जाती है जो एक क्लाइमेक्स का रोल प्ले करता है इस फिल्म में। भीमसेन जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। नौशाद साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को मिला है और जो गाना आपने याद किया है, ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, शकील बदाई साहब ने इसे लिखा है और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है आदमी इस एल्बम का। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और बहुत ही प्यारा सा सफर शुरू हो चुका है। आदमी इस एल्बम का ये बहुत ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक गीत की तरफ। तो मैं चाहूंगा विभा जी, आपके पास अगला गाना कौन सा है?
1: ये गाना भी बहुत प्यारा गाना है। जो पिछला गाना सुनते हुए मुझे लग रहा था, इसमें कैसे कि इसमें दुख भी है, तंज भी था वो आदमी फिल्म के गाने में। इसके बोल बीच में थे, जैसे मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना। कभी कभी गलत फहमियाँ और कहाँ इंसान को ले जाती है। फिर उसको पीछे छोड़ते हुए मैं एक सुंदर सा मीना कुमारी पे फिल्माया गया गाना लेके आई हूँ। ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के बट ना खोले रे। इसमें मीना कुमारी बहुत ही अटकेलियां करती हुई, नाचती गाती हुई इस गाने को गा रही हैं, जैसे अपने आप को राधा और महबूब को कृष्ण का नाम देते हुए कैसे वो घूंघट के साथ खेलते हुए इस गाने को गा रही हैं। कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है ये भी।
0: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और ये आजाद 1955 में फिल्म आई थी। और इस गाने को भी राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है। सी रामचंद्रन का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को, इस गाने को मिला है। तो कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और ऐसा भी कहा गया, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास भी रचा है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आजाद इस एल्बम का, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मस्ती और चुलबुल भरा गाना था। एक अमीर आदमी की कहानी यहाँ पर बताया गया है, और आजाद नाम का व्यक्ति जो है कुछ डाकुओं के साथ भिड़ जाता है और वहां पर एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट होता है, और पूरी फिल्म इसी पे बनी थी। ये श्री रामलू नायडू का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी, सी रामचंद्रन का संगीत से सजा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और कौन सा खूबसूरत गाना आपके पास है?
2: पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सनी, आपकी शायरी बहुत इम्प्रूव होती जा रही है, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी आप इन बिटवीन बोल रहे हो, मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ आपका।
1: थैंक यू सो मच जी।
2: अगला गाना है, ना छेड़ो कल के अफसानों को, करो इस रात की बातें। ये भी मोहब्बत भरा गीत है, और इसमें पुराने बीते हुए टाइम को पीछे छोड़ते हुए आज की खुशियाँ मनाने।
1: जी विभा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। रात और दिन एक एल्बम आई थी, फिल्म आई थी 1967 में, और ये जो फिल्म है नरगिस, फिरोज खान, प्रदीप कुमार, के एस सिंह पर पिक्चराइज किया गया था। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट है ये फिल्म रही होगी, और मुझे लगता है कि सत्यन बोस का ये निर्देशन में फिल्म बनी थी। अख्तर हुसैन इसके कहानी को लिखा था, और ये कहानी जो है थोड़ा सा अलग हटके हैं, रात और दिन आप समझ सकते हैं। और शंकर जयकिशन साहब ने इस फिल्म को संगीत दिया था। तो इस फिल्म का जो गाना आपने याद किया है, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, और शंकर जयकिशन साहब ने संगीत से सजाया है। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और हमारे साथ विभा जी हैं और बहुत ही प्यारे कलेक्शन वो सुना रही हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं जो खैरात में मिलती कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी उनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। इसीलिए कामयाबी पाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और सबको नहीं मिलती, क्योंकि सबके पास वो हुनर नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अब अगला गाना कौन सा आप हमारे श्रोताओं को सुना रहे हैं?
1: सनी, आपने ठीक कहा कि कामयाबी पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ आशा पारिक मशक्कत कर रही है अपने महबूब को मनाने के लिए और कह रही हैं, ना जाओ मेरे हमदम सुनो वफा की पुकार। तो ये पूरे कड़कपन से पहले अपने महबूब को नाराज कर देती हैं और फिर उनको पाते हुए जा रही हैं, साथ ही अपने महबूब को प्यार का वास्ता दे रही हैं और अब फंसाने को कह रही हैं। तो कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है और अच्छी तरह फिल्माया गया, बहुत ही खेतों में नेचर में दिखाया गया ये गाना है। उदासी के जुल्फों को महका दूंगी, तेरी सुनी सुनी बाहों में घुखड़ा सजा दूंगी, अब आएंगे तो लौटेंगे तेरे ना लौटेंगे तेरे कदम। बहुत अच्छे लिरिक्स है ये।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, विद लिरिक्स याद कराया है। तो आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस गाने को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आपने जिस गाने का याद कराया है, ये एक फिल्म आई थी प्यार का मौसम 1969 में, और ये फिल्म जो है राहुल देव बर्मन, शशि कपूर, आशा पारेख और निरुपमा राय पर पिक्चराइज किया गया था। और इसमें ये गाना है, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुनाए हैं। और भी जो अभी जो गाना आपने सुना प्यार का मौसम, इसमें भी एक प्रेम कहानी है और ये बड़ी अलग टाइप की कहानी बताई गई है। एक लड़का को एक लड़की से प्यार होता है, कॉमन बात है, लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि लड़के का असली नाम कुछ और है, तब उसे जो है वो मुश्किल फील करती है। ये चीजें जब पता चल जाता है कि कोई और लड़का का नाम इसने रखे मेरे से प्यार किया, तो उसे धोखा ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर एक क्लाइमेक्स बताया गया है। तो नासिर हुसैन साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्यार का मौसम।

0: का जो गीत अभी आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ हम लोग चलेंगे अभी। और विभा जी, कौन सा है अगला गाना आपके पास?
1: अगला गाना भी रोमांटिक है, हरी और राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया गाना है, न जाने कहाँ तुम थे न जाने कहाँ हम थे, या जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। और इसमें ये कि कहाँ दो इंसान जो दूरियों में रहते हुए भी कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसका जिक्र है यहाँ। और इसमें रोमांस है, अपनापन है और शर्म है, रोमांटिक गाना होते हुए भी इसमें हर पहलू को दिखाया गया है, एक नेचर को भी दिखाया गया है। और बहुत ही प्यार भरा गाना, दोनों महबूब और महबूबा दोनों ही प्यार में कैसे एक दूसरे को दूर होते हुए भी पास हो जाने का एहसास दिला रहे हैं।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, जिंदगी और ख्वाब 1961 में ये फिल्म आई थी, जो राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, जयंत आगा इन पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म कमल अमरोही साहब की लिखी हुई है और इसे एस बैनर्जी साहब ने डायरेक्ट किया था। ये उस समय की सुपरहिट फिल्म, क्लासिकल फिल्म है और दत्ताराम वाडकर ने इस फिल्म को म्यूजिक से सजाया था। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए, और जिसे खास प्रदीप कुमार जी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुरी मन्नाडे इस गीत को गाए थे, दत्ताराम जी का खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाने कहां तुम।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में। कहते हैं चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई न कोई इंतजाम तो होगा। जी विभा जी, अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास?
2: ये गाना है ना जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा। ये गाना शिकायत भरा एक गाना है जो धर्मेंद्र अपने महबूबा को गाते हुए ये अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और मीठी से शिकायत कर रहे हैं। तड़प दी भी तो ऐसे दी कि मुश्किल हो गया जीना।
1: जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, मोहब्बत जिंदगी है इस एल्बम से ये गाना है। ये गाना जो है एचएस बिहारी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, ओपी नैयर साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आप सबके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, जिंदगी मोहब्बत जिंदगी है। जी हाँ, ये जो फिल्म थी इसमें ये कहानी जो है थोड़ा सा अलग था। एक व्यक्ति है जिसको खास जेल की सजा हो जाती है और फिर आश्चर्य ये होता है कि जब उसे सजा मिलती है तब उसके ऊपर वो इल्जाम लगा होता है और बाद में जब पूरी जांच पड़ताल होती है फिर से रिवर्व किया जाता है तो वो व्यक्ति जो है बेकसूर निकलता है। इस तरह की कुछ अलग कहानी इसमें बताने की कोशिश की है। जगदीश निरूला ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था, ओपी नैयर साहब ने संगीत से सजा था, इस फिल्म के म्यूजिक को सजाया था और मुश्तक जलीली ने इस कहानी को लिखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी बातें, प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं 50s एंड 60s के। अब विभा जी, अगला कौन सा गाना है आपके पास?
2: अगला गाना भी प्यार करने वालों की क्या अजीब सी मांग होती है कि मीना कुमारी, बहुत ही प्यारा गाना है और ये मीना कुमारी की सुपरहिट गानों में से एक गाना है। उनकी एक्टिंग कमाल की है। ये गाना है, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है, एटमोस्फेयर बहुत ही रोमांटिक है और अपने पति को और अपने जिनको वो प्रीतम भी मानती हैं, नशे में धुत होते हुए भी उनको पकड़कर अपने पास ही रहने की बात कर रही हैं। बहुत ही नशीला गाना है।
1: जी जी जी, सही पहचाना आपने। और साहेब बीवी और गुलाम जो 1962 में आई थी, ये सुपरहिट फिल्म बनी उस समय की और इसमें जो कलाकार थे जैसे कि आपने बताया मीना कुमारी, गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान साहब ने काम किया था और इनकी जो है बहुत ही अच्छी ये फिल्म बनी और उस समय एक थोड़ी सी इसमें जो अलग चीज बताई गई, एक अयाश आदमी की पत्नी की कहानी जिसको बयां करना है इसमें और ये सारी चीजें जो है घर के अंदर जो माहौल बनता है और अमीर आदमी होने के नाते वो बहुत समय तक बाहर रहता है तो चीजें कुछ अलग बन जाती हैं। आबरा अलवी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, विमला मित्रा ने इसकी कहानी लिखी थी और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय का इस फिल्म को संगीत से सजाया था। तो आइए इस फिल्म का ये गीत जो बहुत ही खूबसूरत गाना है, टची गाना है, सभी को अच्छा लगता है, तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। शकील बदायूं का लिखा, गीता दत्त का गाया, हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया विभा जी। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता खुश हो गए होंगे। आइए, अब आखिरी मोड पे हम लोग पहुँचे हैं, तो अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाए। ये बारिश की रात में फिल्माया गया गाना है। इसके बोल बड़े प्यारे हैं। इसको कैसे महबूब अपनी महबूबा के लिए, उनके इवन पानी की बूंदें टपक भी रही हैं तो उसको भी कैसे मोतियों का नाम देते हुए अपनी शायरी अपने लफ्जों को प्यार में लपेट के महबूबा तक पहुँचा रहे हैं। और महबूबा बड़े प्यार से इसको सुन के शर्माती हुई इस गाने का लुत्फ ले रही है। और इसके बोल, हमारी जान ले लेगा ये नीची आंख का जादू, चलो अच्छा हुआ मरकर जहाँ से छूट जाएगा।
1: जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है। ये शहनाई इस एल्बम का गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। और ये एक फिल्म है जिसमें वायुसेना के अधिकारी का एक प्रेम कहानी दिखाया गया है और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो किस तरह से फिर अपने परिवार को छोड़कर अपना कर्तव्य करने के लिए जाता है, अपना कर्तव्य पालन करता है देश के प्रति। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है और देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देता है। तो चलिए, ये SD नारंग साहब का निर्देशन में बना फिल्म बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है। इसके कलाकार थे विश्वजीत राय, राजश्री, जॉनी वॉकर, निरुपमा रॉय इस फिल्म के कलाकार थे। चलिए, अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत चाहने का। और जाते जाते विभा जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारे कलेक्शन आज के इस एपिसोड में हमारे सभी श्रोताओं को सुनाया, एंड बहुत बहुत धन्यवाद
2: आपका भी। धन्यवाद सनी, आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का जिन्होंने बड़े प्यार के साथ हमें सुना और अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ ये वक्त गुजारा। मैं उनके आभारी हूँ और आपको भी शुक्रिया करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया इस शो में आने का।
1: जी जी, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छे कलेक्शन को सुनाए। और जाते जाते दो लाइनें हमारे सभी श्रोताओं के लिए और इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत। कहते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता।

0: But the thought that I create, now I have a laptop. You know, ये thought जो create कर ली, ये thought वो positive energy को create कर देता है. तो सबसे पहली realization ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस feeling को नहीं create कर रहा है, मेरी अपनी thoughts, क्योंकि हमने chain में देखा कि thought gives rise to feeling, nothing else. कोई भी और चीज वो feeling नहीं create कर सकती है. तो now it's in my hand कि laptop लाने के बाद मैं उस अच्छी feeling को create करूं या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: श्रोते हो, पुढच्या एका कवितेकडे वळूया, ज्यामध्ये हृदय जॉकी या नावाने सर लिहितात श्री अमरदीप सुनंदा पंढरीनाथ मखामले तथा दादासाहेब सरांनी तळेगाव दाभाडे इथून लिहिले। छद्मनामात्य आंतरराष्ट्रीय मंच सन्मान सर लिहित आहेत जा या शीर्षकाखाली, की अजूनही आठवतात तुझे शब्द जमल्यास मला विसरून जा। अजूनही आठवतात तुझे शब्द जमल्यास मला विसरून जा, किती सहज म्हणाली होतीस माझ्या आयुष्यातून निघून जा। वाह, किती सहज म्हणाली होतीस माझ्या आयुष्यातून निघून जा। कळत नाही प्रेम होतं की आणखी काही, कळत नाही प्रेम होतं की आणखी काही, हवं तेव्हा ये हवं तेव्हा जा। कळत नाही प्रेम होतं की आणखी काही, हवं तेव्हा ये हवं तेव्हा जा। आणि सर शेवटी असं लिहिताय की कवटाळतोय मृत्यूला तुझ्यासाठी हसत हसत, कवटाळतोय मृत्यूला तुझ्यासाठी हसत हसत, आठवणीतील मला कशी म्हणशील जा, आठवणीतील मला कशी म्हणशील जा। वा, तर प्रेम ज्यामध्ये विरह येतो, ज्यामध्ये नाती तुटतात आणि ज्यामध्ये मला विसरून जा असं म्हटलं जातं। म्हणणारा विसरून जा असं म्हणून निघून जातो, परंतु ज्याला म्हटलं जातं त्याच्या जीवनामध्ये घडणाऱ्या घडामोडी सरांनी अप्रतिमरित्या शब्दबद्ध केलेल्या होत्या। हृदय जाकी या नावाने श्री अमरदीप सुनंदा पंढरीनाथ मखामले तथा दादासाहेब सरांनी तळेगाव दाभाडे येथून छंदोगामात्य आंतरराष्ट्रीय मंच सन्मान। आणि श्रोते हो, पुढच्या एका कवितेमध्ये निर्मला विष्णू धापसे मॅडम लिहित आहेत माजलगाव जिल्हा बीड येथून। निर्मला विष्णू धापसे मॅडम यांनी माजलगाव जिल्हा बीड येथून लिहिलंय, एकाचे कटू

0: बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आप सुन रहे कार्यक्रम यशस्वी भारत। भारत का जो गौरव है वो देश और दुनिया तक फैला है, लेकिन दोस्तों भारत का गौरव फैलाने वाले कौन है? कुछ ऐसे भारतीय जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं को ऐसा निखारा, ऐसा उन्होंने उभारा कि भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने अपना साथ साथ देश का नाम रोशन किया।
4: एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने जीवन को खुद संवारा, जिन्होंने अपने ही नहीं बल्कि कई जीवन को संवारा, जिनकी आप अगर लाइफ स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, अपना क्या लाखों जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और उनकी इंस्पायरिंग बेहद बहुत मुझे लगता है महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए ये कहानी। हमारे साथ, जी हाँ, पद्मश्री उषा चौमर जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपनी कहानी हम उनके मुंह से सुनेंगे, तो बेहद लकी हैं हम। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: ओम शांति। जो बहुत खुशी हो रही है और बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आई मैं ब्रह्मचारी कन्याकुमारी की धरती पर, तो मुझे इतना सुकून मिला और इतनी खुशी हो रही है कि मेरी जिंदगी में शायद मुझे कभी ऐसी खुशी नहीं मिली होगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, मेला ढोने के लिए जाती थी मम्मी के साथ, तो बस मेला ढो रही थी। फिर मेरी 10 साल की थी तो मेरी 10 साल की उम्र मेरी शादी हुई बड़े वाली दीदी के साथ, तो 4 साल के बाद मेरा गोना किया, तो वहां पर तो मम्मी के साथ मुझे मेला ढोने का काम करने को मिला। मुझे ससुराल में आई अलवर में तो माँ मेरी सासू माँ के साथ काम करने को मिला मेला ढोने, तो मेरी जिंदगी में कोई बदला नहीं, सिर्फ हम लोगों को क्या था घर बदला, काम तो वही था, तो वही काम में कर रही थी। जैसे कि उनका घर काम करती थी तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाना, ऊपर से खाना देना, बासा हुआ खाना देते थे वो लोग, ऊपर से पैसे फेंक के देना, ऐसा उन लोगों का व्यवहार था। लेकिन बस उसी जिंदगी में जी रहे थे, तो पता ना हम लोगों को किस तरह से भाग्य बदला। और डॉक्टर पाठक जी हमारे अलवर में आए तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप ये काम क्यों करते हो, और देखिए हम लोगों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा था मेला ढूंढने का, तो वही काम हम कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कोई अच्छा काम करने के लिए दूं तो क्या करोगे तुम? अब देखिए मैम, इतना गंदा काम कोई करना नहीं चाहता, जिससे सबको नफरत होती है, घिनौना होती
4: है।
5: तो हम लोगों ने वो काम छोड़ा, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, अचार पापड़ जवे कोटन की बत्तियां जूट वे पार्लर का काम सिलाई कढ़ाई सब सीखा। तो जिससे कि हम लोग सामान बनाने लगे तो हमने डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर सामान तो हम बनाएंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन
4: जी?
5: क्योंकि हमारे वहां पर बहुत छोटे छोटे अलवर में राजस्थान में, तो उन्होंने कहा सामान मैं खरीदूंगा आप बनाओ तो सही। देखिए आज वही सामान जो हम बना रहे हैं वो तो आज तक खरीद रहे हैं सुलभ, तो लेकिन जिनों के घर में शौचालय कभी साफ करती थी 2003 से पहले, आज वही लोग हैं जो मेरा सामान बना हुआ खरीद के खा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उसी गिलास से मुझे वो पानी पिलाते, उसी चेयर पे वो मुझे बिठाते जब स्वयं बैठते हैं। लेकिन आज मुझे उन्होंने डॉक्टर पाठक जी के ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया। देखिए हमारे गांधी जी, मैंने गांधी जी नहीं देखे, मैंने सिर्फ उनमें देखा गांधी जी, और मैं ये कहती हूँ वही हमारे भगवान है, वही हमारे बाबा है जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली। तो मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने देखा ना तो कोई ऊंच नीच, यहाँ पर बिल्कुल इतना बड़ा मतलब एक संस्था है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल एक साथ रहे। लेडीजों का सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है क्योंकि लेडीज सबसे आगे हैं, मतलब लेडीजों के हाथ में सारा पावर है यहाँ पर
4: जी।
5: तो बिल्कुल सारी जगह में ये कहती हूँ कि ये नहीं कि भाई हम लोग यहीं पर अपना पावर जमा सकते हैं, हम कहती हूँ लेडीज हर जगह अपना पावर जमा सकती हैं।
4: बिल्कुल।
5: तो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने देखो कल की आई हूँ यहाँ पर, मैंने अभी तक मेरे बच्चों से बात नहीं की कि मुझे यहाँ पर आके इतनी शांति मिल रही है, क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इज्जत और सम्मान दिया है इन्होंने मुझे, इज्जत सम्मान हर जगह से मिला है
4: जी।
5: लेकिन जो मुझे आज यहाँ पर मिला है
4: जी,
5: यहाँ ब्रह्म कुमारी में, तो मुझे यहाँ का जैसा सम्मान शायद मुझे नहीं मिला होगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
4: हमें बहुत खुशी है उषा जी आज आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप एक एग्जांपल हैं
5: जी।
4: कैसे बताऊं,
5: हाँ रोल मॉडल हूँ मैं यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, क्योंकि हम लोगों से पहले जब मैं काम करती थी तो आपको पता लोग अच्छी तरह से नहीं बात करते थे, भंगे क्या के बोलना उनका, जमादारनी मेहतरानी इस तरह से कहेगा। अब देखिए मैं, हम भी तो इंसान थे
4: बिल्कुल,
5: लेकिन आज की डॉक्टर पाठक की वजह से, सुलभ इंटरनेशनल की वजह से हम लोगों को इस काम से मुक्ति मिली
4: जी।
5: और आज आपके सामने की हर जगह से हम लोगों को सम्मान मिल रहा है
4: जी।
5: तो बड़ी खुशी हुई मुझे, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला मुझे। वो मुझे थोड़ा बोलने के स्टेज में मौका नहीं मिला, कभी फिर कभी आऊंगी, बाबा की कृपा बनी रहेगी तो फिर कभी आऊंगी यहाँ पर और तब स्टेज पे चढ़ तब बताऊंगी कि मुझे कितना अच्छा और कितनी खुशी हो रही मुझे यहाँ पर।
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है ये रेडियो के माध्यम से भी बहुत लोग जान पाएंगे उषा जी।
5: जी मैम।
4: वैसे तो आपका नाम सभी जानते हैं
5: जी,
4: आपके बारे में पढ़ा है।

0: लेकिन आपके जीवन से बहुत सारे गांव में लोग हैं जो अभी आपको सुनेंगे या सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर से मैं?
1: देखिए, महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, हम लोग क्या समझते हैं कि बस अपना घर का ही काम करना, हमको अपने बच्चों की पालन पोषण करना, पति की सेवा करनी बस। अब वो नहीं ये समझते कि बाहर जब निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो पति के भरोसे रहती है कि पति मुझे ला के देगा, उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज पति के बराबर है, बल्कि पति से दो कदम आगे हैं
0: जी।
1: तो हम क्यों ना, मतलब ये थोड़ा ना पति के पीछे आएंगे, पति के आगे एक रुपए दो रुपए क्या आएगा, हाथ पसारेंगे। हमें खुद ना इतना हुनर है लेडीजों में कि खूब कुछ भी काम कर सकती हैं
0: जी,
1: बहुत अच्छे से। तो मैं सभी लेडीजों से कहना चाहूंगी कि प्लीज बाहर निकले कुछ देखें। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलते तो कुछ हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग बाहर निकलते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए विदेशों में देखिए लेडीज कंपनी चला रही है, एरोप्लेन चलाती है
0: जी,
1: गाड़ी चलाती, तो अपने यहाँ क्यों नहीं, अपने राजस्थान में, अपने इंडिया में क्यों नहीं, वहाँ पर इतनी साफ सफाई रहती है। अब मैंने यहाँ पर देखा कन्याकुमारी, यहाँ पर काफी साफ सफाई
0: जी।
1: और ऐसी जैसे कि हम लोग पहले शौचालय काम करते थे तो डॉक्टर पाठक जी ने हर जगह पर शौचालय बनवा दिए वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था जेंट्स, तो आपको पता है कहीं भी मतलब
0: जी जी
1: बैठ जा सकते, लेकिन लेडीज को तो बहुत प्रॉब्लम होती है
0: जी।
1: उन्होंने हर जगह पर पक्के शौचालय बनवाए, तो लेडीज अच्छे से अपने इज्जत से इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि आपको पता शाम को अगर उन्हें परेशानी हो जाए तो जैसे सोचती है कि सूरज छुपे तब हम जाएं
0: जी,
1: अगर दोपहर में पेट खराब हो जाए तो झाड़ियों के नीचे बैठना पड़ता, गड्ढों में बैठना पड़ता उनको, और शाम को वो कहते हैं शाम को भगवान, सुबह सुबह चार बजे से पहले उनको उठना पड़ता या पाँच बजे छह बजे से पहले, मतलब पिता के आदमी हमें कोई नहीं देखे
0: जी।
1: तो डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों की इतनी अच्छी जिंदगी बदली है कि हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सभी लेडीज अपने घर में, अब तो शौचालय सबके घर में देखिए। हाँ, तो मैं तो यही चाहती हूँ हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए। जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं गांधी जी के बाद, जिन्होंने शौच और सफाई की बात की है, और वहाँ डॉक्टर पाठक तो कम से कम 50-60 वर्षों से इस कार्य में लगे कि हर जगह पर साफ सफाई रहनी चाहिए, हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए, और लेडीजों के आगे रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि महिलाओं को दिक्कत ज्यादा होती है पुरुषों से, तो जरूरी है कि महिलाएं भी एकजुट हों, वो भी कई बदलाव ला सकती हैं, जैसे आप लेकर आ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उषा जी आप क्या कर रहे हैं, जब ये बदलाव आपके जीवन में आया तो आपने कैसे सोचा कि आपको दूसरों के जीवन के लिए भी कुछ करना है?
1: मैंने बस यही सोचा कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे मुझे और काम करने को मिले लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसे मुझे भी वहाँ पर विरोध किया गया अलवर में, ये नहीं करूँ तो और क्या करोगे, क्या महारानी बनोगी तुम?
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा क्या महारानी ना बनूं पर ये काम नहीं करूंगी मैं, मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम, क्योंकि ये काम से मुझे बहुत अपमान मिला। एक तो देखिए उनके शौचालय साफ कर रही हूँ और उस ऊपर से उनका ऊट पटांग बोलना, तो मैम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को तो क्या पहले मजबूरी थी
0: जी।
1: लेकिन बस मैंने यही ठाना मन में कि बिल्कुल नहीं करूंगी और अब ना ही किसी को करने दूंगा ये काम।
0: ये आपने ठान लिया?
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना हुई। और खासतौर से लड़कियों को ये कहना चाहूँ कि पढ़े वो, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो सभी लड़कियाँ लेडीज से पढ़ी हुई हैं, लेकिन खासतौर से गांवों की बात बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि गांवों में नहीं पढ़ती, थोड़ी सी लड़की सियानी होती है तो उसे घर बैठा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा लड़कियां भी अच्छे से पढ़े लिखे, क्योंकि लड़कियां तो दो दो घर संभालते हैं
0: जी,
1: उनकी शादी हो जाती है तो दूसरा घर भी संभालती है
0: जी।
1: तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से लड़कियां पढ़े लिखे और लेडीज से आगे बढ़े, क्योंकि लेडीजों में बहुत ताकत है, अगर एक साथ रहें
0: जी
1: तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बंद मुट्ठी
0: जी,
1: तो उनमें बहुत ताकत है, बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, मैं सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित करा जाएगा भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक महिला ढूंढने वाले के लिए इतना उन्होंने सोचा और इस लायक समझा मुझे कि मुझे पद्म श्री से सम्मान कराया उन्होंने, उनकी वजह से देखिए मुझे हर जगह पर सम्मान मिल रहा
0: जी। तो मैं तो आपकी मेहनत है उषा जी, आपका डेडिकेशन
1: जी मैम, तो मैं तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे राष्ट्रपति जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे बुलाया और इतना बड़ा सम्मान दिया। तो आज मैं यहाँ पर भी आई तो कन्याकुमारी में आकर मुझे बहुत ही ब्रह्मचारी कन्याकुमारी में बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिला और यहाँ भी मुझे सम्मान मिला। और यहाँ पर तो मैंने ऐसा बिल्कुल देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब भेदभाव हो, कोई

0: जो तो उसी गिलास में पानी पी रहे वहाँ पर, वो उसी गिलास हम लोग पी रहे, यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
1: तब एक ईश्वर की संतान है, कैसा फिर?
0: बिल्कुल, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि शायद मैंने एक कर्म करा होगा, लेकिन मैंने कभी फल की इच्छा नहीं की, लेकिन मैंने जो कर्म किया ईश्वर जाने
1: जी।
0: तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखे, उस सब में शक्ति दे।
1: उषा जी, आप जो आपने बताया कि सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट हैं, तो ये आपने सफर कैसे तय किया, कैसे बस आपने काम छोड़ा, फिर आपको आपने शुरुआत की, आपने बताया कि बहुत कुछ सिखाया गया, तो ये प्रेसिडेंट के पद तक आप कैसे पहुंचे, वो कैसा सफर था आपका?
0: ये मैम ये कैसा था कि हम तो वही काम कर रहे थे मेला ढोने का, तो जैसे कि हमने वो काम छोड़ा तो उन्होंने कहा कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं सुलभ का, क्योंकि हम भारत का राष्ट्रपति तो बनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इतना पावर नहीं हमारे हाथ में। उन्होंने कहा गांधी जी का सपना है कि एक स्केवेंजर महिला है भारत की राष्ट्रपति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर पाठक जी ने कि मेरे हाथ में इतना पावर तो नहीं है कि तुम राष्ट्रपति बना सको, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ, मेरे सुलभ का प्रेसिडेंट तो तुम्हें बना ही सकता हूँ। तो बहुत सारी लेडीज थी, हम 115 तो हमारे अलवर में लेडीज है जो मेरे नीचे काम कर रही है वो, और 250 से 300 लेडीज है और एक जगह से है टोंक से, तो सब मेरे नीचे। तो उन सबसे पूछा था कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं, तो सबने कहा मुझे तो पता भी नहीं था मैम, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि उषा जी को बनाना चाहते हैं। तो मुझे कहने लगे अरे मैम कांग्रेचुलेशन, मैंने किस बात की, अरे आपको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा, मैंने कहा मुझे क्या पता भाई प्रेसिडेंट का मतलब, क्योंकि पहले मैं तो मेला ढोती थी। 16 में 2003 से मैंने काम छोड़ा, तो फिर उन्होंने कहा अरे तुम बहुत बड़े पद पे जा रही हो, मैं कोई बात नहीं। तो पत्रकार वगैरह मुझे पूछने लगे कि मैम अब क्या करोगे, इस समझते इस चीज के लिए कि भाई तुम्हें जो बनाया गया प्रेसिडेंट इस चीज को मानती हो समझती हो। मैंने कहा भाई उनके साथ चलाऊंगी देखूंगी बैठूंगी तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्रेसिडेंट का मतलब मैम यही है कि कोई भी लेडीज है हमारे समाज की, मैं कह रही हूँ इस टाइम तो जैसे सभी लेडीज को कहना चाहती हूँ ना कि मेरी समाज के लिए, क्योंकि खासतौर से हम लोगों के समाज के लेडीज मेला ढोने का काम करती है, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जब से मुझे प्रेसिडेंट सोलह ने बनाया है तो बस मैं यही मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ये काम नहीं करना हूँ मेला ढोने का
1: जी।
0: मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम। अरे वो बहुत कुछ सीखना चाहती हैं और जानती भी हैं, अचार बनाती हैं, देख लीजिए वहाँ पर पापड़ बनाती हैं, चाय बनाती हैं, सब लोग खरीद के खा रहे हैं।
1: कितने टैलेंट है,
0: अपने पैरों पे खड़ी हैं, उन्हें एक रोजगार मिल गया
1: जी।
0: क्योंकि सुलभ में हम लोगों को दो जिंदगी जी ली है हम लोगों ने, जैसे कि मेला ढो रहे थे तो मैं यही कहती हूँ बिल्कुल नरक ऐसा ही होगा, वो जब से सुलभ में आए हम लोग तो ये कहती हूँ बिल्कुल मैं स्वर्ग बिल्कुल ऐसा ही हो। तो मैं कहती हूँ मुझे तो स्वर्ग भी जाने की जरूरत नहीं, बस भगवान भोलेनाथ कृष्ण जी, क्योंकि मैंने यहीं पर देख लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को वहाँ यहाँ पर ऐसा कहा गया कि भाई तुम कौन सी बिरादरी में जाना चाहते हो, तो मैंने कहा हम लोगों को पंडित ही बनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा तुम तो मत पंडित तो मंत्री बोलते हो उच्चारण करते, मैंने कहा बिल्कुल, तो थोड़ा समय तो मैं बोल देती हूँ।

0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल एक अलग ही मूड में चले गए थे और मैं खुद ईश्वर को याद कर रहे हैं, जो शब्द हैं उनके मतलब भी समझे तो हमें बराबरी समझ में आ जाती है, क्योंकि हम सब ईश्वर के
0: संतान।
1: उषा जी, मैं बस लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम भारत की उन्नति की बात करते हैं और जब तक भेदभाव है तब तक उन्नति नहीं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप और कोई ऐसी बात कहना चाहें, क्योंकि आप हैं जो आप में बदलाव आया, जो आप लेके आए हैं बदलाव, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो आप तो भारत के लिए क्या सपना देखते हैं, अपने देश के लिए क्या सपना देखते हैं?
0: बस भारत के लिए मैं यही सपना देखती हूँ कि भारत हमारा बहुत आगे जा सकता है, ऐसा नहीं है और जा भी रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ये जानते थे कि हमारा मतलब विदेशी आगे जा सकता है, विदेश के लोग, क्योंकि हम लोगों में क्या होता भारत में, क्योंकि हमारे भारत बहुत सी चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सी चीज है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, तो हम बिल्कुल अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे कि कितनी, आप देखिए अपने इंडिया में कितना मतलब माहौल ऐसा था कि कोई भी चीज खा के और डाल दिया
1: जी,
0: कोई मतलब लेडीजों की इज्जत नहीं थी
1: जी।
0: जैसे कि अपने यहाँ पर विदेशों में देखिए सब कुछ लेडीजें करती हैं और वहाँ पर साफ सफाई बहुत है, लेकिन अपने यहाँ पर देखिए अब जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए अपने देश में, खूब अच्छे से साफ सफाई यहाँ पर भी हो रही है और अपना भारत भी बहुत आगे जा रहा है, और लेडीजों को भी खासतौर से वो भी सम्मान दिला रहे हैं। जब लेडीजों को सम्मान मिलता तो लेडीजों का हौसला बढ़ जाता है, तो वो सोचती है कि आज मुझे मिला है तो दूसरी बहन को मैं दिलाऊं। तो जब एक लेडीज निकल के आती है, मैं मेरी बस्ती में सदस्य निकल के आई अलवर में, तो देखिए कभी मेरी समाज को कभी नहीं मिला था पद्मश्री, तो आज वो है, मेरा इतना इज्जत और सम्मान करते हर जगह पर, मुझे बुलाते, जो भी कुछ भी वहाँ पर होता पहले मुझे याद करते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं, मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो मैं डॉक्टर पाठक जी को धन्यवाद देती हूँ, वही हमारे बाबा, वही हमारे गांधी जी और वही हमारे भगवान, क्योंकि मैंने तो गांधी जी इतनी उम्र मेरी नहीं है कि मैंने देखे, लेकिन डॉक्टर पाठक जी मैंने देखा जो भी देखा।
1: लेकिन उषा जी मुश्किल तो हुआ होगा, चैलेंज तो आया होगा, इतना आसान तो चेंज नहीं होता।
0: मैं बहुत मुश्किल से चेंज आ रहा है, जैसे कि 2003 से मैंने छोड़ा तो जो शौचालय कच्चे थे दूसरी लेडीज ने पकड़ लिए, फिर दूसरे छोड़े तो तीसरे ने पकड़े, फिर मैं डॉक्टर पाटिल जी से कहा कि सर हम लोगों की जिंदगी में तो कोई बदलाव कभी आएगा ही नहीं, नहीं हम बदलेंगे, क्योंकि मैंने छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ लिए वो, तो डॉक्टर पाटिल जी ने क्या करा, जो जड़ फैली हुई थी वही उन्होंने काट दी, हर जगह पर उन्होंने शौचालय बनवा दिए पक्के, तो ना तो कच्चे शौचालय है ना ही उन्हें साफ करते हैं उन्होंने, और हम वहाँ पर संस्था में जुड़े हुए सुलभ इंटरनेशनल में। तो 2003 से मैंने छोड़ा, फिर 2006 में दूसरी लेडीज ने छोड़ा, फिर 2009 में तीसरी ने छोड़ा, तो हम लोगों ने काम छोड़ दिया, आप इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रहे और आपके सामने यहाँ पर भी आए, हम लोग हर जगह पर सम्मान पा रहे, तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को, मुझे तो मैं मेला ढोने वाले के लिए कल तक कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज कि मुझे सब इज्जत और सम्मान की नजर से देखते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनके लिए यही कहती हूँ डॉक्टर पाठक जी के लिए कि देखिए उनके जिन्होंने उनको जन्म दिया है, मैं उनको भी सत सत नमन करती हूँ, उनको जन्म दिया इतने मतलब महान एक सपुत्र है उनके, जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली।
1: हम भी उन्हें इस मंच के द्वारा बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इतने जीवन पर,
0: क्योंकि मैम देखिए ना तो वो हमारे अलवर के रहने वाले थे न ही हमारे समाज के थे, वो दूसरी बिरादरी के है, पंडित है वो, आज तो मैं पंडित खुद ही, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कहा कौन सी बिरादरी में जाना चाहते, लेकिन आज मैंने यहाँ पर आके देखा
1: जी
0: ग्रंथचारी कन्या में, कन्या तो यहाँ पर मुझे कन्याकुमारी में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इतना अच्छा लगा कि मैम आप, मैं कह नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम सभी परिवार हैं, एक बार जब मिलते हैं सीखने को मिलता है, एंड आपको हम स्पेशली बहुत धन्यवाद देते हैं उषा जी, क्योंकि जो आपने बातें कही यहाँ गांव-गांव तक जाएंगी
0: जी,
1: बहुत सी महिलाएं हैं जो लगता है कि हमारे जीवन में शायद कभी बदलाव नहीं आएगा, हमारी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन वो जब ये सुनेंगी तो उन्हें समझ में जरूर आएगा कि किस्मत में ये नहीं लिखा,
0: हमारी किस्मत खुद बदलने वाले हैं,
1: खुद बदल सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाना।
0: हाँ, लेडीजों को थोड़ा सा घर में से बाहर निकलना, उसके बाद बहुत

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। मेरे एहसास में आग लगा दी।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: संत कबीरदास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना जाता है। उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपति ने किया था। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और वीतरागी जीवन जीते थे। उनका चित्त राम में रमा था, मगर उनके राम दशरथ नंदन नहीं, शून्य स्वरूप परम तत्व थे। सारा जीवन काशी में बिताने के बाद अंतिम समय वे मगहर चले गए। यही था उनके आचार और विचार से एक होने का परिचायक। कबीर काव्यगत रूढ़ियों के न तो कायल थे और न ही जानकार। उन्होंने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा भी नहीं की। वे पंडित, शेख, अवधू और योगी सब पर आक्रमण करते, लेकिन बदनीयत से नहीं। भाषा उनकी चेरी थी, लेकिन वे शब्दों का आडंबर नहीं रचते। उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ था। आपाद मस्तक प्रेम में भीगे कबीर आडंबर से कोसों दूर थे। वे न पूजा करते, न नमाज पढ़ते, न हज जाते और न तीर्थ। उनका ऐसे लोगों से कोई सरोकार न था जो पढ़ पढ़कर पत्थर हो जाएं, लेकिन जिन्हें प्रेम की एक छींट भी न लगे। कबीर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो थे प्रेम के ढाई अक्षर, और यही ढाई अक्षर उन्हें विलक्षण बांकपन देते थे। कबीर औरों से अलग थे, भाषा में अलग, विचार में अलग, सलीके में अलग, सलूक में अलग। उनका प्रभामंडल सौम्य नहीं, प्रखर था। न वे किसी खांचे में अटते, न उनके लिए खांचा बनाना संभव। उनके साथ चलने के लिए घर फूंकना पड़ता। वे अपूर्व और इकलौती शख्सियत बनकर एक ऐसे मैदान में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। चीजों को पकड़कर या ढोते हुए कबीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उनका मार्ग न तो हिंदू का मार्ग है और न ही मुसलमान का। कबीर नाम है ढाई अक्षर के बांकपन का।

0: वाह मजा आ गया। क्या भजन आया रेडियो पे, सुन के दिल एकदम खुश हो गया। अच्छा काका, कबीर जी के भजन तो बड़े अच्छे होते हैं, इतना क्यों मानते हैं कबीर जी को, कुछ बताओ ना काका।
1: अरे काका बता दो, नहीं तो दिन भर जान खा जाएगा आपकी। अभी तो वैसे भी ढाबे पे कम लोग हैं।
0: तू चुपचाप रह। हाँ तो काका, कबीर दास जी बहुत पुराने समय से हैं ना।
2: हाँ।
1: अरे काका आज तो सुनाई डालो, आज का दिन अच्छा जाएगा, और वैसे भी सल्लू तो मानने वाला है नहीं।
0: हाँ हाँ काका, सुना दो कबीर दास जी के बारे में।
2: अरे बेटा सल्लू, समय था आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1456। शहर बनारस गंगा किनारे बसा हुआ। अरे वहाँ पैदा हुआ कबीर।
1: कबीर?
2: हाँ।
0: मतलब कि कबीर दास काका?
2: हाँ सल्लू, कबीर दास।
1: अरे हाँ काका, उनका तो हमने पढ़ा भी है।
2: हाँ, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को बनारस के लहर तारा तालाब किनारे पड़ा मिला था।
0: तालाब किनारे?
2: हाँ तालाब किनारे।
0: अरे ये सब तो नहीं मालूम था काका।
1: हाँ ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था काका।

0: बहुत थक गई, मैं तो चलते चलते।
1: मेरी थकान तो तालाब किनारे की ठंडी हवा ने दूर कर दी।
0: मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है।
1: तालाब से दो घूंट पानी पी लो और दो घड़ी सुस्ता लो।
0: नहीं, रहने दो, बहुत रात हो गई है।
1: पूरन मासी के चांद के उजाले में रात कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: 숨어. 그 전화도네.
1: 아, 제새끼 맨날 붙자 놀아할. 아니, 야도 그 생각 좀 있냐다?
0: 전화, 전화 우달 잘까 내때. 아, 와서 뭐 있어야 하래.
1: 얘라, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है।
0: या अल्लाह, कौन जालिम बच्चे को इस तरह छोड़ गया? देखो देखो ना, मेरे गोद में आने के बाद कैसा चुप हो गया।
1: समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें।
0: अरे चलो इसे अपन घर ले चलते हैं।
1: पागल हो गई हो?
0: हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, हम इसी को पालेंगे।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं किस मजहब या जाति का है, हम कल किसी झंझट में न पड़ जाएं।
0: इस डर से इस मासूम को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दें क्या?
1: ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर
0: अगर मगर कुछ नहीं, हम इसे पालेंगे। अरे मालिक की भी शायद यही मर्जी है।
1: हम बे औलाद हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे?
0: लोगों से क्या मतलब है हमें, कोई चोरी या बुरा काम तो नहीं कर रहे ना हम।
1: तू क्या समझती है कि बच्चे के मिलने से तू अकेली खुश है? मैं भी खुश हूँ।
0: बेशकीमती औलाद मिल गई है हमें, मन की साहत पूरी हुई।
1: तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। चल उठा, बच्चे को घर ले चलते हैं।
0: हाँ, चलो जल्दी घर चलो।
2: ये तो बहुत अच्छा हुआ काका कि नीरू और नीमा ने कबीर दास जी को तालाब के पास से उठा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ काका।
3: हाँ बेटा, कबीर के आने से नीरू और नीवा के जीवन में बहार आ गई थी। नन्ना बाला कबीर दोनों की आंख का तारा था। लाड़ प्यार से पलता कबीर अब 6 वर्ष का हो गया था नन्ना, पर सवाल बड़े बड़े करता था। अपने नीरू और नीमा उसके सवालों को सुनकर हैरान रह जाते थे।
4: अब्बा एक बात पूछनी है। पूछूं क्या?
5: साथ आते हुए तूने वादा किया था कि सवाल पूछकर मेरी खोपड़ी नहीं चाटेगा।
4: बस एक सवाल।
5: तू मानेगा नहीं, पूछ।
4: अब्बा वो जो आदमी खड़ा है उसने माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है?
5: क्योंकि वो ब्राह्मण है बेटा।
4: ब्राह्मण क्या होता है?
5: हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है बेटा।
4: हिंदू कौन होते हैं?
5: जैसे हम मुसलमान हैं वैसे ही वो हिंदू हैं।
4: पर वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, फिर हिंदू कैसे हुए?
5: दोनों मनुष्य ही हैं, बस अलग पहचान के लिए हिंदू और मुसलमान हुए।
6: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
4: अब्बा ये इतनी जोर से किसकी आवाज आ रही है?
5: चुप चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं कहते, मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं।
4: पर मैंने तो मस्जिद में किसी खुदा को नहीं देखा, वहाँ तो मौलवी साहब रहते हैं ना।
5: खुदा तो हम सबके दिल में रहता है।
4: फिर हम मस्जिद क्यों जाते हैं?
5: या अल्लाह, अच्छा अब तू चुप कर।
4: अब बताओ ना ये अल्लाह कौन है?
5: अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जिसने हम सबको बनाया है, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं।
4: इबादत माने?
5: खुदा को खुश करने का तरीका।
4: इबादत से खुश हो जाते हैं वो?
5: लोग तो ऐसा ही कहते हैं।
4: इबादत तो आप भी करते हैं, फिर उसने हमें गरीब क्यों बनाया? और लोग तो अमीर हैं।
5: अपना नसीब है बेटा, खुदा ही हमें बनाता है और हमारा नसीब भी।
4: इसका मतलब खुदा भेदभाव करता है।
5: अल्लाह चुप कर, बीच बाजार पता नहीं क्या क्या बके चला जा रहा है। खुदा के लिए ऐसा नहीं कहते बच्चे।
4: पर अब्बा ये तो
5: अब बता। और सवाल नहीं, तेरे सवालों से मेरा माथा दुखने लगता है।

0: शाम हो आई, दिन भर से काम कर रहे हो, अब बस भी करो।
1: महाजन को कल ही थाम देना है। सुनो, जब से कबीर घर में आया है तब से हमारी हालत सुधर गई है।
0: मैं भी वही देख रही हूँ।
1: कबीर घर में नहीं दिख रहा है, कहाँ गया?
0: बाहर खेलने गया होगा बच्चों के संग। बुलाती हूँ अभी मैं। कबीर, ओ कबीर।
1: वो बच्चों के संग नहीं होगा।
0: हाय अल्लाह, फिर कहाँ गया होगा मेरा लाल?
1: पास वाले चबूतरे पर कुछ साधु बैठे हैं, उन्हें अटपटे सवालों से परेशान ना कर रहा हो।
0: अरे मुझसे भी पूछता है, खुदा कौन है, भगवान क्या है, अब मैं भला क्या जानूं?
1: बड़ा डर लगता है उसके सवालों से, कहीं किसी दिन बड़ी मुसीबत न खड़ी हो जाए। हम ठहरे छोटे लोग।
0: मौलवी साहब से कहें क्या कि इसे तालीम दे दे?
1: पगला गई हो, एक बार बात की थी, दुत्कार दिया मौलवी साहब ने। कहने लगे जुलाहे की औलाद दीनी तालीम हासिल करेगी तो कपड़े क्या हमारी औलादें बुनेंगी?
0: अरे बोलो। अम्मा लो। आ गया तुम्हारा लाडला।
2: क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? अब्बा भी परेशान दिख रहे हैं।
0: तेरी तालीम को लेकर परेशान है बेटा, मौलवी साहब मना करते हैं तालीम देने से।
2: मना करते तो करने दो, मैं साधु संतों से हासिल कर लूँगा।
0: ना मेरे लाल, सुना है वो बच्चों को भगा ले जावे हैं।
2: अरे अम्मा, मुझे कोई नहीं भगा सकता।
0: उनके फुसलाए से कहीं तू साधु बनकर अपनी अम्मा को तो ना छोड़ेगा बिटवा?
2: अरे मैं अपने अब्बा और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस ज्ञान पाना है, साधु से मिले या मौलवी से।
0: सुनो जी, मुझे तो बस यही चिंता खाए जाती है कि कहीं मेरा लाल मेरी नजरों से दूर न हो जाए।
1: और मुझे तो फिलहाल यही चिंता सता रही है कि आज खाना कब मिलेगा।
0: अच्छा।

0: कहते हैं ना बेटा कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, कबीर के भी दिखने लगे थे। दुनिया, खुदा, धर्म, पाप, पुण्य, मुक्ति और ऐसी तमाम बातों को लेकर उसकी जिज्ञासाएं बतलाती थी कि वो एक साधारण बालक नहीं है। कबीर अब किशोर अवस्था में आ गया था, ज्ञान देने वाला कोई गुरु तो मिला नहीं, इसीलिए साधु संतों और मौलवियों के पीछे घूमता, ज्ञान की तलाश में भटकता फिरता था वो।
1: मतलब कि बचपन से ही ज्ञान पाने की ललक थी उनमें काका।
2: अरे नहीं तो कोई ऐसे ही थोड़ी भटकता।
3: क्या बात है बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम कबीर है, आप लोगों से कुछ सुनने आया था।
2: इतनी छोटी उम्र में साधु से क्या सुनोगे बच्चा, सिवाय भजन के सो गा रहे हैं, बैठो और सुनो।
4: अब भजन क्यों गाते हैं?
2: ईश्वर की महिमा है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं बच्चा।
4: ईश्वर? ईश्वर कौन है?
3: हम सबका मालिक।
4: अब्बा तो कहते हैं हम सबका मालिक तो खुदा है।
3: एक ही बात है बेटा, जो खुदा है वही ईश्वर है, एक ही मालिक के दो नाम।
4: क्या आपने उस मालिक को देखा है?
2: देखा तो उसे किसी ने नहीं।
4: फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर है?
3: क्योंकि हम हैं, ये दुनिया है, हमको इस दुनिया को उसी ने बनाया है और ये दिखती भी है।
4: ये दुनिया उसने बनाई तो उसे किसने बनाया?
2: उसे कौन बनाएगा, वो सर्वशक्ति संपन्न ही इस दुनिया को बनाने वाला है।
4: अच्छा बाबा, फिर उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऊंची जाति का और किसी को नीची जाति का, क्यों बनाया?
3: अपने कर्मों के फल भोगते हैं हम सब।
4: पर जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन तो किसी का कोई कर्म नहीं होता, सभी जीव बराबर होते हैं। जब सबको बराबर मिला तो बाद में भेदभाव और छोटा बड़ा कैसे हो गया?
2: क्योंकि हर आदमी बाद में अपनी बुद्धि से ही कर्म करता है।
4: पर बुद्धि तो एक सी पाई, फिर सोच अलग क्यों?
3: ताज्जुब है बच्चा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने।
4: बाबा ये दुनिया उसने क्यों बनाई, यहाँ तो सब

0: ये दुखी है।
1: उसकी लीला वो ही जाने, हम तो बस उसके हाथ के खिलौने हैं, नचाता रहता है वो हमें।
0: कब तक?
2: जब तक हम उसको प्रसन्न कर इस माया मोह से मुक्त नहीं हो जाते।
0: मुक्त होकर कहाँ जाते हैं?
1: दूर तारों के पार, वहाँ आसमान में जहाँ स्वर्ग है।
0: किसी ने उस स्वर्ग को देखा है?
2: उसी को देखने की कामना में तो घर बार छोड़ आए हैं बच्चा।
0: फिर भी वो नहीं दिखा तो?
3: कबीर, अरे वो कबीर, कब लो तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई।
0: तू नाहक परेशान ना हुआ कर अम्मा।
2: बहन, अद्भुत बालक है तुम्हारा।
3: सब उसकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है।
4: मुझे तो ये किसी जन्म का अवधूत जान पड़ता है।
2: ऐसे सवाल खड़े कर दिए इसने हमारे सामने कि अब तक की सारी साधना बेकार जान पड़ रही है।
4: अरे बच्चा, हमारे साथ चलेगा क्या?
0: नहीं, मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए।
2: कल्याण मस्तु।
5: बालक तो चला गया पर हमें झिंझोड़ गया।
2: लगता है हम क्या अब तक अंधेरे में ही भटक रहे हैं।
4: यहाँ से चलो किसी और ठोर। अरे ना धी ना ना ना नी ना ना।
6: क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो।
7: और क्या करूं, गरीब को औलाद भी दी तो निर्मोही।
6: बात क्या है, कुछ खुलासा तो करो।
7: उसके दोस्त अनवर की शादी हो गई और एक ये है कि साधु संतों के बीच ही भटकता फिरता है।
6: उसके यही लक्षण देखकर तो मुझे उससे शादी करने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं होती। कौन ब्याहेगा अपनी लड़की इससे?
7: क्यों, क्या कोई चोर उचक्का है मेरा बेटा? कौन सी बुराई है मेरे बेटे में?
6: अरे ये सत्संग बत्संग।
7: अरे सत्संग करना तो ज्ञानी का काम है।
6: कौन है भाई वहाँ?
1: नीरू भाई, मैं हूँ।
6: आओ आओ और सुनाओ, क्या हाल है?
1: हमारा तो ठीक है, अपनी सुनाओ। कबीर नहीं दिख रहा?
6: उसी को लेकर फिक्रमंद हूँ। रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। आज किसी पंडित से उलझ लिए तो कल किसी मुल्ला को छेड़ दिया।
1: अरे यही बताने तो मैं आया हूँ, पकड़ो उसे वरना फुर्र हो जाएगा।
7: मैं भी तो यही कह रही थी कि उसकी शादी कर देते हैं।
6: बावली हुई हो, वो कभी नहीं मानेगा।
1: कल मैंने भी सुना कबीर को, खुलेआम पंडो पुजारियों और मुल्ला मौलियों को चुनौती देता है।
6: कैसे समझाऊं, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता।
7: अरे बड़े बड़े कर्म कांडी पंडित रहे हैं यहाँ काशी में, वो क्या कर रहा है?
1: पंडित और मौलवी दोनों नाराज हैं, कुछ करना बैठे ये दोनों।
7: यही तो डर है मुझे।
6: अब रोने से कुछ ना होगा, कुछ उपाय करना होगा। आने तो आज उसे, जुलाहा है जुलाहे से रहे अपने ओहदे में। चले हैं दुनिया को ठीक करने।
1: कह रहा था जाति वाति कुछ नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं। हिंदू और मुसलमान भी केवल भ्रम है, इंसानों का बनाया हुआ।
6: या मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, वो नादान है। मूर्ख को ये सब कहने की क्या जरूरत है?
1: अरे यही नहीं, कहता था गंगा में डुबकी भर लगाने से न पाप कटता है और न ही राम का नाम जपने से मुक्ति मिलती है। और सुनो, देवी देवता सब झूठ है कहता है, बलि के नाम पर पशु मारने वाले पंडित कसाई हैं, ऐसा कह रहा था।
6: तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया।
1: मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत खरा खरा बोलने लगा है। कहता है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमसे क्यों जानवर कटवाता है? खुद ही खेत जंगल से उठाकर उन्हें क्यों नहीं खा जाता?
7: अरे लगता है ये हमें चैन से नहीं रहने देगा।
1: कुछ भी कहो भाभी जान, पर अच्छे अच्छे पंडितों और मौलियों की जबान पर लकवा मार जाता है उसकी बातें सुनकर। अब पता नहीं इतनी बुद्धि कहाँ से आई उसमें।
7: अरे साधु संतों की संगत में सीख गया लगता है।
6: अब तक घर नहीं लौटा, फिक्र हो रही है।
1: कहीं भटक रहा होगा ज्ञान की खोज में। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ।
7: सुनो, मैं भी जाती हूँ उसे खोजने के लिए।
6: अब तुम ना जाओ कहीं।
7: क्यों?
6: आ जाएगा खुद ही, बच्चा थोड़ी है।

0: वाह वाह कबीर वाह, क्या खूब बात है। अरे तुम कब आए?
1: अरे कुछ देर हुई।
2: छुपके छुपके मेरा भजन सुन रहे थे।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: अरे रेदास, गंगा पार कुछ नागपंथी योगी ठहरे हैं, दो दिन से वहीं था, कुछ दिन और उनकी संगत में रहने का मन है।
1: सुना है उनकी साधना बड़ी निराली और रहस्यमय होती है।
2: वे ज्योति निरंजन के उपासक होते हैं।
1: तुम्हें ठीक लगा इनकी संगत में?
2: आडंबर तो है इनकी साधना में, पर कुछ बातें अच्छी हैं, जैसे घोर तांत्रिक क्रियाओं के सहारे सहज अवस्था में पहुंचने की बात करते हैं। सहज अवस्था में जो पहुंच गया वो अवधूत हो जाता है। अवधूत के एक हाथ में त्याग और दूसरे में भोग होता है, इसके बावजूद निर्लिप्त बना रहता है वो।
1: अजीब बात है।
2: मुझे तो ये योग और त्याग की आड़ में भोग भोगने की चालाकी जान पड़ती है।
1: फिर तुम क्यों उनकी संगत में?
2: क्योंकि उनका परम पुरुषार्थ मुक्ति है। इनका निरंजन ना सृष्टि करता है ना उनका सहारक।
1: इधर सराय के पास कुछ पंडित लोग जमे हैं, खूब किस्से कहानियां सुनाते हैं। चलो आज वहीं चलें कबीर।
2: चलो।
3: भक्तों, सर्वशक्तिमान परमपिता भगवान के चाहे बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
2: पंडित जी, तो क्या ये चोरी चकारी व्यभिचार और सारे दुराचार भी क्या उसकी मर्जी से ही होते हैं?
3: नास्तिक लगते हो तभी कुतर्क करते हो।
2: मंदिर मस्जिद में तो आपका सर्वशक्तिमान परमपिता खुद रहता है, फिर हमारे मंदिर मस्जिदों की ऐसी दशा क्यों?
3: ईश्वर की निंदा करने वाले तुम हो कौन?
2: मेरा नाम कबीर है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
4: 100% की बात कहते हैं कबीर, इनके आगे आपका झूठ ठहर ना पाएगा।
5: कोई नहीं मिल सकता।
3: हम वही कहते हैं जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है।
2: पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा बताइए, आपका वो ईश्वर कहाँ रहता है?
3: अरे हर जगह हर प्राणी में रहता है।
2: ईश्वर पत्थर की मूर्ति में रहता है क्या, जिसके सामने आप भैंसा और बकरा काटते हो? उनमें भी तो वही ईश्वर रहता होगा। ठीक कहा ना मैंने?
3: हमारे धर्म का अपमान करने आए हो।
2: संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना।

0: मतलब कबीरदास जी की चर्चा हर जगह होने लगी थी काका?
1: हाँ सल्लू, काशी में कबीर की चर्चा होने लगी थी। पंडितों और मुल्लाओं पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रहारों से वे जन सामान्य में लोकप्रिय होते जा रहे थे।
2: वो तो होंगे ही काका।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये धर्म के ठेकेदार उनकी खरी बातों से भाई खाने लगे थे। और उधर अम्मा अपने लाल की चिंता में मरी जाती थी।
3: अम्मा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है।
4: देती हूँ बेटा, पर मेरी एक बात मानेगा, मेरे लिए एक बहू ला दे बेटा।
3: अम्मा मैं शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ूंगा।
4: तेरे दोस्त अनवर ने भी तो कर लिया ना ब्याह।
3: वो भी मुझसे शादी कर लेने को कह रहा था।
4: ठीक तो है,

0: माया मोह के बंधन में मत बांध अम्मा, मैं तो परम आनंद पाना चाहता हूँ।
1: तू छोटा था ना, तब से मैं आस लगाए बैठी हूँ बेटा कि एक दिन मेरी भी चांद से बहू आएगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी।
0: तू रो मत अम्मा, नहीं तो मैं सच्ची में शादी कर लूंगा।
1: हाँ, सच्ची
0: अम्मा, अपने आप को पहचान अम्मा, छोड़ दे मोह माया के बंधन, दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कर।
1: माँ होकर तुझसे मोह न पालू, ये नहीं हो सकता बेटा।
0: आखिर कितने दिनों का साथ है हमारा, जो उगता है वो डूबता भी है, आया है तो जाना भी है, वियोग तो होकर रहता है, इस कटु सत्य को जान अम्मा।
1: कल की सोच कर आज का सुख छोड़ दो बेटा, मैं
0: पल भर के सुख में मत पड़, इसमें पड़कर हम दुखी ही होते हैं।
1: अपनी अम्मा को भरमाने की कोशिश मत कर, शादी कर ले।
0: फिर वही बात अम्मा, सारे रिश्ते नाते पलक झपकते मिट जाते हैं, कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कहा जा सकता, जोगी का जीवन ही मेरी नियति है अम्मा।
1: जोगी बनना चाहता है, पर मैं जाऊंगी तेरे ही कंधों पर बेटा।
0: दुआ कर कि मैं कामयाब हूँ।
1: तेरी ज्ञान की बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, पर माँ हूँ ना, इसलिए मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी बेटा।
0: इस माया ठगनी की गति आज मैं तुझे सुनाता हूँ अम्मा।
1: अच्छा।

0: हमें और इस संसार को किसी ईश्वर या खुदा ने नहीं बनाया।
1: फिर ये मुल्ला, मौलवी और पंडित किसकी इबादत या पूजा करते हैं?
0: ये सब मन के भरमा, उन्हें कुछ भी नहीं पता।
2: अरे भाई, पता तो तब चले जब कुछ हो।
0: वो मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान है इस संसार को चलाने वाला।
2: और वो वहां ऊपर आसमान में रहता है, क्यों कबीर?
0: रैदास, सब कोरी कल्पनाएं जिनके प्रति विश्वास पैदा किया गया है।
1: पूजा पाठ के पाखंड के फंदे में फंसते जाते हैं, है ना साहेब?
2: जानते हैं सब, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता?
0: रैदास, अव्वल तो सब जानते नहीं और विरोध की आवाज को कुचल दिया जाता है।
1: साहेब, निराकार और निर्गुण जैसा कुछ होता है क्या?
0: ऐसे नहीं मानोगे तो निराकार और निर्गुण ईश्वर कहकर मनवाएंगे।
2: परंतु साहेब, फिर उपासना किसकी करें?
0: मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।

0: आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो।
1: क्या कबीर, ये कैसी बात कही?
0: रैदास, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर को पाना है तो वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले।
1: कबीर, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ?
0: अवश्य अवश्य रैदास, सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं और जन्म मरण की भूल भुलैया में भटक रहे हैं।
1: तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी कबीर?
0: अच्छे

0: कर्मों से, तुम्हारा कर्म ही असली पूजा है।
1: अच्छा समझ लो, अपने आप को पहचान लिया, अब फिर उसके आगे
0: तो सब कुछ समेट कर अपने आप में मस्त रहो, ना कुछ कहना और ना कुछ सुनना।
1: भाइयों भाइयों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब, अब आज का सत्संग शुरू होता है।

0: अरे पगले, साधु की कोई जाति नहीं होती।
1: मैंने अपना घर भी नहीं त्यागा है, फिर साधु कैसे हुआ?
0: जिसे छोड़ना था, जैसे मोह, लोभ, अभिमान, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने।
1: गुरुजी, आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा आपके दर्शन करने।
0: कल्याण हो।
1: कौन?
2: अरे साहेब, मैं और रैदास।
1: आओ भाई।
3: साहेब, आपके सत्संगों ने काशी के पंडितों और मुल्लाओं दोनों के बीच कोहराम मचा रखा है।
2: अरे वो दोनों मिलकर लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं।
3: और तो और कबीर, सत्संग में आने से रोकने के लिए लोगों को धमका भी रहे हैं।
2: अरे कबीर, सुना है कोतवाल के साथ लेकर कोई साजिश रची जा रही है।
1: जितनी उनकी समझ है वो उतना ही तो करेंगे।
3: लेकिन कबीर, काशी में वो बहुत ताकतवर हैं और किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।
2: हाँ, हुकूमत भी उनके साथ ही रहेगी।
1: तो उनका मुकाबला हम लोगों को जगाकर करेंगे।
4: मियाँ कोतवाल साहब, आधा वर्ज है।
5: अरे आधा वर्ज है मौलवी साहब, कहिए कैसे तकलीफ की?
4: अरे मियाँ, तकलीफ में तो हम खोट हैं। कबीर ने जीना हराम कर रखा है।
5: अरे तो आप उसका जीना हराम कर दें।
4: अरे तो उसी के लिए तो आपके पास आए हैं।
5: अरे मैं भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ?
4: आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं कोतवाल साहब।
5: अरे देखिए मौलवी साहब, ये मजहब का मामला है।
4: हाँ,
5: इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
4: लाहौल बिलाकुवत एक सिरफिरा मजहब के खिलाफ बातें फैलाकर फसाद करने पे आमादा है और शहर कोतवाल कान में तेल डालकर बैठे देंगे क्या?
5: मौलवी साहब, अदब कायदा ना भूले।
4: बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप उसका मुंह बंद करें।
5: हाँ ठीक है, सोचेंगे हम इस पर।
4: बेहतर होगा। अच्छा, खुदा हाफिज़।

0: शिव शिव शिव शिव। कोतवाल साहब नमस्कार।
1: नमस्कार पंडित जी। अरे कहिए, क्या आपको भी कबीर से तकलीफ है? पर पंडित जी, हमको तो पता चला है कि उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों खासी तादाद में।
0: अरे बरगला दिया है साहब उसने, और अपने आम आदमी को अकल ही कितनी होती है।
1: अरे इसी बात का फायदा तो आप लोग उठाते हो।
0: देखिए गोतबा साहब,
1: अरे छोड़ो पंडित जी। खैर, हमने सुना है कुछ दोहा मोहा कहता फिरता है, मजमा भी लगाता है। वो
0: दोहा नहीं है, वो बर्छी है। बर्छी
1: बर्छी
0: जो सीधे कलेजे में उतरती है हमारे।
1: अच्छा, अब फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें।
0: अरे उसे जेल में डाल दो, ना रहेगा पास और ना बजेगी पासुरी।
1: तो समझिए पंडित जी, आपका काम हो गया।
0: तो हम चले।
1: अरे कोड़े पड़ेंगे तो सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी, समझा? अबे बोल, अरे वहां तो गर्मी चढ़ गई है।
2: छोड़ दो इस गरीब को, शर्म आनी चाहिए आपको एक लाचार पर हाथ उठाते हुए।
3: साहब साहब मुझे बचाइए साहब, साहब
2: इस गरीब का अपराध क्या है?
1: अरे महसूल देने में आनाकानी करता है ये बदमाश।
2: तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सरे रहा पीटेंगे?
1: देखो भाई, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, इसे थाने ले जाकर ही रहूंगा। हाँ चल, क्या बात है? आप हैं कौन?
2: मेरा नाम कबीर है। किस गुनाह के लिए इस गरीब को सताया जा रहा है?
1: सुनो, हम तो हुकूमत का काम कर रहे हैं।
2: गरीबों पर अत्याचार?
1: अरे देखो भाई, हम सिर्फ हुक्म की तामीर कर रहे हैं।
2: गरीब को सताने का हुक्म मिला है क्या आपको?
1: अरे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। सिपाही जरा कबीर को भी गिरफ्तार तो कर लो।
4: कोतवाल साहब, ऐसा गजब न कर बैठिएगा। कबीर को गिरफ्तार करने के पहले एक पल सोचिएगा जरूर।
5: अरे जरा अक्ल से भी काम लीजिए कोतवाल साहब।
1: अरे हाँ भाई, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। चलो ठीक है, सिपाही छोड़ दो इसको, छोड़ो।
3: साहब आपने मेरी जान बचा ली साहब, बहुत मारा साहब।
2: जब

0: अम्मा, अरे अब तू भी कबीर के कवित्त गाती है?
1: अरे आप भी गाया करें हुजूर, बहुत अच्छे कवित्त हैं।
0: अरे चुप, बंद करवा दूंगा समझे कि नहीं।
1: अरे मगर कोतवाल साहब, किस जुर्म में? मैं तो गरीब बुढ़िया हूँ।
0: अरे कबीर के कवित्त गाने के जुर्म में और क्या?
1: अरे हम तो पेट भरने के लिए गाते हैं, ये तो जुलम है ना कोतवाल साहब।
0: अरे अम्मा तो कुछ और गाओ ना।
1: पर हमें तो कभी

0: अरे अरे अरे अम्मा सुन, तो पैर भुगतने के लिए भी तैयार हो जा।
1: अरे अब आप कबीर साहब से ही कहिए, वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। अरे माटी का कुमार से माटी का कुमार।
2: क्यों भाई कोतवाल जी, अब क्या भिखारियों को भी पकड़ने का विचार है?
3: अरे नहीं नहीं कबीर जी, जी जी जी, वो मेरा मतलब है कि
1: आपके कविता के गाने के जुर्म में ये हमें गिरफ्तार करने वाले थे।
2: कोतवाल जी, भजन गाना तो कोई जुर्म नहीं।
4: साहेब हम सब इसका विरोध करेंगे।
5: लगता है रेदास, हुकूमत भी हमारे सत्संग से दहशत में आ गई है।
4: हुकूमत से डरकर सत्संग ना करें, ये हो नहीं सकता।
2: ठीक कहा रैदास, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे।
3: अरे या कबीर, अरे हम कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं।

0: अपना घर कहते हैं वो यहीं छूट जाता है।
1: मरने पर तो ये शरीर यहीं छूट जाता है, फिर इसे हम अपना क्यों कहते हैं?
0: यही तो हमारा अज्ञान है।
2: इसका मतलब ये कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं?
0: हाँ रैदास, यही सच है। किंतु एक चीज हमसे कभी अलग नहीं होती।
1: वो कौन सी चीज है कबीर?
0: हमारी आत्मा, वो ही परमात्मा है।
2: फिर ऋषि मुनि किसकी खोज में कठोर तपस्या करते रहते हैं?
0: जो पहले से उनके भीतर है रैदास, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। अज्ञानवश उसे ही पाने के लिए कर्मकांड करते हैं।

0: मान।
1: अरे भैया, अपने कबीर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
2: हाँ माँ हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच में वो तो समान रूप से लोकप्रिय हैं।
3: अरे अम्मा, उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, पर जीवन में यात्राएं भी काफी की। काशी में अपनी मंडली के साथ सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे वे।
1: अरे भैया, अपने कबीर ने जीवन भर धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और पाखंड के खिलाफ जन चेतना जगाने का कार्य किया है। और भैया, सुनो।
4: हाँ भैया,
1: और सुना है कि कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे।

0: क्या?
1: अम्मा मैंने भी सुना है, इस बात से पंडितों में सनसनी फैल गई है।
2: लेकिन जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
1: नहीं अम्मा।
2: लेकिन भैया काशी में छोटे तबके के लोग और शोषितजन इस समाचार से बहुत दुखी हैं।
1: हाँ अम्मा, हम सबका मसीहा जा रहा है।
2: सच कहा भैया।
1: हाँ अम्मा, इसका मतलब क्या होता है?
2: अरे मगहर यानी इस नाम का गांव नहीं बल्कि ज्ञान का मार्ग।
1: अच्छा।
2: अपने कबीर कहते हैं
1: हाँ।
2: मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान।
1: वाह, सही कहा अम्मा, सही कहा।
3: अरे अम्मा अम्मा अम्मा, अपने कबीर नहीं रहे, कबीर का देहांत हो गया।
2: अरे बेटा क्या कर रहे हो?

0: शाम को चाहिए, शाम को चाहिए। देखिए भाइयों, अब कबीर को, कबीर को अच्छी तरह रहला करके अब उसके अंतिम संस्कार के लिए अपन ले चलते हैं।
1: अरे लाहौल मिला को कैसी बात कर रहे हो, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा।

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओ नकली दाढ़ी वाले तू गुस्सा मत कर, हमें भी जगह दे दे खुदा से जरा डर, खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, तेरा

खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, हम पर भी जरा कर दो इनायत की नजर। खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, जो किसी

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा

0: डर आया था स्ट्रेस, जो आज जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्जाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू नो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्जाम्स का उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं।
1: जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है मैं उसको अपने तक ही रखती, यू नो मेरे पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ, लेकिन जब घर में बच्चे का एग्जाम है वो एक घर में वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज्यादा ऑब्वियस दिखता है कि क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेंबर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का टेंथ है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज्यादा चली जाती है। बहुत सारे सी अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल ऑल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्जाम है घर के अंदर, इसलिए भी एग्जाम एक ऐसा वो है कि यू नो पूरा घर पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज स्ट्रेस। बाकी सब में देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably you know don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally,
0: or in fact wo hit to kar raha hoga lekin wo different you know direct nahi kar raha hai, is par hum baat karenge। lekin isme jo kal baat jo pichli kadi mein nikal gayi thi wo tha wo formula, you know agar hum stress ki baat karte hain to stress is equal to pressure upon my inner strength, you know, so मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
1: इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा, और पिछले
1: ग्रेडिंग सिस्टम को या ग्रेडिंग सिस्टम
0: में हुआ भी है चेंज,
1: सो यू सी फोकस सारा किस पर है, विच इज ओके, लेट्स डू वट एवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूं तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूं। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा देते। तो राजयोग जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा, बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना।
0: इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटिसिपेटिंग, यू नो कि क्या क्या हो सकता है।
1: नो नो, आप और फियर क्रिएट करोगे वो
0: अपने अंदर, यू नो लाइक अपने अंदर।
1: नो सी अगेन, ये कैसे वर्क नहीं करेगा, जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब विच इज ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक। सो हम सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे फेस करना है, मुझे सिर्फ स्ट्रांग रहना है और बहुत स्ट्रांग बनना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर वो चाहे
0: तभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया।
1: इट्स नॉट अर्थक्वेक मैनेजमेंट, इट्स नॉट, इट इज डिजास्टर। एनी डिजास्टर इट हिट्स यू, यू शुड बी एबल टू फेस इट। तो उसमें भी

0: एस्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है. तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियां वही है, कॉम्पिटिशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जाए.
1: तो शिवानी, यहाँ एक मेल हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ इसी को लेकर, कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीजें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है, तो क्या वो मेरा फियर भी पहुंच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुंचने दूं, बच्चे तक? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए, तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल इट सेड कि मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी लेकिन मैं एबनॉर्मल थी.
0: हम रिलैक्स करने के लिए इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है. तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करते, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर. सी, हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें? हम किस चीज का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक्सेसफुल हुए ये, फिर हमने उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को देखते जाएं कि हमने सक्सेस की डेफिनेशन किस पर रखी थी, 95% मार्क्स. तो देन वी आर ट्राइंग टू से अगर 95 नहीं आए तो ही इज अ फेलियर. एंड ये हम एंटिसिपेट कर करके हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम फियर क्रिएट करेंगे वो मुझे इमोशनली ड्रेन आउट करता, मेरे बच्चे को बहुत इमोशनली वीक करता है. व्हाट वी नॉट रियलाइजिंग, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, राइट फ्रॉम वो जो स्कूल एडमिशन एज टू वट एवर 10th स्टैंडर्ड. जैसे एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है. अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रांग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉरपोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज लुक्ड फॉर. गो 20 इयर्स बैक एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है. क्यों? देयर इज अ शिफ्ट ना, कि ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट वो लोग जो स्टेबल है. तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा. हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है. हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते. अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन वट एवर हैपन्स आई एम फाइन विद इट, जितने भी आपके मार्क्स आए आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा दो.
1: आई डोंट थिंक देयर इज एनी पेरेंट जो ये नहीं कहता होगा.
0: नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आई विल बी फाइन विद इट, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा.
1: सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी. मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो. और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करें,
0: सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी, सी बोल वन थिंग इज कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको रिलैक्स करो. तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, लेकिन क्या हमारी सोच वही है? हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हुज इन द 12th स्टैंडर्ड. तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्जाम. तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूं ना, تو میرے فادر شروع ہو جاتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو اینڈ شی سینگ اب میں ایکچولی ایک ڈپریشن کی اسٹیج ایکسپیرئنس کر رہی

0: कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन सुन के। हाँ, शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता, कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे। तो आई जस्ट थॉट कि वी विल मीट हर फादर, तो उनके फादर से मिले, तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत यू नो अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट, ही से तो आपका क्या मतलब है, नहीं बोलो नहीं बोलो उसको पढ़ने के लिए, छह महीने में फिनिश हो जाएगा, ये छह महीना है मेरे को सिर्फ
1: आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट,
0: ये मेरे पास सिर्फ छह महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का। अगर ये छह महीना मैंने नहीं बोला नहीं करवाया एंड इफ शी डजंट क्लियर देन व्हाट, बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट, बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था, आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट, कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए।
1: प्रेशर यू नो, अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इफ यू आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस इशू इज की डू द पेरेंट्स और टीचर्स रियलाइज की हो क्या गया है इन सिर्फ दो सालों में, हम उन्हें मशीन बना देते हैं। आई मेट अ मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ, उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है, 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए, अभी 12th में तो वो बाद में आएगा, वहां पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुंचता है, 7:30-8 बजे वापस आता है, हर रोज का उसका स्केड्यूल है। उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा, सैटरडे संडे वहां जाना होता है। तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पे लगाया। आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज व्हाट माय यू नो सन वांटेड, बट डू वी रियलाइज, हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या?
0: True.
1: Why do we get under this pressure also?
0: Of course, अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, दैट ऑफकोर्स ईच वन विल डिसाइड फॉर themselves. उसके लिए क्या एफर्ट करना है वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन उस चीज के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें, क्योंकि जितना ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक,
1: शिवानी एक्चुअली, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं, आई थिंक टूडे वी रियली नीड टू टेक अ पॉज। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उसके उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है, जो जिसपे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफ स्टाइल हो चुका होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वट इज गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा?
0: नो, सी व्हाट हैपेंस, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है, लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि एक साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक यू नो जो वर्डिंग्स हैं वो है इस एक साल पर तुम्हारी पूरी जीवन यू नो निर्भर करती है, हमने ये नहीं सोचा हमारी जिंदगी बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, बट चलो कोई बात नहीं, इवन देन इफ दिस वन ईयर हैज एवरीथिंग, put in your best whatever you want to do, but then equally take care. See, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकली तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर आर सेल्व्स, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर आर सेल्व्स, क्योंकि जितना ज्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं कि जहां मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो अच्छा होना ही होना है, रिजल्ट अच्छा ही होता है, लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहां रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो हर दिन दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देयर इज जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं, वो अटैचमेंट वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता, फिर बाय चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी.
1: नहीं, यू नो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन दो सालों में ड्रेन्ड आउट होते हैं.
0: ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो. ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उसे. एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट. रोज मेहनत करनी है, रोज पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फियरफुल थॉट्स. क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा. यू नो इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाले थॉट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में. अगर एक स्टूडेंट रोज सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट्स से शुरू करे, मेहनत इज नॉट डैमेजिंग. मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं. लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है. उस एनर्जी को आप किस पर्पज के लिए फोकस
1: पकड़ के आप चल रहे हो, ना, वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है.
0: तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था. जरूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ. दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, वांटेड और एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट इन क्लास. She committed suicide. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. Aap class mein second aane ke liye suicide commit jis bacche ne kiya hai, uski mental state ka hum imagine kar sakte ki wo first aane ke idea se itna zyada attached the ki wo second ko face karne ki unke andar ताकत ही नहीं.
1: और वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुके हो.
0: ओवर, इट वाज जस्ट ओवर. तो यहर द चाइल्ड प्लस द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वर्क हार्ड, स्टडी, फोकस, एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट इट्स ओके, इट्स ओके. क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है. लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो. क्योंकि क्या होता है, जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है. यू नो फॉर अ चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग. जब मुझे दिखाई देता कि मेरे ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, यू नो इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ. यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है. वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए. मेरी हैप्पीनेस से ज्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है. ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है. पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे. लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर, ये जो प्रेशर्स है ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं. एंड देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस अप विद इट. एंड देन वी कम अक्रॉस डिप्रेशन, स्टूडेंट्स गोइंग टू डिप्रेशन. नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन अनहर्ड ऑफ, स्टूडेंट लाइफ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन अनहर्ड ऑफ. लेकिन आज क्यों? क्योंकि प्रेशर्स बहुत बढ़ते जा रहे एंड कोपिंग स्किल कोई सिखा नहीं रहा. कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें. कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है. सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन
1: जब तक नहीं. अगेन एंड अनदर थिंग विच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम हमारा कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा. इवन ऑफिस में, मतलब अगर मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कंपटीशन नहीं क्रिएट करूंगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस.
0: अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर. फियर, और हम फियर को यूज कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए. फियर इज अ मोटिवेटर. तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी. तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए. इट विल नेवर हैपन. कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप. जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, यू नो, बहुत ऐसे आप देखेंगे कि
1: सबकी,
0: यू नो, जस्ट थिंग्स टू, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, वो कहेंगे गलतियां तो निकालनी चाहिए, क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो ये अपने आप को

0: और भी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर इनको अप्रिशिएट ही करते रहे ना सारा दिन, तो अप्रिशिएट करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस, आई मीन दिस इज थॉट पैटर्न, कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो फिर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, ये सोचेंगे वी हैव रीच्ड आवर बेस्ट।
1: दैट्स व्हाट वी डू विद किड्स आल्सो, यू नो, वी स्टॉप्ड अप्रिशिएटिंग देम, बिकॉज अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे।
0: What we have to understand is energy ka khel hai sir. Appreciate karoge wo positive energy hai. Positive energy kabhi bhi kisi ko aise nahi kar sakti hai. Positive energy hamesha empower karegi. And critical ho jayenge baat baat mein, aur wo bhi is intention se criticize karenge na, to apne aap wo aur zyada mehnat karega, kyunki hum apne boss ki ya apne parents ki expectations ko beat karna chahte hain, to agar wo hamare kaam mein galtiyan nikalenge to hum motivate ho jate hain, ye belief system hai ki ye fir motivate honge aur mehnat karne ke liye. Agar boss ne aake juniors ko praise kar diya, fir to wo bahut acha, boss khush ho gaya to chalo, what effort do I have to put? Very what to say, call it wrong or what, this belief system
1: doesn't work. Actually, it is not working.
0: It doesn't work. Kyunki jahan koi mehnat kar raha hai aur aap jaakar us par critical ho jate hain, aap turant uski energy ko, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपके क्रिटिसिज्म के साथ यू नो इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए, लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी से,
1: तो हम चाहते नहीं हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हो।
0: हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करे, बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट। आपको फीडबैक देना है, यस, इट इज नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज परफेक्ट, लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है। आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो, और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे। हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है, जो काम करने वाला है ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा। हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर। काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा। जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रही होती हूँ ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियां होने लगती हैं, एंड फिर वो गलतियां ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई। लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं, और उनका आना ही, खड़े होना ही, और उस यू नो इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम। एंड यू नो मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉयज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा।
1: लेकिन एक बात, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेज करता हूं या अप्रिशिएट करता हूं किसी के साथ भी अगर हमने, तो यू नो इनका सर चढ़ जाता है। तो ये शब्द बहुत बार यूज किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बाहर हो, या यू नो लाइक, और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे, जरा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे।
0: चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं सीनियर हूं तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना, कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे। अच्छा मैं सीनियर हूं, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे, क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता?
1: नहीं,
0: कभी भी नहीं। एंड
1: मैं तो अच्छा था,
0: सारे ही अच्छे होते हैं ना, नहीं सारे ही वैसा करते, वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं। एवरी वन लाइक्स लव, एवरी वन लाइक्स सपोर्ट, एवरी वन लाइक्स कम्पैशन। कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा? तो ये कई बार, हाँ ये होता, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे, बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी जीते जीते कितनी बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे किसी ने कोई गलती की है तो न्याय होना चाहिए, उसे पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन पनिशमेंट कौन देगा? क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ऐसे ही कई एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी की, वो बातें जिन्हें आज तक हम स्वीकारते चले आ रहे थे कि यही नॉर्मल है, उन्हें एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने बात ये की थी कि जब हम हर्ट हो जाते हैं तब कई बार मन करता है कि पहला रिएक्शन ये होता है कि आई वॉन्ट टू गिव बैक, और वही रिवेंज का, चाहे वो छोटे से छोटा एस्पेक्ट ले लें या क्रिमिनल जब बनते हैं तब भी वो एस्पेक्ट। और फिर बात आ जाती है कि पनिशमेंट की। न्याय ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगेन छोटे से छोटा गलती, छोटी से छोटी गलती हो या फिर बड़े से बड़ा क्राइम, सजा बहुत जरूरी है। लेकिन सजा का एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट हमने पिछली बार बात की थी। जहां तक क्राइम की बात है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अब ये सवाल ये है कि अगर क्राइम घटता है, अगर क्रिमिनल जिसे कहते हैं अपराधी ने अपराध किया है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ?
1: क्रिमिनल शब्द ही, जैसे हमने देखा कि वो हम किसको देते हैं, हम सब कहीं ना कहीं उस तरह से सोचते हैं।

0: ट्रीटमेंट है उसको और बढ़ने दे, उनको हील करें. द सो कॉल्ड प्रिजन एरिया कैन बी मोर लाइक अ काउंसलिंग सेंटर, इट कैन बी मोर लाइक अ हीलिंग सेंटर, जहां क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ करते, बिकॉज दैट्स नॉट ओनली फॉर देम, इट्स फॉर ईच वन ऑफ अस. लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो बिटरनेस से नहीं लेकिन हील्ड होकर बाहर.
1: एक्चुअली उनके साथ तो बहुत ही बुरा ना सिर्फ सलूक किया जाता है, एटीट्यूड में, हमारी पूरी सोच में ही, जहां अपराधी की बात आती है, जहां जेल की बात आती है, वहां हमें घृणा, एक घृणा से भर जाते हैं हम.
0: ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमारा भाव क्या है, पनिशमेंट जब हम दे रहे हैं उसका भाव क्या है, सुधार लाना. पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति फिर से वो चीज ना करे, लेकिन उसके लिए हम कोई मेजर नहीं उठाते, सिर्फ उसको दुनिया से दूर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने रख दिया, उससे वो कर्म फिर से नहीं करेगा, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि अंदर की हीलिंग तो हुई नहीं, उसने उसके परिवर्तन के लिए हमने कोई स्टेप उठाया नहीं. सो दैट इज समथिंग यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड उसके लिए चाहिए कि जहां पे भी सब है वहां पे देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग. एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स बट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ईच वन ऑफ अस. जो आज गलतियां अगर हमारे से होती हैं, तो जो हमारे साथ हैं उनकी ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ पनिश ना करें या सिर्फ रिवेंज ना ले. वो रॉन्ग मेथड क्यों हो जाता है? बिकॉज वो हमारे अंदर की बिटरनेस को और बढ़ा देता है. हमें इवन ऑफिस में, आपने ये गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा. इट्स ऑलवेज एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट. उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? बिटरनेस और बढ़ती जा रही है, दूरियां और बढ़ती जा रही है. तो कहीं ना कहीं जो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट. कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो कन्वर्जन लिया और यू नो कि ठीक है ये पनिशमेंट दे दी, ये हमने एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया,
1: उससे और रिजेंटमेंट कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो कंटिन्यू सिमर रहता है.
0: हाँ, तो अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुस्से को और ये सारा जो अंदर बिटरनेस है इसको खत्म करना. बट एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है. यू नो ऑफिस में भी कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन. डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स यू वॉन्ट टू डिसिप्लिन द पर्सन. हैव यू रियली सक्सीडेड?
1: वही इसलिए मान लिया हमने कि भय से डिसिप्लिन हो जाता है. अगेन दिस इज अ मेजर मेजर बिलीफ विद विच वी आर वर्किंग, कि भय से ही डिसिप्लिन हो सकता है, भय जो है वो काम करवा सकता है, भय से आप कोई क्राइम भी नहीं करेंगे. एक और मुद्दा जो उठता है वो है कि एक बार माफी वाला फैक्टर जो है, कि एक बार मिस्टेक को आप माफ कर सकते हैं. इवन ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है 99 टाइम्स माफ कर देते थे, 100वीं बार जो था ही सेज दैट इट हैज टू बी पनिश्ड. सो बार बार जब रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक हैपन्स, देन
0: बार बार रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक इज हैपनिंग बिकॉज नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट पर्सन. आपको कहीं ना कहीं तो किसी को समय निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, किसी को बैठकर चेक करना पड़ेगा कि व्हाई इज दैट मिस्टेक हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ डीप रूटेड संस्कार. मिस्टेक वो जान पूछ के नहीं कर रहा है, वो उससे होती जा रही है. हो सकता है कई बार आप देखो, हम अपने आप से नहीं होता. हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करना, फिर भी करते हैं. हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि हर्ट नहीं होना, फिर भी करते हैं. तो 99 बार करते हैं या उससे ज्यादा बार करते हैं? तो हो रहा है.
1: सुश्री शिवानी, अगर बात यही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो काम कर नहीं पा रहे, अब उनके साथ काम, और उनके साथ मतलब कि हमने उन्हें बिल्कुल एक उस कैटेगरी में डाल दिया, खासकर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करें, उनके रिफॉर्म्स की या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हम कभी सोच ही नहीं पाते. और इसी तरह से जुवेनाइल क्राइम जो है, वो बच्चे जो क्राइम करके रिफॉर्म हाउसेस में जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो यू नो.
0: आप देखो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था शूट आउट का स्कूल में, जो गुड़गांव में हुआ, द होल स्कूल मतलब जितने बच्चों ने उस इंसिडेंट को विटनेस किया उस टाइम पर, दे वेंट इन टू अ डिप्रेशन. अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो शूट आउट को देखा, उनके लिए बहुत काउंसलिंग हुई, साइकाइट्रिस्ट आए, लेकिन उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हुआ जिसने एक्चुअली वो मर्डर किया था, क्योंकि उस बच्चे को अब एक बच्चा ना देखकर
1: एक क्रिमिनल
0: कर दिया. सब बच्चों के लिए हुआ, और सबसे ज्यादा किसको जरूरत थी? सबसे ज्यादा उस बच्चे को जरूरत थी. उस बच्चे के लिए नहीं कुछ किया गया.
1: व्हाई इज इट, व्हाई डू वी हैव हेट्रेड?
0: हेट्रेड आ गई ना, कंपैशन खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, क्योंकि हमने टैग कर दिया दे आर बैड पीपल. जैसे ही हमने, क्योंकि हम गुड और बैड के लेबल्स लगा देते हैं बहुत जल्दी, तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि द एक्शन इज डिफरेंट एंड द पर्सन इज डिफरेंट. एक्शन गलत किया है, एब्सोल्युटली कर्म गलत किया है, लेकिन हमने बैड

0: पीपल की कैटेगरी में उनको डाल दिया, पर उनको काउंसलिंग या हीलिंग की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो
1: है ही खराब,
0: तो खराब लोग हैं। अब जब बहुत सारे वो बच्चों से बात की गई तो ये पता चला कि क्योंकि जैसे बुली सिस्टम या रैगिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम लोग तो कितनी बार जैसे मन ही मन ये सोचते हैं कि मैं तो मार दूं इसको, या हम आपस में भी बात करते हैं मेरा बस चले कि मैं तो मार दूं इसको। यू नो, हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं अगर किसी से हमें बहुत नफरत है या बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं मार दूं,
1: आई वांट टू किल हिम, आई वांट हिम डेड,
0: द थॉट इज देयर विद सो मेनी ऑफ अस। तो इतने सारे बच्चों ने कहा कि हमारे अंदर ये थॉट आती है। अब किसी बच्चे ने कन्वर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह है, और इस समय उससे शायद सबसे ज्यादा, क्योंकि द पेन दैट ही विल बी गोइंग थ्रू, सो पनिशमेंट इज नॉट यू नो जस्ट दैट सेपरेटिंग देम फ्रॉम एवरीबडी एंड ही विल रिफॉर्म,
1: लोनलीनेस जो उसको,
0: वॉट विल बी द फ्यूचर ऑफ दैट चाइल्ड। तो दैट समवेयर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स, judiciary system, everybody needs to start working on that little bit, ki counseling, healing, ye bahut important hai sath mein. Aap action, jo judiciary action hai, wo to lenge, lekin ek bar wo aapke paas aa gaye, fir aapko unke sath kya karna hai, wo bahut important ho jata. Reform karne ke liye actually kya chahiye hota hai, jaise aapne kaha, ek to motivation ki hum apne aap ko hi nahi aaj reform kar pa rahe, ya hum apne aap ko hi nahi heal kar pa rahe, to hum auron ke liye kahan se karenge, aur dusra time, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
1: एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे ऑलवेज फील लाइक दिस,
0: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
1: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस ये अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं।
0: एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग, लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया,
1: बिकॉज आई एम्पथाइज विद दैट विक्टिम,
0: या बट आई कुड फील द पेन, ना, मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर, रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूं। क्योंकि जैसे क्रिमिनल

0: देखा. देयर यू गो.
1: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसे देखा. बट आई थिंक
0: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी. और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ. लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है. वो स्मृति वापस लानी है और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी. क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दे, अपने आप को वो एम्पावर कर देते हैं. हमें नहीं करना है. सो कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
1: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
0: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं. और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विद इन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
1: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉक किया होता है.
0: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहां एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है. दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
1: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहां अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, ये सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहां शायद वो पनिशमेंट की वजह.
0: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं. क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
1: आई डोंट नो, सी दैट्स द बिगेस्ट थिंग. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड से.
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. सो नाउ यू कैन नॉट हैव हेट्रेड, यू विल हैव कंपैशन. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई।

0: बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, हमारा हिंद भी फूले फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले। हमें दुख भोगना, लेकिन हमारी नस्ल सुख पाए, ये दिल में ठान लो अपने ए हिंदी मर्द जन पहले। भारत के ऐसे स्वर्णिम भविष्य के संकल्प को जीने वाले भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर 1876 को पंजाब के करियाला गांव में भाई ताराचंद के घर पर हुआ। पिता ताराचंद सेना में कार्य करते थे। लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर वाले पिता ताराचंद के सभी गुण भाई परमानंद को मिले। परमानंद बचपन से ही मेधावी थे और गणित उनका प्रिय विषय था। चकवाल में अंग्रेजी स्कूल स्थापित होने के साथ ही वहां के जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो गए। भाई परमानंद भी इसे अंगीकार कर उसमें रम गए। उनकी प्रतिभा के कारण सभी अध्यापकों का ध्यान उन पर रहा करता था। उनके गांव से चकवाल लगभग 8 किलोमीटर पर था। ये सभी छात्र वहां छात्रावास में रहते तथा अध्ययन करते। ये वो समय था जब आर्य समाज का प्रचार स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात संतप्त भाई जी आर्य समाज की विचारधारा के साथ जुड़ गए। धार्मिक आडंबर और मिथ्या धारणाओं पर आधारित विचार उन्हें रास नहीं आते थे। स्वामी दयानंद ने देश में मजहबी मतभेदों को मिटाने का बहुत यत्न किया। भाई परमानंद ने इसी विचार को अपना जीवन सूत्र बना लिया। 1901 में भाई परमानंद ने लाहौर के दयानंद कॉलेज में अपना अध्ययन शुरू किया और कॉलेज में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। भाई परमानंद को दुनिया देखने का बहुत शौक था और वो पैदल जम्मू से श्रीनगर और अमरनाथ होते हुए वापस लौटे। 2 महीने के इस प्रवास में उन्होंने कुल 15 रुपए खर्च किए। यही सादगी उनके जीवन का आधार बनी। फिर बाद में हरिद्वार, दिल्ली और राजस्थान आदि कई जगह वे घूमकर देश की संस्कृति से अपने आप को परिचित कराते रहे। पंजाब विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वे लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में पढ़ाने लगे। उनके भीतर त्याग की भावना आरंभ से ही विद्यमान थी और समाज की सेवा उनके जीवन का आदर्श बना रहा। वे अपने छात्रों का नैतिक चरित्र सुधारने और उन्हें राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वीर पुरुषों, महापुरुषों और शहीदों की जीवन गाथाएं सुनाया करते थे।

दयानंद कॉलेज में कार्य करते हुए भाई परमानंद को 3 वर्ष हो गए। इन वर्षों में पंजाब के लगभग सभी कस्बों में उन्होंने भारतीय संस्कृति और देशभक्ति का प्रचार किया। 1905 में पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों ने कॉलेज के प्रधान आचार्य हंसराज से प्रार्थना की कि कोई धर्मनिष्ठ विद्वान वहां प्रचार के लिए भेजा जाए। प्राचार्य जी ने आर्य समाज के पहले मिशनरी के रूप में भाई परमानंद को दक्षिण अफ्रीका भेजा। डर्बन उतरकर कई भाषण देने के पश्चात भाई जी नाटाल की राजधानी पीटर मैरिट्सबर्ग पहुंचे, जहां असंख्य लोग उनका

आश्रम सुनने आए। यहां तमिल भाषी भारतीयों के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला और इसी प्रकार कई अन्य संस्थाएं भी उनके द्वारा खड़ी की गईं। यहां से वे यात्रा करते हुए जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भी उपस्थित थे। धर्म के विषय में परमानंद जी के विशुद्ध सात्विक और तपहपूत विचारों ने गांधी जी पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने भाई जी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वो लगभग एक महीने गांधी जी के साथ रहे। अफ्रीका में अपने 5 महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में सबके मन में अपना स्थान बना लिया। उन दिनों लाला लाजपत राय लंदन में थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर परमानंद जी को अफ्रीका से लंदन बुलवा लिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा भी लंदन में ही थे, जो ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाया करते थे। श्याम जी वर्मा भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले युवकों को एकत्रित करने और प्रेरित करने के प्रयास में जुटे हुए थे। 4 मई सन 1906 को होम रूल लीग की ओर से लंदन में श्याम जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें विट्ठल भाई पटेल और भाई परमानंद के साथ कई लोग शामिल हुए। ये लोग भारत में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने बंगाल में एक जुलूस में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। इसके बाद परमानंद जी ने अमेरिका, पेरिस, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस आदि कई देशों का दौरा कर अपना प्रचार कार्य जारी रखा। गदर पार्टी से अपने संपर्कों के कारण उन्हें राजद्रोही मान लिया गया था। 1915 में गदर द्रोह में भाग लेने के कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन काला पानी की सजा में बदल दी गई और वे अंडमान की जेल में भेज दिए गए।

अंडमान की जेल में अपने अनुभवों के बारे में विचार करते हुए उन्होंने लिखा कि अंडमान में दंड का केवल एक उद्देश्य समझा जाता था, वो था कैदियों से काम लेना और जेल के अधिकारियों की उन्नति इसी बात पर निर्भर करती थी। 1200-1300 कैदियों के श्रम से जो आय होती थी उससे वहां अधिकारियों को वेतन मिलता था और वहां की स्वतंत्र आबादी का गुजारा होता था। अंडमान में कई महीने बीत जाने पर एक दिन एक कैदी मेरे पास आधा प्याज का टुकड़ा लेकर आया। उसका प्रेम देखते हुए मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन मुझे लगा कि प्रकृति ने ये कितनी छोटी छोटी चीज हमारे लिए पैदा की है, इसका मूल्य हमें तभी पता लगता है जब हम उससे वंचित हो जाते हैं। जेल में गुड़, शक्कर, तेल और प्याज जैसी छोटी छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती थीं। और तब मेरे मन में विचार आया कि किसी चीज की आवश्यकता ही न रखने से आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और लंदन टाइम्स का साप्ताहिक संस्करण राजनीतिक कैदियों को दिया जाने लगा। इससे देश और दुनिया में हो रहे परिवर्तनों की उन्हें सूचना मिलने लगी। भारत में स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां तेज हो गई थीं। 19 नवंबर 1919 को यंग इंडिया में गांधी जी ने संपादक के रूप में लिखा कि 1915 में भाई जी पर जो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया वो जिस गवाही पर आधारित था वो अविश्वसनीय झूठी कहानी थी। भाई परमानंद ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की राष्ट्रभक्ति के आदर्श को ऊंचा रखते हुए देश की सेवा की। किसी को भी उनके अपराध का विश्वास नहीं और जो अभियोग उन पर लगाया है उस पर पुनर्विचार कर उन्हें मुक्त

करने की आवश्यकता है। 20 अप्रैल 1920 को भाई परमानंद जेल से मुक्त होकर अपने घर लौटे तथा लाहौर में गांधी जी और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर कौमी महाविद्यालय की स्थापना की। नवयुवकों को भारत की स्वतंत्रता के लिए वे आजीवन प्रेरित करते रहे। भाई परमानंद अक्सर कहा करते थे, जिंदगी अपनी फसाना है जमाने के लिए, गुम हुए हैं हम जहां में याद आने के लिए, मर गए लेकिन जमीन पे नाम पैदा कर गए, जान जाने के लिए है मौत आने के लिए। ऐसे महान क्रांतिकारी भाई परमानंद जी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप माइंड के ऊपर बात कर रही थी, थॉट्स पे बात कर रही थी, और थॉट कितनी पावरफुल है, कैसे ट्रेवल करती है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च किया कुछ साइंटिस्ट ने हार्वर्ड में। साइंटिस्ट रिसेंटली कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर मीडिएटेड ब्रेन टू ब्रेन टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट इन विच अ पर्सन इन मुंबई बॉम्बे सेड होला and hello to three people in France. The greetings were not spoken, not typed or texted. The communication took place between the brains of a set of study subjects. The team, whose members belong to Harvard Medical School, seem all set to script a new chapter in communication. And that is all इन द माइंड।
2: सी, हम तो अवेकनिंग में हर समय ये बात करते हैं, साइंटिफिक भी एविडेंस मिल गया आपको।
1: ऑल इन द माइंड इसका टाइटल है।
2: परमात्मा हमें बार बार एक एक थॉट का कितना महत्व समझाते हैं कि एक एक थॉट आपकी आप पर भी प्रभाव डालेगी और दूसरी आत्मा तक पहुंचेगी। अब हम ये बात कितनी बार सुनते हैं, मतलब जिस दिन से फर्स्ट डे पे सेंटर पे आते हैं तब से सुनते हैं, कहीं कोई कोटेशंस पढ़ते हैं उस पे पढ़ते हैं, कोई किताब आज उठा लो उस पे पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो सारा दिन में उस बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में कोई बात कहता है, कोई सत्संग में कहता है, कोई मंदिर में कहता है, तो वो इतनी इफेक्ट नहीं करती जो कोई साइंटिफिक।
2: उसके पीछे ये रीजन है कि साइंटिफिक क्यों हमें एविडेंस इमीडिएटली क्लिक करती है, क्योंकि साइंटिफिक चीज दिखती है, यू नो, इट्स अ फिजिकल प्रूफ। जैसे इसमें इन्होंने कहा दे प्रूव्ड इट। क्या प्रूफ किया कि मुंबई में एक व्यक्ति है, फ्रांस में दो लोग बैठे हैं, यहां से किसी ने एक थॉट क्रिएट की, ना लिखी ना बोली, और वहां उन लोगों ने फ्रांस में वो थॉट को कैच किया। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है, मतलब वो दिख जाता है ना प्रूफ के, यहां किसी ने थॉट क्रिएट की, वहां उन तीन लोगों ने कैच की वो थॉट और बता दिया कि ये
1: बोला हेलो होला।
2: हाँ,
1: तो उन्होंने बोला हेलो होला,
2: दैट्स इट, एंड इट

0: not written, it was not texted, it was not spoken. तो जब हमें scientific proof मिलता है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है ना उस चीज का. स्पिरिचुअलिटी में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है अनुभव का, और साइंस में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है फिजिकल कोई चीज. यही चीजें हम सब ने अनुभव भी की है. हम में से कोई नहीं होगा जिसने ये अनुभव नहीं किया होगा.
1: ये भी सही है.
0: किया है कि नहीं अनुभव? अब ये कोई
1: कितनी बार फोन बोलते टेलीपैथी देखो. हाँ. मैं तो याद ही कर रही थी तेरे को,
0: बस
1: तू तेरा फोन आ गया.
0: हमारे मन में कोई बात ही थी, सामने वाले ने कह दिया.
1: इकट्ठे भी बोलते,
0: इकट्ठे भी बोल दिया. जो एकदम से रैंडम दो लोग वही बात सोच रहे हैं, ये सारी चीजें किसने अनुभव नहीं की है? ये हम सब ने अनुभव की है. कोई थोड़ा कम अनुभव करते हैं, कोई ज्यादा अनुभव करते हैं. अनुभव तो हरेक कर रहा है ना. जब आपने कहा किसी ने फोन किया और हम उनको याद ही कर रहे थे, तो इसका मतलब उस क्षण क्या हुआ था?
1: वो फोन डायल कर रहा था.
0: हाँ.
1: तो उसकी थॉट मेरे पास आ गई कि आई वांट टू टॉक टू यू,
0: विच मीन्स उस क्षण क्या हुआ था? थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन ही तो था
1: ना?
0: हाँ. हाँ. तो ये कोई आज की चीज तो है नहीं, ये तो कोई नई बात है नहीं. ये तो हमने हमेशा अनुभव किए, हरेक ने अनुभव किए कि हमने थॉट क्रिएट किया, दूसरे ने कैच किया, दूसरे को भी वही थॉट आया. जो इसको हम हमेशा कहते थे टेलीपैथी मीन्स थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन. अब सिर्फ ये क्या हुआ, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया. लेकिन साइंस से भी बड़ी चीज अनुभव होती है.
1: कई बार स्टेज पे मैं कभी कुछ बोलते रहता हूँ ना, तो मेरी फैमिली सोचती आई होप ही सेज दिस, आई होप ही सेज दिस. ये वाली लाइन अगर यहाँ बोले ये अनुभव बड़ा अच्छा था.
0: yes.
1: और वो मेरे मन में कहीं से आ जाता और बोल देते.
0: बस
1: फिर जब बाद में बोलते हैं, अरे हम तो सोच ही रहे थे कि आप ये बताएं.
0: हम लोग हमेशा कम्युनिकेट कैसे करना चाहते हैं कि हम फटाफट इनको उठ के बता कर आए, चिट्ठी लिख कर दे दे. सी दिस इज द कम्युनिकेशन वी वॉन्ट टू यूज बिकॉज वी फील दिस ऑलवेज वर्क्स. अगर वो आपको चिट्ठी लिख कर भेज दे या धीरे से आके कान में बोल दे, तो उनको 100% गारंटी है कि ये तो मेरा मैसेज कन्वे हो गया. लेकिन जिस समय हम वो नहीं कर सकते हैं, तो उस समय आत्मा ज्यादा स्ट्रांग थॉट क्रिएट करती है. बता भी नहीं सकते कैसे मैसेज पहुंच जाए, लेकिन ये होना ही चाहिए. ये इतनी स्ट्रांग थॉट गई और आपने कहा बिना कहे, बिना कोई चिट्ठी पढ़े आपने वो थॉट कैच कर ली और आपने वो बोला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन,
1: बिना अपनी वाइफ की तरफ देखे, आई टू आई कॉन्टेक्ट भी नहीं, इशारा भी नहीं,
0: व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस एक्सपेरिमेंट? क्या फर्क है? ये भी तो यही कह रहे हैं,
1: ये कंप्यूटराइज्ड प्रूव्ड है.
0: हाँ.
1: वो एक्सपीरियंस,
0: एक्सपीरियंस
1: अनुभव.
0: अब जब आप साइंटिफिक एविडेंस भी हम पढ़ रहे हैं, वो तो किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया. और वहां उनको रिजल्ट मिली, तो उसको एक साइंटिफिक स्टैंप लगी. लेकिन जो चीज हमने अनुभव कर ली है,
1: मेरा स्वयं स्टैंप लगा खुद का,
0: उसके ऊपर तो हमें साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं चाहिए होती. अब जब इन्होंने आर्टिकल का टाइटल रखा कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड, क्यों? क्योंकि उनको प्रूव हो गया, यहां से सोचा वहां कैच. हम सारा दिन अनुभव कर रहे हैं कि हमने सोचा दूसरे ने कैच किया, दूसरे ने सोचा हमने कैच किया. जब हमने इतना कुछ अनुभव कर लिया, तो हमारे लिए स्टैंप नहीं हो जानी चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है?
1: ये तो डर लगने वाली बात
0: नहीं, पर ये स्टैंप हमारे लिए हो जानी चाहिए ना. क्यों हम अपने अनुभवों को ही ऐसे ही हल्के में छोड़ देते हैं? जब अच्छा वाला अनुभव होता है, जैसे आपने कहा आप स्टेज पे थे, सामने वाले को कोई बात आपसे बतानी थी, आपने वो कैच की, तो बाद में जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के, वे वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड द अदर पर्सन विल से आई वॉन्टेड टू से टू यू एंड यू कॉट इट. सो बोथ द पीपल आर वेरी हैप्पी, बोथ द पीपल आर हैप्पी. जो मैसेज भेजना चाहते थे और जिसने मैसेज कैच किया, वो दोनों खुश हैं कि हमें वो रिजल्ट मिला जो हम चाहते थे. लेकिन जब हम नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हैं, जब हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तब हम बैठ के एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक नहीं करने वाले हैं कि मैंने आपको ये भेजा था, आपने कैच किया?
1: यहां पर एक छोटा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैं अगर किसी के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूं या थॉट्स आ रही हैं, तो वहां से कितना आ रहा होगा, हो सकता है मेरा उसका, दैट इज आई एम रिसीविंग. How do I know that I am receiving or sending?
0: Very true. If both the things are happening.
1: उधर से आ रहा है कि मेरे मन में आ रही है, कैसे बताऊं?
0: उधर से आ रहा है या हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आपने किसी को याद किया और वहां से फोन आया, अब हमें ये नहीं पता कि आपने याद किया तब फोन उन्होंने किया या उन्होंने फोन उठाया था करने के लिए तब आपको याद आई। वी डोंट नो।
1: बोथ आर राइट,
0: बोथ आर पॉसिबल। इसका मतलब पहला तीर किसने फेंका? वी डोंट नो। हमें सिर्फ ये पता है कि तीर का रिटर्न तीर आता है, थॉट का रिटर्न थॉट आता है। हमें ये नहीं पता पहले किसने शुरू किया। और अब तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम पहले तीर पर तो है नहीं।
1: मैं सोचू भी कि वहां से आया कि मैंने पहले किया।
0: हाँ,
1: आया ना, उसको निकालो।
0: लेकिन अगर पहले भी शुरू किया उन्होंने
1: तब भी वही करना है,
0: तो भी वही करना है। और अगर मैंने शुरू किया तब भी वही करना है।
1: इसको तो हटाना है ना,
0: तो
1: बेडरूम में जाऊं वहां पर कचरा पड़ा हो।
0: हाँ।
1: तो मैं लेटू नहीं लेटू, एक कचरा किसने रखा और मैं थका हुआ हूँ।
0: हाँ।
1: तो मैं बोला,
0: अगर आप सपोज उस टाइम बोले जिसने रखा है वो ही आकर उठाए पहले, मैं क्यों उठाऊ?
1: किसने किया, कैसे किया?
0: पहले तो ढूंढो कि रखा किसने, फिर उसी को बुलाओ। वो जहाँ भी है उसको पहले बुलाओ कि उसने रखा है वो उठाए। ये सब तो हम करते नहीं।
1: ना थक गया हूँ मैं, इसको हटाऊ और लेटू ना, आराम करूँ।
0: दैट इज इट। तो वो थॉट उन्होंने भेजा या हमने भेजा, इट डजेंट मैटर। प्रेजेंट मोमेंट में ट्रुथ क्या है, सत्य इस समय का क्या है? मेरे चित पर कुछ नेगेटिव किसी के लिए चल रहा है, आई जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेरे चित पर किसी के लिए नेगेटिव इस टाइम चल रहा है, मैं कुछ कुछ किसी के लिए सोच रहा हूँ। आई जस्ट नीड टू आस्क माई सेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन, अगर उनको ये सब कुछ पहुंच जाए जो मैं अभी उनके लिए सोच रहा हूँ, इज इट ओके फॉर मी?
1: नो।
0: इज इट कम्फर्टेबल फॉर द रिलेशनशिप?
1: नो।
0: सो व्हाट विल आई हैव टू डू?
1: I have to stop sending that.
0: Because see, ये again scientific evidence भी मिल गया, experiential evidence भी मिल गया।
1: अगर जो जो मैं सोच रहा हूँ उनके SMS बन के उनके फोन पे जाता रहे, अगर ये टेक्नोलॉजी निकल जाए।
0: ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है ना, वही तो उन्होंने।
1: अगर मेरे फोन में अगर वो ऐप आ जाए।
0: देखो अभी इन्होंने क्या बोला, उसने हेलो बोला, उसने होला बोला और उन्होंने होला ही कैच किया। मतलब क्या हुआ उसका फिर, कि जो सोचा एग्जैक्टली वो ही कैच कर लिया उसने।
1: थॉट यहाँ प्रिंट हुई, वहां से प्रिंट कन्वर्ट होके
0: दूसरे तक पहुंच गई। अब हमें सिर्फ अपने आप को बार बार ये चेक करना है, जो हम सोच रहे हैं उनके लिए वो एज इट इज अगर पहुंच जाए, वर्ड टू वर्ड वैसे का वैसे, एम आई ओके विद इट?
1: नो।
0: देन नाउ व्हाट टू डू?
1: Then stop.
0: अब आपका अनुभव देखो, पहले वाला स्टेज पर आप कुछ सुना रहे हैं, फैमिली ऑडियंस में बैठकर कहती है इनको ये ये ये वाली बात बोलनी चाहिए। स्पेसिफिक है ना, इट्स नॉट अ जनरल थॉट, इट्स अ स्पेसिफिक थॉट, राइट? और सपोज आपने वही की वही बात बोली, तो मतलब आपने मैसेज को एज इट इज कैच किया ना?
1: करेक्ट।
0: इसका मतलब मैसेजेस एज इट इज कैच होते हैं।
1: उस साल पहले का ये एक्सपीरियंस सुरेश रॉय को आज सुनाना चाहिए। ये वाला एक्सपीरियंस या ये शेर, ये पोएट्री, एग्जैक्टली वो थॉट कैच हो गई मेरी और कई बार हुआ।
0: तो इजंट इट एज सेम एज जो आपने कहा, मैसेज भेजे SMS भेजे, एज इट इज ही जाने वाला है, एज इट इज जा रहा है।
1: बट वहां तो रिटर्न प्रूफ आता है ना।
0: किस चीज का?
1: कि मैंने ऐसा सोचा आपके बारे में, जब मिलके बात करते हैं मेरी आपसे कोई नाराजगी हो सकती है, कमाल है आप।
0: हाँ।
1: भी है तो हम तो भाई भाई हैं, कमाल।
0: अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, नहीं जी मुझे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो हमेशा आपको एक फैमिली मेंबर एक फ्रेंड की तरह ही देखा? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि उनको हमारे सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं।
1: मैं पूछ चुका हूँ लोगों से, क्या भाई कुछ नाराजगी है? हमने आपसे कभी कुछ बुरा बोला? कुछ होगी तो माफ कर दो। आपका कुछ वो व्यवहार उतना पहले जैसे नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कमाल है बाजी, तुसी इस तरह कर रहे हो। आपके बारे में मैं बुरा सोच भी नहीं सकता। आप तो बड़े भाई हो मेरे।
0: बुरा सोचे बिना दूसरे को बुरा फील हो नहीं सकता।
1: अच्छा,
0: हो नहीं सकता ना। अभी देखो इस एविडेंस को फिर से ले लो।
1: इमेजिनेशन तो नहीं कर सकता ना बंदा।
0: फीलिंग की इमेजिनेशन नहीं होगी, यू विल फील इट। इसकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती कुछ भी। ये है, यहाँ से हेलो बोला, फ्रांस में उसने हेलो कैच किया,

0: साइंस ने दोनों ने मुझे सिखा दिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सामने वाले तक एज इट इज पहुंच रहा है, फिर सामने वाला भी मेरे लिए ऐसा ही सोचेगा। व्हेन यू रिजेक्ट मी कि ऐसा खाते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वो जब थॉट्स और मैसेजेस अगर आप मुझे बोल दें सपोज ये बात, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी ऊपर से? आई विल ऑल्सो फाइंड 10 थिंग्स इन यू ना, कि आपने अपने आप को देखा है, आप कैसे खाते हैं, आप ऐसे चलते हैं, आप मुझे बोल रहे हैं, अपना देखा आपने, आप कैसे चलते हैं। दिस इज हाउ कॉन्वर्सेशंस गो ना। अब ये जो कॉन्वर्सेशंस जब शब्दों में होती हैं तब ऐसे होती हैं, तो थॉट लेवल में ये कॉन्वर्सेशंस कैसी होती होंगी?
1: बहुत स्ट्रांग
0: ऐसे ही होती होंगी कि आप मेरे अंदर गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर गलतियां ढूंढू, वो आप तक पहुंचे तो आप मेरे अंदर और गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर और गलतियां ढूंढू। अब हम ऊपर ऊपर से तो कुछ कह ही नहीं रहे एक दूसरे को, हम बहुत प्यार से बात
1: रिश्ता निभा रहे हैं,
0: हम रिश्ता निभा रहे हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल। कहते हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, वो जब भी मिलते हैं, जब भी आते हैं, हम उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन नाउ सी द रिजल्ट, हम सारा दिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए उसकी एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी, कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड।
1: सिस्टर, एक बार किसी ने मुझे आके बोला था कि मेरी सास अजीब सी है सुरेश, मैंने हुआ क्या? मैंने बोला वो टोन कॉपी करके, मैंने इतने प्यार से पूछा, ऐसे ही पूछा जैसे आपको सुना रही हूँ, लेकिन वो भड़क गई।
0: सी, यस।
1: तो मतलब फिर चांसेस भड़कने का 1% भी नहीं होता अगर ये पहले उसके थॉट।
0: बिल्कुल, दिस इज इट। जब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाला इतना रिएक्ट कर गया सामने से, हमें लगता है सामने वाले का जो रिएक्शन है वो हमारी वो एक लाइन के रिस्पॉन्स में आया है। अभी सपोज यही वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं, आप मेरे लिए मेरी गलतियां सोच रहे हैं, ये ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे करते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स इन योर माइंड रीचिंग मी, मैं भी आपकी गलतियां ढूंढ रही हूँ, वो आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ। ये कम्युनिकेशन इन द माइंड हमारा बहुत समय से चल रहा है, ठीक है? अब मैं सुबह सुबह आई, यहां बैठी और आपने बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली और कर्टसी से आपने कहा, आप थोड़ा सा ऐसे होकर बैठ जाइए, मेरा फुग्गा बस्ट हो जाएगा। बोला आपको सुबह सुबह मेरे अंदर ही गलतियां दिखाई देती हैं, मैंने क्या किया? मैं ठीक से तो बैठी हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कमाल है, आपको तो हर चीज में मेरी प्रॉब्लम
1: होने वाली थी, चेंज करने वाली थी, तुमको तो चेंज वो ही नहीं।
0: ये जो हाउ आई विल रिएक्ट,
1: और लोग क्या बोलेंगे सुनने वाले?
0: हाँ, कि इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, एक लाइन से इसने इतना रिएक्ट कर दिया वो। और एक्चुअली कई बार मुझे भी अजीब लगेगा बाद में कि मुझे हुआ क्या था, उन्होंने तो एक लाइन बड़े प्यार से नॉर्मल बोली थी, ये मैंने ऐसा क्यों बिहेव कर दिया सारा? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक लाइन और इस एक लाइन का रिएक्शन आया, दिस वॉज इन फॉलो अप टू द लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग कम्युनिकेशन इन द माइंड दैट हैज बीन हैपनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये वो एक लाइन और एक रिएक्शन का कम्युनिकेशन था ही नहीं, ये बहुत समय से जो हमारा मन में कम्युनिकेशन चल रहा था, वो एनर्जी जो भरी हुई थी, ये उसका रिजल्ट था। अब आपने जैसे कहा कि वो लेडी ने आपको आकर कहा, मैंने अपनी सास को ऐसे एक लाइन कही, देखो मैंने ऐसे बोला, इतने प्यार से बोला, एंड सामने वाला जब आपने भी सुना होगा, आपने कहा होगा अजीब सास है, इसने इतने प्यार से ऐसी एक लाइन बोली, क्योंकि आप सिर्फ वो लाइन सुन रहे हैं, आपको वो कम्युनिकेशन पता ही नहीं है सारी जो वो बहू ने अपनी सास को भेजी होगी, पता नहीं कब कब कब कब से,
1: सुबह से भेज रही होगी घर आने तक,
0: सुबह से घर आने तक क्यों, सार रोज ही भेजती होगी, कितनी ओवरऑल कितने सालों से भेज रही होगी कम्युनिकेशन। ये रिएक्शंस ऐसे नहीं आते हैं, इसीलिए अगर हमें किसी सीन का पूरा पर्सपेक्टिव जानना है तो हमें वो जानना होगा कि ये दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए सोचते कैसे हैं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए तो कहेंगे, सिस्टर मैंने बस इतना बोला, फिर सामने वाले ने ऊपर से ऐसा बोल दिया, फिर उसने ऐसा बोला ना, फिर मैंने ऐसा बोला। अगर हम उनकी सिर्फ ये वर्ड्स को देखें और उस पर सीन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या हुआ होगा, द इवैल्यूएशन विल बी रॉन्ग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी

0: need to ask them is, आप उनके बारे में सारा दिन सोचते कैसा है, आपके मन में क्या चलता है उनके बारे में, विच इज नॉट वेरी इजी उनके लिए बताना. लेकिन जो वो बोलते हैं उसके बेसिस पे तो कभी भी चेकिंग नहीं हो सकती कि कौन सही था और कौन सही सोच रहा था, कौन गलत सोच रहा था. आप उनके बारे में सोचते कैसे हैं, इसकी चेकिंग है. और आज साइंस ने वो हमें प्रूफ करके दिखा दिया कि ऑल इन द माइंड.
1: हमारे घर में एक वीआईपी ब्रेकफास्ट पे आने वाले थे, तो उनका स्टाफ और उनका छोटा भाई आके पहले बोला, भाई साहब वो मीठा खा जाते हैं, वो बड़ी वो जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन बड़े हैवी जो मिठाइयां होती है ना, प्लीज नाश्ते की टेबल पे मत रखना, रखेंगे तो वो खा लेंगे. अब इस थॉट में मैंने बोला वाइफ को कि भाई ये सब टेबल पे रखना, ये उन्होंने बोला खास नहीं रखना. तो व्हाट माय वाइफ डिड कि उन्होंने बहुत कम शक्कर डाल के हलवा बनाया, ताकि बाहर का जो हैवी स्टफ मिठाई नहीं,
0: राइट.
1: तो वो उनको मैंने दिया तो इतने प्यार से खाए, ये भी खुश वो भी खुश. कैसे थॉट,
0: यस एब्सोल्युटली, एक थॉट ही तो चाहिए सिर्फ सब कुछ.
1: वही मैं किसी के घर जाऊं और कोई खाना भूख लगी हुई हो सडनली मर जाती है. मैं सोचा तीन चार रोटी खा जाऊं, थोड़ा सा खा के मैं नहीं, थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग
0: गुड. क्योंकि सामने वाले ने किस थॉट से बनाया है, किस वाइब्रेशन से बनाया है, हमारे आने पर सामने वाले ने कितनी वेलकमिंग एनर्जी क्रिएट की है, कितनी मजबूरी की एनर्जी क्रिएट की है.
1: बाद में भी फोन करके बोला, आपकी वाइफ ने जो हलवा बनाया था करेक्ट शुगर थी साहब के. सो
0: बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट द मिठाई, उसके पीछे की वाइब्रेशन, थॉट्स जो क्रिएट हुई थी, वो थॉट तक पहुंचती है कि आप आए, आपके लिए हमने इतने प्यार से ये बनाया,
1: अपने हाथ से इसलिए बनाया क्योंकि स्टाफ ज्यादा अच्छा.
0: आपका आना हमें अच्छा लगा, आपके आने पर हमें अच्छा लगा आपके ये करना. और यही अगर हमने ये किया होता कि किसी को बोल दिया होता वो आ रहे हैं बना देना, कुछ ध्यान रखना कि ठीक बने, जो जो उन्होंने बोला है वैसा बने,
1: डालना इतने बोल दिया,
0: तो फिर वो चीज भी अच्छी बनेगी, टेस्ट उसका ठीक होगा. लेकिन उसमें वो थॉट्स एंड वो वाइब्रेशंस नहीं होंगे जो दूसरे तक पहुंच के दूसरे को भी अच्छा फील कराते हैं. ये तो सारा दिन की अनुभव है ना, अनुभव इतने होने के बाद भी अगर हम ध्यान नहीं रखें तो वो अज्ञानता हो जाएगी कि हमें मालूम है कि जो हम सोचते हैं वो सामने तक पहुंचता है. तो आज अपनी थॉट्स की थोड़ी चेकिंग करनी पड़ेगी,
1: बिल्कुल,
0: और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, आई कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस.
1: आज दोनों बात डिस्कस हुई, वो लड़की ने अपनी सास को छोटी सी बात बोली, फट कर कितना बड़ा रिजल्ट हुआ. और यहाँ वाइफ ने किया क्या, हलवे को थोड़ा ऐसे
0: छोटा
1: किया, अपने हाथ से बना के दिया, तो उसका इतना बड़ा
0: रिजल्ट मिला.
1: इतनी खुशी में भी एक इतना ओवर था,
0: राइट,
1: और इनका एंगर भी ओवर था,
0: बिकॉज वो खुशी ना हलवे की थी और उस केस में ना वो एंगर एक छोटी सी लाइन का था, दोनों का बेसिस था पहले के क्रिएटेड थॉट्स सेंट एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर माइंड, ऑलरेडी वो पहुंच चुके थे दूसरे के मन में, तो वहां तो भाव एंड भावना ऑलरेडी प्रेजेंट थी. जैसे ही सामने वो चीज आई वो भाव एंड भावना भी ऑटोमेटिकली बाहर रेडिएट होते हैं. तो आज पक्का करना है और अपने किसी रिश्ते को चेक करना है कि किसी के लिए भी कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि उन तक पहुंचे. अगर ये नहीं चाहते कि वो बात उन तक पहुंचे तो उस थॉट को आज चेंज करना ही पड़ेगा. इट हैव टू बी डन राइट नाउ.
1: अब मैं एक आगे आप ही की लैंग्वेज में बात करूंगा. हम ये नहीं चाहते उन तक पहुंचे से ज्यादा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये गंदी थॉट मुझे डिस्टर्ब करे.
0: ब्यूटीफुल, ओम शांति.
1: Thank you.
2: In August 2014, scientists conducted the world's first computer-mediated brain-to-brain telepathy experiment, where a person in India said hola to three people in France. The greetings were not spoken or typed, but their brain received the message. The communication took place between the brains of the people involved, proving that it is all in the mind. Telepathy.

0: शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति, किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है, टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है। और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं एमपी बाजौर से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: फिफ्थ।
0: और उसके बाद युग। युग, आप बताओ।
2: मैं सूरत वराचा से आया हूँ, मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत वराचा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: मैं 9 में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: सेकेंड।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं एमपी से आई हूँ, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो? रात को देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
9: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत सीखने लगे?
9: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखी है नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
9: मैंने देखी थी।
0: देखी थी? तो कोई सपना आया आपको?
9: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
9: जग गए।
0: नींद से जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे, वो करेंगे, हम बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
10: मैं डॉक्टर बनूं।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
10: किसी मरीजों का इलाज।
0: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
11: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
11: हाँ।

0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
1: टीचर।
0: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
1: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ आप क्या सपना देखो बड़े होके क्या बनोगे?
2: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का किसी को देख के? कुछ भी नहीं। ठीक है चलो, शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा, पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है।
2: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
2: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
2: आधा गिटार है, थोड़ा सा दो के।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
2: बड़ा होकर CID बनना चाहते।
0: CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है मैं बताओ तो?
2: वो देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
0: अच्छा तो आप क्या करोगे CID बनके?
2: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी न किसी की सेवा होती है। और ईश्वरी आप क्या बनना चाहते हो?
3: टीचर।
0: टीचर क्यों बनना चाहते हो?
3: दीदी बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं ईश्वरी आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं। अच्छा अच्छा ये बताओ आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं, कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मन है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी?
3: हाँ।
0: क्या सोचते हो बता?
3: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है ईश्वरी आप?
3: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और फाइल?
3: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
4: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
3: डांस।
0: डांस? अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
2: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
2: किसी को लगता है पर हमसे नहीं।
0: आपसे तो किसी को भी नहीं लगता?
2: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है।
2: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
2: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
3: दी हमको भी यही लगता है
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
3: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे? और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
3: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करती है ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे तो? तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें याद रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग?
2: बड़ा सा घर बनाऊंगा उसमें वो आराम से रहेंगे।
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, मेरे पास। और हर्ष?
2: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका

0: नाम रोशन करूंगा।
1: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल, आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे?
2: और
1: आप लोग मुस्कान और
2: मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होकर उनका नाम रोशन करूंगी।
1: मम्मी पापा की सेवा करोगे?
3: आप क्या
2: करोगे? दीदी हम
1: आप भी सेवा करोगे और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
3: मम्मी पापा, दादी, दादाजी, चाची।
1: अरे वाह, आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
3: दीदी, मम्मी पापा।
1: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ,
4: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं,
1: इसलिए वो
4: मैंने कैसी मांगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था, बड़ा सा।
1: अच्छा, पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
4: दादी, दादा और मैं और मम्मी पापा।
1: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा, तो उनसे
4: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं।
1: दादी दादा? अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
3: मम्मी पापा, दादा।
1: और सबसे अच्छा?
3: जी, मम्मी पापा।
1: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
3: मम्मी।
1: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
3: दीदी, अग्गी, अज्जा, मम्मी पापा।
1: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
3: मम्मी पापा।
1: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
3: तो मुझे कल ही चप्पल मांगी थी पर आज ले आई।
1: अच्छा, और मुस्कान?
2: मेरी फैमिली में मम्मी पापा, दादा, दादी, चाचा, चाचा।
1: और आपका फेवरेट कौन है?
2: मम्मी और पापा दोनों।
1: दोनों? मम्मी पापा विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
2: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तभी बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं?
4: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ, और आप बताओ?
3: दीदी, हमको भी
4: जैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी दौड़ दे दे।
1: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
4: कभी कभी होती है।
1: होते हो?
3: हाँ दीदी।
1: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
4: जब एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है और किसी का कम आता है इसलिए।
1: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा ना? क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारते हो? उसका क्या करते हो आप? ऐसे शरारत करते हो? बताओ, ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हैं मुस्कान, बताओ?
2: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
1: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवा? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? आयुक बोल,
4: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
1: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
4: भाई?
1: आप नहीं जीतते हो?
4: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा, आधा घंटा तुम्हारा।
1: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
4: हमारे घर में तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
1: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
4: चुप हो जाते हैं।
1: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वर, आप कभी गुस्सा होते?
3: नहीं।
1: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
3: हाँ,
5: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
1: झगड़ा होता
5: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
1: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
5: टीवी के लिए मेरी दो बहनें हैं, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
1: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो?
5: हाँ।
1: और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
5: रिमोट लेकर भाग जाते।
1: अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
3: हाँ दीदी।
1: क्यों झगड़ते हो?
3: दीदी, मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती, तो हम झगड़ते, तो

0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
1: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं है और देखने देते हैं।
2: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे करके लेने का। जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है।
0: क्या प्लान बनाते हो?
2: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा, कैसे क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
2: कोई बना रहा होगा, पर मैं तो कह रहा हूँ।
0: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
2: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई लेना है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ।
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ जी।
0: सबकी होती है?
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी मेरी फ्रेंड हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं है ना, तो फिर आप क्या करते हैं?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देते हैं।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है, टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हैं
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना। तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए है ना। और ईश्वरी आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
4: मेरे फ्रेंड मुझे धक्का देते हैं।
0: अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
4: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लगता है कि चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी है ना। और आप बताओ?
1: कभी झगड़ा हो जाता है।
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए।
0: बातचीत करते हुए झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
4: दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को मेरे फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बताते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बतानी चाहिए। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या हैं? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: उसकी भी जगह बता देते हो?
1: वो तो कचरा के साथ चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
4: दीदी हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
4: दीदी ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
4: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
5: दीदी हमारे साथ
0: क्या होता है?
5: दीदी कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है उसके बाद क्या करते हो?
5: दीदी कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। यू
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मेरी ताकत सब उसकी टीम में ही जाता है। जब मेरे दिन मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ ले जाओ, मेरी मम्मी को पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना तो मैंने कहा मम्मी को देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से नहीं बोलते ले जाते ही।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता है उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरे माँ के साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
4: हाँ
0: नहीं
4: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो?
1: पीछे मैं एडवेंचर सीखूंगा तो बड़ा होकर भी बड़े बड़े एडवेंचर करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको?
2: नहीं।
0: क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
4: मुझे भी डांस में बहुत मजा।
0: डांस में बहुत मजा है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
4: दीदी सारे गाने पे करते हो? सारे गाने?
0: सारे? बहुत सारे। मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
4: हाँ।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा?
4: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ।
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशन किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था, वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता तो मजा आता ही है?
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना, हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, ये बताओ आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का, घर पे या स्कूल में?

0: बच्चों ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
1: नहीं
0: नहीं, किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
1: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युद्ध
1: कभी खाने में अच्छा नहीं करेला।
0: क्या होता है?
1: कभी खाने में करेला का साग होता है ना, इसलिए
0: करेला। अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
1: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
1: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
1: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
2: नहीं लगता।
0: और आपको?
1: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
3: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।

0102 बोरियत की एरर, नए पन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: राजा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाता नहीं करता साला, पाता नहीं करता साला, पाता नहीं करता साला।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना।

नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे, समझे मेरे भाई हैं। जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे, हम सड़कों पर नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे।

யாரு?

0: अरे जी रैट रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: ए मेड इन मैड, मैड माने पागल, डियो बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम तो हो तो क्या हुआ।
0: एटी कैट, कैट माने बिल्ली, अरे एटी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: ए मेड इन मैड, मैड माने पागल, डियो बॉय

0: क्या हूँ।
1: GOAT गोट, गोट माने बकरी, LION लायन, लायन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
0: M made man, man माने पागल, GOY boy, boy माने

0: हसी न होगा कोई हमका भी
1: लगे साथ में कभी आपने के मुंह देखा भी
0: तुम्हें एक नहीं जहां में हसी न होगा कोई हमका भी
1: मतलब
0: क्या हुआ कैट कैट माने

0: नजर वो जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया
1: ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया
1: ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: बीएडी बैड बैड माने बुरा बीयूटी बट बट माने लेकिन अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।

परमिट के लिए मरमिट परमिट परमिट परमिट

कड़ाने, देखो ये तमाचा पहुँचे वहाँ से थाने, हुआ ये हम पे सितम, वहाँ जकड़े गए हम, मांगा परमिट जो उद्यम, हाय हाय हमने कहा ना ना, परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहाँ में दो दिन बिना दिया जाए, परमिट

जाने न जमाना चुपके से जहर खा ले। गए हम एक दुखा पर कहा जो जहर मिसर तो बोला वो सितमगर क्या क्या परमिट तो दिखाना। परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना जिया जाए। परमिट परमिट

क्या दूधे का हुक्का भरा, बोला क्या कर है तेरा, आज से पहले जरा परमिट तो दिखाना। परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना दिया जाए। परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना दिया जाए। परमिट परमिट परमिट।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

आओगी, जब तुम ही न आओगी तो ये घर भी जला दो, चाहो तो मिटा दो मुझे चाहो।

रोज क्लब में उसका मिलना, देकर हाथ हाथ में चलना। रोज समुंदर में

किसे सुलाऊं, फर्ज पहुंचा हाय उसे उठाऊं, आतरी गद्दी उतारूं किसे नहलाऊं, हाय किसे खिलाऊं।

0: बर्बादी।
1: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं था सर। मैं तो सोच रहा था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब
2: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो।
1: मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर मां का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं। आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
2: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।
1: थैंक यू सर।

0: अदब प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुर शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?
1: आएगा आएगा।

جانے والے ذرا ہوشیار، یہاں تھے ہم ہیں راجکمار۔

दर्द सा अपने दिल में जो पाया, जान गए हम किसने बुलाया। दर्द सा अपने दिल में जो पाया, जान गए हम किसने बुलाया। उनसे ही मिलने घूम के निकले, छाछ से निकले, धूम से निकले।